0: आपके भ्रम के कारण देश में फिर से अराजकता फैलाए, फिर से फैल जाए, इस प्रकार की कुचेष्टा करने की कोशिश आज आपने सदन में किया। सदन में वो फेल्योर हुआ तो अब आप बाहर कर रहे हैं, ये चलेगा नहीं। राहुल गांधी जी, आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी, और हम सब जो देश के हित में काम कर रहे हैं, हम सभी कहेंगे माफी मांगो राहुल गांधी।
1: पैलेट गन्स चनी है, लोगों के चोट आई है, आंसू गैस के गोले चले हैं, लाठी चली, कई घायल हुए हैं, बहुत से लोग अस्पताल गए, और बहुत से लोग पहले जब विपक्ष को पता लगा उससे पहले उनको डिस्चार्ज करके घर भी भेज दिया गया। तो ये बड़े सवाल है जिसका जवाब तो सरकार को देना होगा, और इसके लिए गृह विभाग ही बनता है, क्योंकि पुलिस और आर्म फोर्सेस उन्हीं के अंडर आती है। तो अगर उनके ऑर्डर पर नहीं चला है कुछ, तो किसके ऑर्डर पर ये फैसला लिया गया है?
2: न केवल असंसदीय है बल्कि रूल 353 के खिलाफ है, भारत के गृहमंत्री के खिलाफ। अगर उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया कि उन्होंने आदेश दिया, कोई ऐसा आदेश बिना किसी तथ्य के, कहीं गोली नहीं चली, उसके बावजूद इस सदन के माध्यम से देश में जिस तरह से भ्रम और गुमराह पैदा करना चाहते हैं, और इस सदन को चलाने की स्पीकर साहब के बार बार कहने से उस रूल 353 का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर कोई आरोप है, उनके पास तथ्य, ऑथेंटिकेट करेंगे, तो मंत्री को एक पत्र देना चाहिए, स्पीकर को पहले देना चाहिए, जिससे वो जवाब दे सकें। तो ये सदन में अभी तक तो लगातार आंदोलन, बाद कांग्रेस पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही थी, अभी तक तो कभी ये बात आई नहीं जो आज आरोप लगाया है।
3: बिल इज पास, बट दिस बिल इज नॉट गोइंग टू रियली सॉल्व द प्रॉब्लम एट हैंड। द प्रॉब्लम इज हैंड इज अबाउट लीकिंग ऑफ एग्जामिनेशन पेपर्स। This in no way strengthens the process of setting examination papers and issuing them on the day of the exam. This bill does is impose stricter punishment after a leak has happened, after an investigation takes place, after the investigation identifies who are responsible for the leak, and then gives them stiffer punishments and penalties. So then setting up a fast track courts has never really solved any problem in India. We have fast track courts for various subjects, but
4: 2024 bill, which the Modi government has introduced, has now been further strengthened by these amendments. I want to remind the students of this country two things. For the first time in the country's history, we now have a strong, dedicated anti-paper leak law. And while we have made systemic reform, the leader of the opposition, Mr. Rahul Gandhi, who tried to pose himself as a champion of students over the last 2 weeks, did not speak even one sentence in his entire speech.
5: अगर गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं है अपने मंत्रालय चलाने में, तो क्या वो भी प्रॉक्सी हैं, कठपुतली हैं किसी की, कि पैलेट गन्स चल गई और गृह मंत्री को पता ही नहीं था? तो जिम्मेदारी तो गृह मंत्री की ही है। AK-47 चल रही है और गृह मंत्री के लिए आप कहेंगे कि नहीं, वो जिम्मेदार नहीं है, तो क्या नागपुर से आदेश आते हैं? ये भी कमाल की बात कर रहे हैं।
6: Let's bring you more updates coming in. Well, the government is set to push the Foreign Contribution Amendment Act for discussion and passage in the Lok Sabha next week. Well, sources say that the bill, first tabled in the budget session, seeks to give the center greater powers over the assets of foreign funded NGOs. These are in fact those who fail to comply with the FCRA rules. The government says that the amendment will strengthen regulation, ensure foreign funds are used for their intended purpose, and also create a legal framework for dealing with the assets of non-compliant NGOs. Well, the opposition as well as several church groups have raised concerns, saying that the proposals give the government excessive powers through the bill. Well, these aren't just trending words in social media anymore. They've made their way inside of the parliament. As the government pushes its anti-paper leak bill, member parliaments are increasingly using Gen Z phrases in speeches, trying to connect with the generation that is rewriting India's political conversation. Take a look at the special report.
7: Modi ji clocked it and provided a legislative solution.
8: Andolan kyun kiya aapne? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
9: पूरा ये प्रदर्शन हो रहा था बच्चों का, राहुल गांधी जी को पूरा पॉलिटिकल फोमो हो गया।
10: हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है।
11: These aren't just trending words on social media anymore. They've made their way into parliament. As the government pushed its anti-paper leak bill, MPs increasingly used Gen Z phrases in speeches.
7: अगर मैं Gen Z की भाषा को बरो करूं, then I will have to say Modi ji clocked it and provided a legislative solution.
8: 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
9: जब ये पूरा प्रदेश हो रहा था, पूरा ये प्रदर्शन हो रहा था बच्चों का, राहुल गांधी जी को पूरा पॉलिटिकल फोमो हो गया और राहुल गांधी जी सोचे कि मैं कहां जाऊं भाई, इतना हाईलाइट स्पॉटलाइट सबको बाकी को मिल रहा है। सीधा राहुल गांधी जी जाके प्रधानमंत्री जी के घर के सामने बैठ गए।
8: ये जेन जी जिनके जवान पे शहीद आजम भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद का नारा था, और जब वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुईया, एक नारा देते थे वास्ते गुने हुईया। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना है क्या नारा है।
10: इनकी अगली जनरेशन में इनके साथ नहीं, हमारे साथ भी नहीं है शायद। हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है। आपकी जनरेशन किसके साथ है ये 29 में पता चलेगा।
11: द आउटरीच गोज बियॉन्ड पार्लियामेंट। बीजेपी ऑल्सो पोस्टेड दिस वीडियो एम्ड एट इन्फॉर्मिंग द जेन ज़ी अबाउट व्हाट हैपेंड इन द यूपीए एरा।
12: इस्तीफा जंतर मंतर की जीत नहीं दिखाता, डेमोक्रेसी की ताकत दिखाता है। सरकार ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व की है ताकि तुम आगे देख सको। चलो मिलकर देश भी बनाते हैं और बॉडी भी।
11: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज इंस्टाग्राम स्ट्रेटजी हैज ऑल्सो बिकम अ टॉकिंग पॉइंट विद रील्स ऑफन पोस्टेड लेट एट नाइट टू मैक्सिमाइज एंगेजमेंट अमंग यंग यूजर्स। फ्रॉम डिजिटल कैंपेन्स टू यूथ फोकस्ड मैसेजिंग, द टारगेट ऑडियंस इज अनमिस्टेकेबल, India's Gen Z।
13: फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया।
14: फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है।
11: The urgency isn't just about optics. The nationwide students' protest over exam paper leaks have highlighted a new political reality. Young Indians are no longer passive observers. They are demanding transparency, accountability, better education, and more jobs. And they are shaping the national conversation. For political parties, the message is clear. Winning elections is no longer just about traditional vote banks. Mobilizing Gen Z could be just as important. A generation raised on smartphones, social media, and instant access to information is becoming one of the country's most influential electoral forces. With Gen Z set to become India's largest adult generation before the next general election, every major political party is recalibrating its message. The battle for India's future may well begin with the battle for its youngest voters. Bureau Report, NDTV.
6: Moving on to more updates coming in at this hour, one of Patna's most prized seats is now set to decide its future on the ballot today. Bankipur, the seat vacated by BJP President Nitin Nabin, has become the ultimate battleground for vindication of the BJP's double engine model in Bihar, with Samrat Chaudhary now at the helm of as the chief minister. Now, a seat that Nitin Nabin has held for 5 terms now sees a fierce contest between his 32-year-old successor, BJP youth leader Neeraj Kumar, the Jan Swaraj Party chief Prashant Kishore, who makes his poll debut, and RJD's Rekha Kumari Gupta, who was the first runner-up on the seat during the last election. Now, the stakes are high for each party. While the BJP seeks to retain its longest-held bastion in Bihar, the unbeaten since 1995, by putting himself on the ballot box as also Prashant Kishore, who is going to make his ultimate push for Jan Swaraj's relevance in Bihar politics. This after drawing a blank last year in the assembly polls.
15: जानिए ये बाकीपुर का घर घर में भाजपा है, एनडीए है, और आज घर घर के लोगों का आशीर्वाद और समर्थन आपके सामने दिख रहा है। लोगों को जिस प्रकार से आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है, मैं मानता हूं कि आज जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और हमारे नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी, हमारे यहाँ पर बिहार में जिस प्रकार से जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक एनडीए की टीम के रूप में काम किया है, आज भी जनता के मन में वही विश्वास और समर्थन दिख रहा है। और मैं मानता हूँ जितने भी लोगों ने भ्रम फैलाने का प्रयास किया होगा, जनता ने आज विश्वास पूरी तरह से सड़कों पर दिखाकर स्पष्ट कर दिया है।
16: एकदम बिहार की जनता और बांकीपुर की जनता इस बार फिर से कमल छाप को भारी मतों से विजय बनाएगी।
17: भाजपा ने अपनी पूरी ताकत
16: कोई लड़ाई नहीं।
6: Let's now turn our attention to more issues coming in at this hour. Well, the Kaveri dispute has entered another flashpoint. Karnataka has challenged the Kaveri Water Regulation Committee's order to release 3,500 kseks of water, citing a rainfall deficit and shrinking of reservoir levels. Tamil Nadu, however, is demanding immediate implementation ahead of the next hearing. Well, the dispute, remember, stretches back to 1892. Despite the Supreme Court's 2018 verdict and the creation of the Kaveri Water Regulation Committee, water sharing tensions continue to resurface. The CWRC has directed Karnataka to release as many as 3,500 kseks for 15 days. Karnataka says that drinking water must be the priority, while Tamil Nadu insists its rightful share under the Supreme Court framework cannot be delayed and has also sought the Prime Minister's intervention in the dispute. With that, we're slipping into a very short break. More news and updates on the other side. Stay on with us on the broadcast.

0: environmental organizations. One of Patna's most prized seats is set to decide its future on the ballot today. Bankipur, the seat vacated by BJP President Nitin Naveen, will go for by-polls today. The seat is the litmus test for the Jan Swaraj chief Prashant Kishore and the Bharatiya Janata Party. The Kaveri dispute has entered another flashpoint. Karnataka has challenged the Kaveri Water Regulation Committee's order to release 3,500 cassettes of water, citing a rainfall deficit and shrinking reservoir levels. Tamil Nadu, however, is demanding immediate implementation ahead of the next hearing. The Directorate of Vigilance and Anti-Corruption books Central Balaji in the Tasman corruption case conducts searches at 45 locations across Tamil Nadu. Let's now take you through the top update of the hour. Fireworks erupted in the parliament yesterday as BJP versus opposition continued over the students' protest. Rahul Gandhi has accused the centre of using excessive force, questioned who authorised the crackdown and demanded an independent SC monitored probe. While Rahul Gandhi stood by his allegations accusing the government of intimidating protesters and questioning its handling of both the protests and the paper leak issue. The BJP, on the other hand, responded by a point-by-point rebuttal. Sambit Patra accused Rahul Gandhi of misleading the nation, rejected his allegations of police firing. So it's Rahul Gandhi's allegations of police excesses versus the BJP's categorical denial. Neither side is willing to back down in this showdown inside of the parliament.
1: The leader of opposition is not allowed to speak in the Lok Sabha. Multiple times I asked the speaker to bring order to the house so that I could speak. Multiple times Riju ji, Rajnath Singh ji, others were allowed to speak, but I'm not allowed to speak.
2: Unhone आक्षेप लगाया कि आई वॉज नॉट अलाउड टू स्पीक, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया. मैंने बार बार कहा है जब 45 लोगों को बोलने का मौका दिया गया तो राहुल गांधी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा. जब प्रियंका वाड्रा जी को बोलने का मौका दिया गया, प्रियंका वाड्रा जी ने भी कई आक्षेप लगाए तो राहुल गांधी जी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा. राहुल गांधी जी को पूरा मौका दिया गया मगर राहुल गांधी जी बोल नहीं पाए.
1: आई वॉज ऑल्सो गिवन एन अश्योरेंस दैट इफ आई अपोलोजाइज देन आई विल बी अलाउड टू कंटिन्यू टू स्पीक. सी द फर्स्ट थिंग इज आई विल नेवर एवर अपोलोजाइज टू the BJP, RSS or any other person associated with them. This is something that has to be understood.
2: Rahul Gandhi ji ne kaha ki main BJP ya RSS ya BJP se jude kisi vyakti se kabhi maafi nahi mangta hu aur nahi mangunga. Abhi to kuch din pehle hi court mein Shivraj Singh Chauhan ji se maafi manga tha, likhit mein maafi manga tha ki mujhe please maaf kar dijiye. Aur mujhe yaad hai chaukidar chor hai jo unhone kaha tha. सुप्रीम कोर्ट ने उनसे हलफनामे में एफिडेविट पर माफी मंगवाई थी. एफिडेविट हस्ताक्षर करके राहुल गांधी जी ने माफी मांगा था. तो राहुल गांधी जी आप यहां माफी नहीं मांगते हैं माइक के सामने, मगर कोर्ट में जाके एफिडेविट देके आप माफी मांगते हैं. यह आपका कैरेक्टर है, यह हम भी जानते हैं कि आप माफी मांगते हैं, कोर्ट में मांगते हैं.
3: If he didn't know it was happening, he's incompetent. And if he ordered it, he's culpable. There's no third possibility. He either ordered it or he has no idea what's going on in his ministry and he's incompetent. In either case, he has to go.
2: Maafi mango Rahul Gandhi. Maafi isliye mango kyunki aapne bhram phailaya. Aapke bhram ke karan देश में फिर से अराजकता फैलाए, फिर से फैल जाए, इस प्रकार की कुचेष्टा करने की कोशिश आज आपने सदन में किया। सदन में वो फेल्योर हुआ तो अब आप बाहर कर रहे हैं, ये चलेगा नहीं। राहुल गांधी जी, आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी, और हम सब जो देश के हित में काम कर रहे हैं, हम सभी कहेंगे माफी मांगो राहुल गांधी।
4: पैलेट गन्स चनी है, लोगों के चोट आई है, आंसू गैस के गोले चले हैं, लाठी चली, कई घायल हुए हैं, बहुत से लोग अस्पताल गए, और बहुत से लोग पहले जब विपक्ष को पता लगा उससे पहले उनको डिस्चार्ज करके घर भी भेज दिया गया। तो ये बड़े सवाल है जिसका जवाब तो सरकार को देना होगा, और इसके लिए गृह विभाग ही बनता है, क्योंकि पुलिस और आर्म फोर्सेस उन्हीं के अंडर आती है। तो अगर उनके ऑर्डर पर नहीं चला है कुछ, तो किसके ऑर्डर पर ये फैसला लिया गया है?
5: न केवल असंसदीय है बल्कि रूल 353 के खिलाफ है, भारत के गृहमंत्री के खिलाफ। अगर उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया कि उन्होंने आदेश दिया, कोई ऐसा आदेश बिना किसी तथ्य के, कहीं गोली नहीं चली, उसके बावजूद इस सदन के माध्यम से देश में जिस तरह से भ्रम और गुमराह पैदा करना चाहते हैं, और इस सदन को चलाने की स्पीकर साहब के बार बार कहने से उस रूल 353 का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर कोई आरोप है, उनके पास तथ्य, ऑथेंटिकेट करेंगे तो मंत्री को एक पत्र देना चाहिए, स्पीकर को पहले देना चाहिए, जिससे वो जवाब दे सकें। तो ये सदन में अभी तक तो लगातार आंदोलन, कांग्रेस पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही थी, अभी तक तो कभी ये बात आई नहीं जो आज आरोप लगाया है।
6: बिल इज पास, बट दिस बिल इज नॉट गोइंग टू रियली सॉल्व द प्रॉब्लम एट हैंड। द प्रॉब्लम इज हैंड इज अबाउट लीकिंग ऑफ एग्जामिनेशन पेपर्स। दिस इन नो वे स्ट्रेंथन्स द प्रोसेस ऑफ सेटिंग एग्जामिनेशन पेपर्स एंड इशूइंग देम ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। दिस बिल डज इज इम्पोज स्ट्रिक्टर पनिशमेंट आफ्टर अ लीक हैज हैपेंड, आफ्टर एन इन्वेस्टिगेशन टेक्स प्लेस, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन आइडेंटिफाइज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीक एंड देन गिव्स देम स्टिफर पनिशमेंट्स एंड पेनल्टीज। सो देन सेटिंग अप अ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैज नेवर रियली सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन इंडिया। वी हैव फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स, बट
7: 2024 bill which the Modi government has introduced has now been further strengthened by these amendments. I want to remind the students of this country two things. For the first time in the country's history, we now have a strong dedicated anti-paper leak law. And while we have made systemic reform, the leader of the opposition, Mr. Rahul Gandhi, who tried to pose himself as a champion of students over the last 2 weeks, did not speak even one sentence in his entire speech.
8: अगर गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं है अपने मंत्रालय चलाने में, तो क्या वो भी प्रॉक्सी हैं, कठपुतली हैं किसी की, कि पैलेट गन्स चल गई और गृह मंत्री को पता ही नहीं था? तो जिम्मेदारी तो गृह मंत्री की ही है। AK-47 चल रही है और गृह मंत्री के लिए आप कहेंगे कि नहीं, वो जिम्मेदार नहीं है, तो क्या नागपुर से आदेश आते हैं? ये भी कमाल की बात कर रहे हैं।
0: Let's bring you more updates coming in. Well, the government is set to push the Foreign Contribution Amendment Act for discussion and passage in the Lok Sabha next week. Well, sources say that the bill, first tabled in the budget session, seeks to give the centre greater powers over the assets of foreign-funded NGOs. These are, in fact, those who fail to comply with the FCRA rules. The government says that the amendment will strengthen regulation, ensure foreign funds are used for their intended purpose, and also create a legal framework for dealing with the assets of non-compliant NGOs. Well, the opposition as well as several church groups have raised concerns, saying that the proposals give the government excessive powers through the bill. Well, these aren't just trending words in social media anymore. They've made their way inside of the parliament. As the government pushes its anti-paper leak bill, member parliaments are increasingly using Gen Z phrases in speeches, trying to connect with a generation that is rewriting India's political conversation. Take a look at the special report.
9: Modi ji clocked it and provided a legislative solution.
10: Andolan kyun kiya aapne? Unko FOMO hua, FOMO. Fear of missing out.
11: Pura ye pradarshan ho raha tha bachchon ka. Rahul Gandhi ji ko pura political FOMO ho gaya.
12: Hum jo Dilulu ke bare mein bol rahe na, आप भी उस दिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है.
13: These aren't just trending words on social media anymore. They've made their way into parliament. As the government pushed its anti-paper leak bill, MPs increasingly used Gen Z phrases in speeches.
9: अगर मैं Gen Z की भाषा को बरो करूं, then I will have to say Modi ji clocked it and provided a legislative solution.
10: 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया. MIA क्या है? MIA missing in action. आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट.
11: जब ये पूरा प्रदेश हो रहा था, पूरा ये प्रदर्शन हो रहा था बच्चों का, राहुल गांधी जी को पूरा पॉलिटिकल फोमो हो गया और राहुल गांधी जी सोचे कि मैं कहां जाऊं भाई, इतना हाईलाइट स्पॉटलाइट सबको बाकी को मिल रहा है. सीधा राहुल गांधी जी जाके प्रधानमंत्री जी के घर के सामने बैठ गए.
14: ये जेन जी जिनके जवान पे शहीद आजम भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद का नारा था, और जब वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुईया, एक नारा देते थे वास्ते गुने हुईया. आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना है क्या नारा है.
12: इनकी अगली जनरेशन में इनके साथ नहीं, हमारे साथ भी नहीं है शोर. शायद हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है. आपकी जनरेशन किसके साथ है ये 29 में पता चलेगा.
13: द आउटरीच गोज बियॉन्ड पार्लियामेंट. बीजेपी ऑल्सो पोस्टेड दिस वीडियो एम्ड एट इन्फॉर्मिंग द जेन ज़ी अबाउट व्हाट हैपेंड इन द यूपीए एरा.
15: इस्तीफा जंतर मंतर की जीत नहीं दिखाता, डेमोक्रेसी की ताकत दिखाता है. सरकार ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व की है ताकि तुम आगे देख सको. चलो मिलकर देश भी बनाते हैं और बॉडी भी.
13: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज इंस्टाग्राम स्ट्रेटजी हैज ऑल्सो बिकम अ टॉकिंग पॉइंट विद रील्स ऑफन पोस्टेड लेट एट नाइट टू मैक्सिमाइज एंगेजमेंट अमंग यंग यूजर्स. फ्रॉम डिजिटल कैंपेन्स टू यूथ फोकस्ड मैसेजिंग, द टारगेट ऑडियंस इज अनमिस्टेकेबल. India's Gen Z.
16: Friends, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है. थैंक यू फ्रेंड्स. कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया.
17: फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है.
13: The urgency isn't just about optics. The nationwide students' protest over exam paper leaks have highlighted a new political reality. Young Indians are no longer passive observers. They are demanding transparency, accountability, better education, and more jobs. And they are shaping the national conversation. For political parties, the message is clear. Winning elections is no longer just about traditional vote banks. Mobilizing Gen Z could be just as important. A generation raised on smartphones, social media, and instant access to information is becoming one of the country's most influential electoral forces. With Gen Z set to become India's largest adult generation before the next general election, every major political party is recalibrating its message. The battle for India's future may well begin with the battle for its youngest voters. Bureau Report, NDTV.
0: Moving on to more updates coming in at this hour, one of Patna's most prized seats is now set to decide its future on the ballot today. Bankipur, the seat vacated by BJP President Nitin Naveen, has become the ultimate battleground for vindication of the BJP's double engine model in Bihar, with Samrat Chaudhary now at the helm of as the chief minister. Now, a seat that Nitin Naveen has held for 5 terms now sees a fierce contest between his 32-year-old successor, BJP youth leader Neeraj Kumar, the Jan Swaraj Party chief Prashant Kishore, who makes his poll debut, and RJD's Rekha Kumari Gupta, who was the first runner-up on the seat during the last election. Now, the stakes are high for each party. While the BJP seeks to retain its longest-held bastion in Bihar, the unbeaten since 1995, by putting himself on the ballot box as also Prashant Kishore, who is going to make his ultimate push for Jan Swaraj's relevance in Bihar politics. This after drawing a blank last year in the assembly polls.
18: ये बाकीपुर का घर घर में भाजपा है, एनडीए है,
5: और आज घर घर के लोगों का आशीर्वाद और समर्थन आपके सामने दिख रहा है। लोगों का जिस प्रकार से आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है, मैं मानता हूं कि आज जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और हमारे नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी, हमारे यहाँ पर बिहार में जिस प्रकार से जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक NDA की टीम के रूप में काम किया है, आज भी जनता के मन में वही विश्वास और समर्थन दिख रहा है। और मैं मानता हूँ जितने भी लोगों ने भ्रम फैलाने का प्रयास किया होगा, जनता ने आज विश्वास पूरी तरह से सड़कों पर दिखाकर स्पष्ट कर दिया है।
18: एकदम बिहार की जनता और बांकीपुर की जनता इस बार फिर से कमल छाप को भारी मतों से विजय बनाएगी।
19: भाजपा ने अपनी पूरी
18: कोई लड़ाई नहीं।
0: Let's now turn our attention to more issues coming in at this hour. Well, the Kaveri dispute has entered another flashpoint. Karnataka has challenged the Kaveri Water Regulation Committee's order to release 3,500 kseks of water, citing a rainfall deficit and shrinking of reservoir levels. Tamil Nadu, however, is demanding immediate implementation ahead of the next hearing. Well, the dispute, remember, stretches back to 1892. Despite the Supreme Court's 2018 verdict and the creation of the Kaveri Water Regulation Committee, water sharing tensions continue to resurface. The CWRC has directed Karnataka to release as many as 3,500 kseks for 15 days. Karnataka says that drinking water must be the priority, while Tamil Nadu insists its rightful share under the Supreme Court framework cannot be delayed and has also sought the Prime Minister's intervention in the dispute. With that, we're slipping into a very short break. More news and updates on the other side. Stay on with us on the broadcast.

0: कि आई वॉज नॉट अलाउड टू स्पीक, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। मैंने बार बार कहा है जब 45 लोगों को बोलने का मौका दिया गया तो राहुल गांधी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा। जब प्रियंका वाड्रा जी को बोलने का मौका दिया गया, प्रियंका वाड्रा जी ने भी कई आक्षेप लगाए, तो राहुल गांधी जी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी जी को पूरा मौका दिया गया मगर राहुल गांधी जी बोल नहीं पाए।
1: I was also given an assurance that if I apologize, then I will be allowed to continue to speak. See, the first thing is I will never ever apologize to the BJP, RSS or any other person associated with them. This is something that has to be understood.
0: Rahul Gandhi ji ne kaha ki main BJP ya RSS ya BJP se jude kisi vyakti se kabhi maafi nahi mangta hu aur nahi mangunga. Abhi to kuch din pehle hi court mein Shivraj Singh Chauhan ji se maafi manga tha, likhit mein maafi, maaf kar dijiye. Aur mujhe yaad hai chaukidar chor hai jo unhone kaha tha, Supreme Court ne unse halafname mein एफिडेविट पर माफी मंगवाई थी, एफिडेविट हस्ताक्षर करके राहुल गांधी जी ने माफी मांगा था। तो राहुल गांधी जी आप यहां माफी नहीं मांगते हैं माइक के सामने, मगर कोर्ट में जाके एफिडेविट देके माफी मांगते हैं। यह आपका कैरेक्टर है, यह हम भी जानते हैं कि आप माफी मांगते हैं, कोर्ट में मांगते हैं।
2: इफ यू डिडंट नो इट वाज हैपनिंग, ही इज इनकॉम्पिटेंट, एंड इफ ही ordered it, he's culpable. There's no third possibility. He either ordered it or he has no idea what's going on in his ministry and he's incompetent. In either case, he has to go.
0: Maafi mango Rahul Gandhi. Maafi isliye mango kyunki aapne bhram phailaya. Aapke bhram ke karan desh mein fir se arajakta phailaye, फिर से फैल जाए, इस प्रकार की कुचेष्टा करने की कोशिश आज आपने सदन में किया। सदन में वो फेल्योर हुआ तो अब आप बाहर कर रहे हैं, ये चलेगा नहीं। राहुल गांधी जी आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी और हम सब जो देश के हित में काम कर रहे हैं हम सभी कहेंगे माफी मांगो राहुल गांधी।
3: पैलेट गन्स चनी है, लोगों के चोट आई है, आंसू गैस के गोले चले हैं, लाठी चली, कई घायल हुए हैं, बहुत से लोग अस्पताल गए और बहुत से लोग पहले जब विपक्ष को पता लगा उससे पहले उनको डिस्चार्ज करके घर भी भेज दिया गया। तो ये बड़े सवाल है जिसका जवाब तो सरकार को देना होगा और इसके लिए गृह विभाग ही बनता है क्योंकि पुलिस और आर्म फोर्सेस उन्हीं के अंडर आती है। तो अगर उनके ऑर्डर पर नहीं चला है कुछ तो किसके ऑर्डर पर ये फैसला लिया गया है?
4: न केवल असंसदीय है बल्कि रूल 353 के खिलाफ है, भारत के गृहमंत्री के खिलाफ। अगर उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया कि उन्होंने आदेश दिया, कोई ऐसा आदेश बिना किसी तथ्य के, कहीं गोली नहीं चली, उसके बावजूद इस सदन के माध्यम से देश में जिस तरह से भ्रम और गुमराह पैदा करना चाहते हैं और इस सदन को चलाने की स्पीकर साहब के बार बार कहने से उस रूल 353 का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर कोई आरोप है उनके पास तथ्य है, ऑथेंटिकेट करेंगे तो मंत्री को एक पत्र देना चाहिए, स्पीकर को पहले देना चाहिए जिससे वो जवाब दे सकें। तो ये सदन में अभी तक तो लगातार आंदोलन बाद कांग्रेस पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही थी, अभी तक तो कभी ये बात आई नहीं जो आज आरोप लगाया है।
5: बिल इज पास बट दिस बिल इज नॉट गोइंग टू रियली सॉल्व द प्रॉब्लम एट हैंड। द प्रॉब्लम इज हैंड इज अबाउट लीकिंग ऑफ एग्जामिनेशन पेपर्स। This in no way strengthens the process of setting examination papers and issuing them on the day of the exam. This bill does is impose stricter punishment after a leak has happened, after an investigation takes place, after the investigation identifies who are responsible for the leak, and then gives them stiffer punishments and penalties. So then setting up a fast track courts has never really solved any problem in India. We have fast track courts for various subjects, but
6: 24 bill which the Modi government has introduced has now been further strengthened by these amendments. I want

0: देश का टायर जेके टायर।
1: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
2: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
4: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
5: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े वंदे भारतम .org पर रजिस्टर करें।
6: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया, witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
7: This location from Tel Aviv
6: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
8: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
9: The Ayatollah Khamenei is gone.
10: There has been a missile attack right behind you,
11: and we need to rush into a shelter.
12: Heading there.
13: Will Prime Minister KP Sharma own

0: हम सभी कहेंगे माफी मांगो राहुल गांधी।
1: पैलेट गन्स चनी हैं, लोगों के चोट आई है, आंसू गैस के गोले चले हैं, लाठी चली, कई घायल हुए हैं, बहुत से लोग अस्पताल गए और बहुत से लोग पहले जब विपक्ष को पता लगा उससे पहले उनको डिस्चार्ज करके घर भी भेज दिया गया। तो ये बड़े सवाल है जिसका जवाब तो सरकार को देना होगा और इसके लिए गृह विभाग ही बनता है क्योंकि पुलिस और आर्म फोर्सेस उन्हीं के अंडर आती है। तो अगर उनके ऑर्डर पर नहीं चला है कुछ तो किसके ऑर्डर पर ये फैसला लिया गया है?
2: न केवल असंसदीय है बल्कि रूल 353 के खिलाफ है, भारत के गृहमंत्री के खिलाफ। अगर उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया कि उन्होंने आदेश दिया, कोई ऐसा आदेश बिना किसी तथ्य के, कहीं गोली नहीं चली, उसके बावजूद इस सदन के माध्यम से देश में जिस तरह से भ्रम और गुमराह पैदा करना चाहते हैं और इस सदन को चलाने की स्पीकर साहब के बार बार कहने से उस रूल 353 का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर कोई आरोप है उनके पास तथ्य है, ऑथेंटिकेट करेंगे तो मंत्री को एक पत्र देना चाहिए, स्पीकर को पहले देना चाहिए जिससे वो जवाब दे सकें। तो ये सदन में अभी तक तो लगातार आंदोलन बाद कांग्रेस पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही थी, अभी तक तो कभी ये बात आई नहीं जो आज आरोप लगाया।
3: बिल इज पास बट दिस बिल इज नॉट गोइंग टू रियली सॉल्व द प्रॉब्लम एट हैंड। द प्रॉब्लम इज हैंड इज अबाउट लीकिंग ऑफ एग्जामिनेशन पेपर्स। दिस इन नो वे स्ट्रेंथन्स द प्रोसेस ऑफ सेटिंग एग्जामिनेशन पेपर्स and issuing them on the day of the exam. This bill does is impose stricter punishment after a leak has happened, after an investigation takes place, after the investigation identifies who are responsible for the leak and then gives them stiffer punishments and penalties. So then setting up a fast track courts has never really solved any problem in India. We have fast track courts for various subjects, but
4: 2024 bill which the Modi government has introduced has now been further strengthened by these amendments. I want to remind the students of this country two things. For the first time in the country's history, we now have a strong, dedicated anti-paper leak law. And while we have made systemic reform, the leader of the opposition, Mr. Rahul Gandhi, who tried to pose himself as a champion of students over the last 2 weeks, did not speak even one sentence in his entire speech.
5: ये अगर गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं है अपने मंत्रालय चलाने में तो क्या वो भी प्रॉक्सी हैं, कठपुतली हैं किसी की, कि पैलेट गन्स चल गई और गृह मंत्री को पता ही नहीं था? तो जिम्मेदारी तो गृह मंत्री की ही है। AK-47 चल रही है और गृह मंत्री के लिए आप कहेंगे कि नहीं वो जिम्मेदार नहीं है, तो क्या नागपुर से आदेश आते हैं? ये भी कमाल की बात कर रहे हैं।
6: ये बिल काहे का पास हुआ है? LOP को बोलने नहीं दिया, उनकी स्पीच चल रही थी। अरे भाई वो जो मुद्दे उठा रहे हैं उसका जवाब दो, ये किसी बात का इनके पास जवाब नहीं है। होम मिनिस्टर जवाब दें कि मैंने नहीं गोली का ऑर्डर दिया है या मैंने कोई फोर्स यूज करने का ऑर्डर, ये कौन से प्रजातंत्र में संभाल तो करने ही होते हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? और जो इडियट उन्होंने कहा वो तो एक स्टूडेंट की स्टोरी में कहा, इनको थोड़ी किसी को कहा है, अब ये उस पे करे जा रहे हैं, मतलब हर चीज पे, मतलब LOP को बोलने ही नहीं देना चाहते।
7: और राहुल गांधी जी जिस पद पर हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो जिम्मेवार पद पर हैं, उस पूरे लोकतंत्र की व्यवस्था का अंग हैं। अब राहुल गांधी जी जो सड़क पर बोलते हैं उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तथ्यों से परे बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और उसको सत्यापित भी नहीं कर रहे हैं। सत्यापित करें तो राहुल गांधी जी को क्षमा मांगनी चाहिए इस तरह के अपने अलोकतांत्रिक व्यवहार के लिए।
8: Aishwarya Jain has been tracking all the finer details for us. He joins us live at the moment. Aishwarya, Rahul Gandhi has demanded a Supreme Court monitor probe. Has the government responded specifically to that demand or has it confined its response to rejecting the allegations?
9: Well, there was point by point rebuttal that was given by Bharatiya Janata Party MP Sambit Patra, and in response to that, Union Minister Dr. Jitendra Singh also stated that the facts that Rahul Gandhi is telling are absolutely baseless. These are not facts, but these are to divert the major attention. Rahul Gandhi did not spoke any word about the anti-paper leak during his statement. Is something that the Bharatiya Janata Party went on to say. While Rahul Gandhi stated that this is not an anti-paper leak, this is anti-paper leak punishment bill. This has nothing to do to stop the paper leaks in the country, but this has just enhanced the punishment or the penalty for those who indulge in such practices. This is not prior you know, to how to stop, or there are no such rules that have been mentioned. These are after the you know, after the punishment that is being given by the pastor court, then this bill will be said. But of course, as far as Rahul Gandhi is concerned, he clearly stated that there were orders from the Home Minister. He directly leveled allegations on the Home Minister that according to his order only, there were pallet guns, there were tear gases that were fired. On the other side, it is the Bharatiya Janata Party who clearly stated that it is the SDM, DM who orders shooting on any mob. It is not the Home Minister. And without submitting any notice to the Lok Sabha Speaker or without informing the House, how can he level an allegation against any member of the House or the Minister of the country? Certainly, these are, you know, politics that Rahul Gandhi is doing is something that Bharatiya Janata Party has to say. On his demand of Supreme Court monitored probe, nothing has been said as of now by the government.
8: All right.
9: Perhaps the war of words will continue today in the parliament as well. On one side, Rahul Gandhi is adamant that he will seek resignation of Amit Shah. On the other side, the Bharatiya Janata Party stating that Rahul Gandhi should apologize on misleading the country.
8: Ashwara, we'll of course continue to track the latest developments with you and also what to expect in parliament today. Thanks so much for joining us for now. Well, the political battle over the student protests has now drawn former senior police officers into the debate. After Leader of Opposition Rahul Gandhi accused Union Home Minister Amit Shah of being accountable for the police action during the anti-paper leak protests, retired police officials have pushed back. Rejecting Rahul Gandhi's allegations, former Director General of Police S.P. Ved and other retired officers have argued that operational decisions during protests are taken by officers on the ground based on the situation, not by the Home Minister. They have maintained that the use of force, including lathi charge, is decided by field commanders in accordance with established crowd control protocols, while written authorization is required in the case of paramilitary deployment. But Rahul Gandhi, meanwhile, has maintained that because the Delhi police and central forces report to the Home Ministry, so political accountability ultimately rests with the Home Minister. The government, though, has rejected allegations of excessive force and has denied that pellet guns were actually used. Listen in to these reactions we've lined up for you.
10: It is an unreasonable demand, what LOP is demanding. Home Minister lays down overall policy for the forces and the union territories. He doesn't decide what force to be used on the spot. It is decided by the magistrate on the spot or senior police officer on the spot. How much force to be used, what is the quantum and what kind of force to be used. What we saw in Delhi Jantar Mantar violence, I think there were, even as per Delhi police data, about 900 of these people had a criminal record. So that speaks of the number of people who had past criminal record. So what kind of people were present there? They were not only students.
11: इस तरीके की अदूरदृष्टापूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए. कानूनी पहलू समझ लेना चाहिए. कानूनी पहलू जो है धारा 148, 149, 150, धारा 43 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में समाहित हैं. कृपया उनको एक बार देखने का कष्ट करें और सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी. ये कल्पना शक्ति की उड़ान से और कोरे आरोपों से ज्यादा कुछ भी नहीं है.
12: भी जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति को ऐसे प्रकरणों में बोलने से पहले मेरा मानना है कि पूरी प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए. दिल्ली में पुलिस कमिश्नरेट है और पुलिस कमिश्नरेट में जो मैजिस्टीरियल पावर्स हैं वो पुलिस के पास रहती हैं. अगर कोई और...

0: Prashant Kishore is contesting here on from this seat, and he's challenging right into the BJP's bastion. So it has become a prestige battle, not only for Nitin Naveen, but also for Samrat Chaudhary, who happens to be the chief minister here. And this is the first election under his leadership, which will be fought in Patna. So both the parties, both Prashant Kishore's Jan Swaraj or BJP, they are leaving no stone unturned to ensure that they are able to sail through. And that is that resulted in one of the high-stake dramas, which actually was played up in the police station there here in Patna, where Prashant Kishore alleges that 16 of his party workers, the committed party workers, the core workers of his party, they were picked up last night, illegally detained by Patna police, and their whereabouts were not disclosed by Patna police. Now, the Patna police has not officially reacted on it, but this matter will certainly be playing out as the day progresses.
1: And we'll of course continue to track all the finer details. Prashant Kishore is alleging that 16 Jan Swaraj workers were detained without information, as my colleague Prabhakar is reporting. We'll of course continue to track when the police officially reacts. But you know, a by-election in one Patna constituency is attracting attention far beyond its boundaries. Polling is underway in Bankipur, a seat the BJP has held uninterrupted for three decades now. But this contest is about more than retaining a stronghold. It's also the first electoral test for Chief Minister Samrat Chaudhary after taking charge. And just as importantly, the first time political strategist turned politician Prashant Kishore as a candidate is asking voters to back him at the ballot box. So a seat that Nitin Naveen has held for five terms now sees a fierce contest between his 32-year-old successor, BJP youth leader Neeraj Kumar, Jan Swaraj Party Chief Prashant Kishore, who makes his poll debut as I mentioned, and RJD's Rekha Kumari Gupta, who was the runner-up on the seat last election. Now for the BJP, a comfortable win would reinforce the argument that its leadership transition in Bihar has not dented its support. For Prashant Kishore, meanwhile, this is the moment his political project moves from speeches and strategy to electoral credibility. After his party failed to win a single seat in last year's assembly election, this verdict will indicate whether his appeal can actually translate into votes. We've got crucial political reactions lined up for you. Listen in.
2: एक चीज जानी है, ये बाकीपुर का घर घर में भाजपा है, एनडीए है, और आज घर घर के लोगों का आशीर्वाद और समर्थन आपके सामने दिख रहा है। लोगों का जिस प्रकार से आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है, मैं मानता हूँ कि आज जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और हमारे नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी हमारे यहाँ पर बिहार में जिस प्रकार से जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक एनडीए की टीम के रूप में काम किया है, आज भी जनता के मन में वही विश्वास और समर्थन दिख रहा है। और मैं मानता हूँ जितने भी लोगों ने भ्रम फैलाने का प्रयास किया होगा, जनता ने आज विश्वास पूरी तरह से सड़कों पर दिखाकर स्पष्ट कर दिया है।
3: एकदम बिहार की जनता और बांकीपुर की जनता इस बार फिर से कमल छाप को भारी मतों से विजय बनाएगी।
4: भाजपा ने अपनी पूरी
3: कोई लड़ाई नहीं।
5: बांकीपुर ने हमेशा विकास, सुशासन और जनसेवा को सर्वोपरि रखा है। हर चुनाव में इसी सोच के साथ अपना जनादेश दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी बांकीपुर विकास की इस यात्रा को और मजबूत करेगा। जैसा कि हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने भी बांकीपुर की जनता से एनडीए समर्थित प्रत्याशी श्री नीरज कुमार सिन्हा जी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। जिस भरोसे के साथ आपने हमेशा श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर विश्वास जताया है, उसी भरोसे को इस बार भी जीत में बदलना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आपके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।
6: ऐसा है कि मेरे लोकसभा के 6 विधानसभा में बांकीपुर है, मैं रहता हूँ बांकीपुर में, मैं वोटर हूँ बांकीपुर में। हमारा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या रिश्ता है? विधानसभा मैं उनका वोटर, लोकसभा वो मेरे वोटर, तो बहुत ही प्रभावी जीत होगी, निर्णायक जीत होगी और हम लोग कसकर लगा, पूरा एनडीए एक
7: है। लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, इस बार बांकीपुर की जनता जो है बदलाव चाहती है। बहुत देख लिया बीजेपी को, ये लोग चंदा चोरी करके, वोट चोरी करके छात्रों पर AK-47 गोलियां चला रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को आगे बढ़ा रहे हैं, अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।

0: है, खुशी बहुत हो रही है।
1: बासिल, 100 मीटर इज ऑलवेज स्पेशल, वेदर इट इज इन पैरा स्पोर्ट और इट इज इन एबल बॉडी स्पोर्ट। विनिंग अ सिल्वर इन 100 मीटर, व्हाट डज इट फील फॉर यू?
0: इट इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड फर्स्ट कॉम्पिटिशन, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। आई एम सो हैप्पी। नेक्स्ट कॉम्पिटिशन विल कम बैक टू बेटर टाइम।
1: ओके, दिलीप, मुझे ये बताइए कि आपने कैसे 100 मीटर शुरू किया? मैं कहीं पढ़ रही थी कि आप एबल बॉडीड एथलीट्स के साथ भी भागते थे।
0: हाँ, पहले मेरे वो कोच ने भेजना का सर ने मेरे को पहले नॉर्मल में खिलाया। उधर उधर ने मेडल दिए, मैंने जीता। फिर बाद में पैरा में आए, पैरा में आए दौड़ते वक्त मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं पैरा में दौड़ता हूँ। इधर आके पैरा में इधर कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता। अच्छा लगा,
1: बासिल,
0: बहुत अच्छा लगा।
1: देर हैव बीन कॉम्पिटिशन्स वेर यू हैव बीटन दिलीप, यू हैव कम फास्ट एंड यू हैव कम फर्स्ट एंड दिलीप हैज कम सेकेंड। टेल अस, व्हाट वाज द कॉम्पिटिशन लाइक टुडे?
0: It was like I'm so happy. First and second, we are so
1: Was the competition very strong or not very strong in your field?
0: it was climate problem. I was disappointed by timing. It was 10:08. I expecting 10:05, 10:04. It will be come back next time.
1: दिलीप, सब कह रहे हैं कि ग्लासगो में जो सबसे बड़ी चैलेंज एथलीट्स के लिए वो है वहाँ का वेदर, वहाँ का क्लाइमेट, कभी कभी बारिश भी हो रही है। आपने कैसे एडजस्ट किया उस मौसम में और ट्रैक के साथ?
0: मैं जिधर ट्रेनिंग करता हूँ नासिक में मेडिकल फाउंडेशन, उधर वेदर वेदर ऐसा ही रहता है। ठंडी भी बरसती है, बारिश भी होती है। तो इधर इधर वैसा ही था। इधर ठंडी थी, बारिश भी थी। मेरे को वैसे ट्रेनिंग करने में उधर दिक्कत नहीं आती थी, इधर भी दिक्कत नहीं आई। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर।
1: और आप क्या इंडिया में ट्रेनिंग किए, बाहर जाके ट्रेनिंग किए? कैसे ट्रेनिंग्स कैसा रहा आपका?
0: पहले मैं इधर नासिक में ट्रेनिंग करना था, बाद में साई में ये क्या बैंगलोर में गया, उधर ट्रेनिंग किया बस।
1: लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट योर पास्ट, बासिल। हाउ डिड यू जॉइन पैरास्पोर्ट? व्हाट मेड यू जॉइन पैरास्पोर्ट?
0: लास्ट ईयर आई स्टार्टेड पैरा स्पोर्ट्स। इट वाज माय ओल्ड कोच सजेशन मी दिस वन।
1: So you've just started Paralympics, and in your second year, you have won a Commonwealth medal. And before this, what did you do?
0: Sorry,
1: Before this, what did you do?
2: before what you are doing before coming to
0: before
2: Paralympics?
0: in able body competition only participate.
1: Okay.
0: That time was I think 11 11 4 11 3 I think. No, last year we run 10:09 to this year 10:06. Next year we don't.
3: All right, in other news, a new documentary has thrust Oscar-winning actor and 30 Seconds to Mars frontman Jared Leto back into the spotlight. Four women have accused Oscar-winning actor and 30 Seconds to Mars frontman of criminal sexual conduct, with the alleged offences having taken place when they were actually teenagers. All the women say they encountered Leto between the year 2002 and 2016, when he was in his 30s and 40s. He's actually now 54. And Jared Leto has not responded to these allegations.
4: A BBC documentary has reignited allegations against Oscar-winning actor and 30 Seconds to Mars frontman Jared Leto, titled Jared Leto, Hollywood's Dark Secret. The documentary features interviews with women who accused the actor of sexual misconduct between 2002 and 2016, when Leto was in his 30s and 40s. The women describe a pattern of alleged abuse across multiple settings, from hotel rooms and music festivals to dressing rooms and private residences. Several of the allegations involve women who say they were underage at the time of the alleged incident. One woman says she was 17 when she was allegedly sexually assaulted in a motel, adding that she blamed herself for years. Another alleges she was left alone with Leto in a hotel room and says she felt threatened during the encounter. A third woman alleges she was underage when she had a sexual relationship with the actor, an allegation that, if true, could amount to statutory rape. This is not the first time the actor has faced such accusations, although none have resulted in criminal convictions. Jared Leto has either denied or not responded to the allegations.
3: All right, let's switch tracks now. After months of anticipation, the Ranbir Kapoor Sai Pallavi Yash Tara Ramayana trailer has dropped, teasing the good fight, the epic battle between the Maryada Purushottam Rama and the Lord of Three Worlds Ravan, a visual spectacle that promises a legendary battle of good versus evil. We leave you with these visuals.
5: Devlok, Prithvilok, Patallok, Tino Loko mein ek hi raj hoga.

0: He has said that no shots were fired, only tear gas was used. That's what the government maintains. On behalf of the government, Jitendra Singh argued that security forces exercised restraint. BJP leaders, including Sambit Patra, though, have accused Rahul Gandhi now of making baseless allegations and misleading the country. So as Parliament passes a tougher law to deal with paper leaks, the debate now is whether there must also be accountability for the events that unfolded on the streets. It's Rahul Gandhi's allegations of police excesses versus the BJP's denial. Neither side seems to be willing to back down for now. Here are the crucial political reactions you cannot ignore this morning.
1: The leader of opposition is not allowed to speak in the Lok Sabha. Multiple times, I asked the speaker to bring order to the house so that I could speak. Multiple times, Riju ji, Rajnath Singh ji, others were allowed to speak, but I'm not allowed to speak.
2: Unhone aakshep lagaya ki I was not allowed to speak. Mujhe bolne ka mauka nahi diya gaya. मैंने बार बार कहा है जब 45 लोगों को बोलने का मौका दिया गया तो राहुल गांधी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा. जब प्रियंका वाड्रा जी को बोलने का मौका दिया गया, प्रियंका वाड्रा जी ने भी कई आक्षेप लगाए तो राहुल गांधी जी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा. राहुल गांधी जी को पूरा मौका दिया गया मगर राहुल गांधी जी बोल नहीं पाए.
1: That if I apologize, then I will be allowed to continue to speak. See, the first thing is I will never ever apologize to the BJP, RSS or any other person associated with them. This is something that has to be understood.
2: Rahul Gandhi ji ne kaha ki main BJP ya RSS ya BJP se jude kisi vyakti se kabhi maafi nahi mangta hu aur nahi mangunga. अभी तो कुछ दिन पहले ही कोर्ट में शिवराज सिंह चौहान जी से माफी मांगा था, लिखित में माफी मांगा था कि मुझे प्लीज माफ कर दीजिए. और मुझे याद है चौकीदार चोर है जो उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे हलफनामे में एफिडेविट पर माफी मंगवाई थी, एफिडेविट हस्ताक्षर करके राहुल गांधी जी ने माफी मांगा था. तो राहुल गांधी जी आप यहां माफी नहीं मांगते हैं माइक के सामने, मगर कोर्ट में जाके एफिडेविट देके आप माफी मांगते हैं. यह आपका कैरेक्टर है, यह हम भी जानते हैं कि आप माफी मांगते हैं, कोर्ट में मांगते हैं.
3: इफ ही डिडंट नो इट वाज हैपनिंग, ही इज इनकॉम्पिटेंट, एंड इफ ही ऑर्डर्ड इट, ही इज कल्पेबल. देयर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी. ही आइदर ऑर्डर्ड इट और ही हैज नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज मिनिस्ट्री एंड ही इज इनकॉम्पिटेंट. इन आइदर केस ही हैज टू गो.
2: माफी मांगो राहुल गांधी, माफी इसलिए मांगो क्योंकि आपने भ्रम फैलाया. आपके भ्रम के कारण देश में फिर से अराजकता फैलाए, फिर से फैल जाए, इस प्रकार की कुचेष्टा करने की कोशिश आज आपने सदन में किया. सदन में वो फेल्योर हुआ तो अब आप बाहर कर रहे हैं, ये चलेगा नहीं. राहुल गांधी जी आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी और हम सब जो देश के हित में काम कर रहे हैं हम सभी कहेंगे माफी मांगो राहुल गांधी.
4: रेड गन्स चनी हैं, लोगों के चोट आई है, आंसू गैस के गोले चले हैं, लाठी चली, कई घायल हुए हैं, बहुत से लोग अस्पताल गए और बहुत से लोग पहले जब विपक्ष को पता लगा उससे पहले उनको डिस्चार्ज करके घर भी भेज दिया गया. तो ये बड़े सवाल है जिसका जवाब तो सरकार को देना होगा और इसके लिए गृह विभाग ही बनता है क्योंकि पुलिस और आर्म फोर्सेस उन्हीं के अंडर आती है. तो अगर उनके ऑर्डर पर नहीं चला है कुछ तो किसके ऑर्डर पर ये फैसला लिया गया है.
5: न केवल असंसदीय है बल्कि रूल 353 के खिलाफ है, भारत के गृह मंत्री के खिलाफ. अगर उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया कि उन्होंने आदेश दिया, कोई ऐसा आदेश बिना किसी तथ्य के, कहीं गोली नहीं चली उसके बावजूद.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: का टायर, जेके टायर। जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, everyday.
2: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind. I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
3: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 PM.
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
4: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
5: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
6: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
7: Hello and welcome to watching Prime 5 News.

0: नहीं दिया गया। मैंने बार बार कहा है, जब 45 लोगों को बोलने का मौका दिया गया तो राहुल गांधी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? जब प्रियंका वाड्रा जी को बोलने का मौका दिया गया, प्रियंका वाड्रा जी ने भी कई आक्षेप लगाए, तो राहुल गांधी जी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? राहुल गांधी जी को पूरा मौका दिया गया, मगर राहुल गांधी जी बोल नहीं पाए।
1: आई वॉज ऑल्सो गिवन एन अश्योरेंस दैट इफ आई अपोलोजाइज देन आई विल बी अलाउड टू कंटिन्यू टू स्पीक। सी द फर्स्ट थिंग इज आई विल नेवर एवर अपोलोजाइज टू the BJP, RSS or any other person associated with them. This is something that has to be understood.
0: Rahul Gandhi ji ne kaha ki main BJP ya RSS ya BJP se jude kisi vyakti se kabhi maafi nahi mangta hu aur nahi mangunga. Abhi to kuch din pehle hi court mein Shivraj Singh Chauhan ji se maafi manga tha, likhit mein maafi manga tha ki mujhe please maaf kar dijiye. Aur mujhe yaad hai chaukidar chor hai jo unhone kaha tha, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे हलफनामे में एफिडेविट पर माफी मंगवाई थी, एफिडेविट हस्ताक्षर करके राहुल गांधी जी ने माफी मांगा था। तो राहुल गांधी जी, आप यहां माफी नहीं मांगते हैं माइक के सामने, मगर कोर्ट में जाके एफिडेविट देके आप माफी मांगते हैं, यह आपका कैरेक्टर है। यह हम भी जानते हैं कि आप माफी मांगते हैं, कोर्ट में मांगते हैं।
2: इफ ही डिडंट नो इट वाज हैपनिंग, ही इज इनकॉम्पिटेंट, and if he ordered it, he's culpable. There's no third possibility. He either ordered it or he has no idea what's going on in his ministry and he's incompetent. In either case, he has to go.
0: माफी मांगो राहुल गांधी, माफी इसलिए मांगो क्योंकि आपने भ्रम फैलाया। आपके भ्रम के कारण देश में फिर से अराजकता फैलाए, फिर से फैल जाए, इस प्रकार की कुचेष्टा करने की कोशिश आज आपने सदन में किया। सदन में वो फेल्योर हुआ तो अब आप बाहर कर रहे हैं, ये चलेगा नहीं। राहुल गांधी जी, आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी और हम सब जो देश के हित में काम कर रहे हैं, हम सभी कहेंगे माफी मांगो राहुल गांधी।
3: पैलेट गन्स चनी है, लोगों के चोट आई है, आंसू गैस के गोले चले हैं, लाठी चली, कई घायल हुए हैं, बहुत से लोग अस्पताल गए और बहुत से लोग पहले जब विपक्ष को पता लगा उससे पहले उनको डिस्चार्ज करके घर भी भेज दिया गया। तो ये बड़े सवाल है जिसका जवाब तो सरकार को देना होगा और इसके लिए गृह विभाग ही बनता है क्योंकि पुलिस और आर्म फोर्सेस उन्हीं के अंडर आती है। तो अगर उनके ऑर्डर पर नहीं चला है कुछ तो किसके ऑर्डर पर यह फैसला लिया गया है?
4: वो न केवल असंसदीय है बल्कि रूल 353 के खिलाफ है, भारत के गृहमंत्री के खिलाफ। अगर उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया कि उन्होंने आदेश दिया, कोई ऐसा आदेश बिना किसी तथ्य के, कहीं गोली नहीं चली, उसके बावजूद इस सदन के माध्यम से देश में जिस तरह से भ्रम और गुमराह पैदा करना चाहते हैं और इस सदन को चलाने की स्पीकर साहब के बार बार कहने से उस रूल 353 का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर कोई आरोप है उनके पास तथ्य है, ऑथेंटिकेट करेंगे तो मंत्री को एक पत्र देना चाहिए, स्पीकर को पहले देना चाहिए जिससे वो जवाब दे सकें। तो ये सदन में अभी तक तो लगातार आंदोलन बाद कांग्रेस पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही थी, अभी तक तो कभी ये बात आई नहीं जो आज आरोप लगाया है।
5: बिल इज पास बट दिस बिल इज नॉट गोइंग टू रियली सॉल्व द प्रॉब्लम एट हैंड। द प्रॉब्लम इज हैंड इज अबाउट लीकिंग ऑफ एग्जामिनेशन पेपर्स। This in no way strengthens the process of setting examination papers and issuing them on the day of the exam. This bill does is impose stricter punishment after a leak has happened, after an investigation takes place, after the investigation identifies who are responsible for the leak, and then gives them stiffer punishments and penalties. So then setting up a fast track courts has never really solved any problem in India. We have fast track courts for various subjects, but
6: 2024 bill, which the Modi government has introduced, has now been further strengthened by these amendments. I want to remind the students of this country two things. For the first time in the country's history, we now have a strong, dedicated anti-paper leak law. And while we have made systemic reform, the leader of the opposition, Mr. Rahul Gandhi, who tried to pose himself as a champion of students over the last 2 weeks, did not speak even one sentence in his entire speech.
7: अगर गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं है अपने मंत्रालय चलाने में तो क्या वो भी प्रॉक्सी हैं, कठपुतली हैं किसी की कि पैलेट गन्स चल गई और गृह मंत्री को पता ही नहीं था? तो जिम्मेदारी तो गृह मंत्री की ही है. AK-47 चल रही है और गृह मंत्री के लिए आप कहेंगे कि नहीं वो जिम्मेदार नहीं है, तो क्या नागपुर से आदेश आते हैं? ये भी कमाल की बात कर रहे हैं.
8: ये बिल काहे का पास हुआ है? LOP को बोलने नहीं दिया, उनकी स्पीच चल रही थी. अरे भाई, वो जो मुद्दे उठा रहे हैं उसका जवाब दो. ये किसी बात का इनके पास जवाब नहीं है. होम मिनिस्टर जवाब दें कि मैंने नहीं गोली का ऑर्डर दिया है, जब मैंने कोई फोर्स यूज करने का ऑर्डर, ये कौन से प्रजातंत्र में संभाल तो करने ही होते हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? और जो इडियट उन्होंने कहा वो तो एक स्टूडेंट की स्टोरी में कहा, इनको थोड़ी किसी को कहा है. अब ये उस पर करे जा रहे हैं, मतलब हर चीज पे, मतलब LOP को बोलना ही नहीं देना चाहते.
9: और राहुल गांधी जी जिस पद पर हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो जिम्मेवार पद पर हैं, उस पूरे लोकतंत्र की व्यवस्था का अंग हैं. अब राहुल गांधी जी जो सड़क पर बोलते हैं उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तथ्यों से परे बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और उसको सत्यापित भी नहीं कर रहे हैं. सत्यापित करें तो राहुल गांधी जी को क्षमा मांगनी चाहिए इस तरह के अपने अलोकतांत्रिक व्यवहार के लिए.
10: राहुल गांधी का भाषण सुना नहीं क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि उनका भाषण सुनूं, क्योंकि उनके भाषण में रहता तो होता तो कुछ नहीं है. कोई भी विपक्ष का नेता जब बोलता है आरोप जरूर करे, कोई गलत बात हो तो उसके ऊपर जरूर बोले, टिप्पणियां भी करे, लेकिन आपने देश के युवाओं के लिए सकारात्मक क्या बोला है? आपने कौन सा सॉल्यूशन दिया है? आपने ऐसी कौन सी बात बताई कि जिसके कारण देश के युवाओं का कल्याण होने वाला है?
11: मिस्टर राहुल गांधी इज अ फेक नकली गांधी हु लैक्स इवन बेसिक इंटेग्रिटी. ही इज अ पोलर ऑपोजिट ऑफ महात्मा गांधी. And we saw Rahul Gandhi, the Nakli Gandhi, in the most vile and mendacious manner, blatantly lying about our Honorable Home Minister, both in Parliament and later in his press conference. It is very clear now that Rahul Gandhi had a premeditated agenda to manufacture mayhem and disrupt parliamentary proceedings.
12: Right, we have Aishwarya, my colleague, joining us in order to get us more. Aishwarya, you know, of course, the BJP coming out outrightly and denying that there was any use of pellet guns. They're saying all that was used was tear gas. How's Rahul Gandhi substantiating those claims?
6: Well, Rahul Gandhi clearly stating that there are two demands. Number one, there should be an independent Supreme Court monitored panel probe into the entire brutality that he alleged that police personnel did against the students on July 28th when the Parliament Sansad Chalo March was done by the students. And certainly he also alleged that Home Minister Amit Shah was the one who ordered the Delhi police to use of forceful brutality with the use of pellet guns and lathi charge and also the tear gases that were used as well. And it is Home Minister who is solely responsible for the kind of attack, and therefore the reason perhaps yesterday in the press conference he stated that Home Minister Amit Shah must go, and that's the non-negotiable demand, and until and unless this doesn't happen, then they will continue to fight. Altogether, the Bharatiya Janata Party clearly stating that it is Rahul Gandhi which is misleading the country with incorrect information. If Rahul Gandhi is saying truth, then why not he is showcasing the documents or the order copy that he has? On what grounds he is making such a claim?

0: We're told that, you know, Minarbondol and Tunumoldol were part of a nexus or a syndicate which is used to siphon money following this, you know, that stone mining. And this all are illegal money that they kept inside their residence for past 1 year. And this man, particularly Tunumoldol, was associated with Anubrotomondol. A lot of politics is also happening. Police said that they are also trying to reach out main person, that is Tunumoldol, because during this interrogation, Minarbondol has confessed that this huge amount of cash belongs to Tunumoldol, and the golds are also belong to him. So police is now to ascertain the link with this duo with Anubrotomondol or anybody else, because a lot of demands are being made by political parties, be it BJP or the Trinamool Kaligat faction has demanded a thorough probe into it. Remember, just a couple of days after it has come, since that Anubrotomondol switch shifted to the TMC's rebel camp, which is led by Ritobroto Bandyopadhyay, it has triggered a lot of politics in the arena of Bengal at this point in time. Back to you.
1: Right, Ritik, thank you so much for getting us those details. We also have more breaking news coming in, and this is breaking news in regard to, you know, what Rahul Gandhi yesterday said inside the parliament, asking for Amit Shah, the Home Minister, to take responsibility and to be accountable for the force that was used against the student protesters. We have Rao Gopal Yadav, the Samajwadi Party MP, commenting and saying, "I want to ask people, when shots were fired in Ayodhya, it was Mulayan Singh who was held responsible for ordering it. Yet when shots were fired here in Delhi, it was attributed to the administration." Asking people to look at the double standards here is the Samajwadi Party MP. In fact, let's just listen in to what Ram Gopal Yadav has said on Twitter.
2: ऐसा ये तो बात सही है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से लोगों से कि अयोध्या में गोली चली तो मुलायम सिंह ने चलवाई, अयोध्या में गोली चली तो मुलायम सिंह ने चलवाई, और यहाँ चली तो प्रशासनिक चली। आप देखिए दोहरा मापदंड।
1: Siding with Rahul Gandhi and saying that it is the Home Minister that needs to take responsibility. Do remember, Rahul Gandhi is demanding an apology and action that should be taken against the Home Ministry and the Home Minister in particular because of, giving those orders for force to be used. In fact, pellet guns were used, something that's not allowed, because protesting is the right according to the constitution of any citizen of the country. Tejri, my colleague, joining us in order to get us details of this. Tejri, questioning how the buck is being passed around here. Is, the Samajwadi Party leader there, we just heard him say that, you know, it is the government that's distancing themselves by saying that operational decisions are taken on the ground. How is it that Mulayan Singh Yadav took account, responsibility and was held responsible and accountable for what happened, earlier in Ayodhya? How is the same not applicable here in Delhi?
3: Well, absolutely. Samajwadi Party is now raising guns at the center because they have been stating so as to, the guns were not, they were actually, in fact, telling so as to how the guns are used, even if the orders are given. They are not given at the orders by the Home Minister, but there is a procedure on whose orders and how these orders are given, approval is given to use all these weapons. But and on the same lines now, Samajwadi Party MP Ram Gopal Yadav is questioning so as to in all these years the BJP has been holding Mulayam Singh accountable for ordering firing in Ayodhya at that particular point of time, and then when the shots are fired in the national capital, it was attributed to the administration. And Samajwadi Party says that it is nothing but it is just the double standard of the center, because they are giving some other reasons in the national capital and some other reason when it comes to firing in Ayodhya. So now needs to be seen that how the BJP responds to it, because yesterday also we have been seeing that how there was a massive ruckus as far as this entire issue is concerned. Rahul Gandhi also held a press conference yesterday in which he stated that it is none other than Home Minister Amit Shah who is responsible and accountable for it. However, later on, the BJP also held a counter press conference to it. BJP MP Sambit Patra held a press conference and stated so as to who actually is responsible and on whose orders. Ideally, all these things happen according to the protocol to which Samajwadi Party is now responding.
1: Right. Thank you so much for getting us all the very latest. Tejri, we will keep coming back to you more as to what's happening in the parliament once again at 11 o'clock this morning. Now, switching tracks now is 4.6% voter turnout that's been recorded till about 9 o'clock this morning in Bankipur. By polls for the Bankipur Assembly constituency is underway. The seat vacated by BJP President, we're talking about Nitin Naveen, has become the ultimate battleground for the vindication of BJP's double engine model in the state of Bihar, with Simraj Chaudhary now at the helm as the Chief Minister. Jan Swaraj Chief and party candidate from the seat, Prashant Kishore, has alleged that many workers of the party were arrested by the police without any information. A seat that Nitin Naveen has held for 5 terms now sees a fierce contest between his 32-year-old successor, BJP leader Neeraj Kumar, Jan Swaraj Party Chief Prashant Kishore, who makes his poll debut, and also RJD's Rekha Kumari Gupta, who was a runner-up on the seat last election.
4: एक चीज जानिए, ये बाकीपुर का घर घर में भाजपा है, एनडीए है, और आज घर घर के लोगों का आशीर्वाद और समर्थन आपके सामने दिख रहा है। लोगों का जिस प्रकार से आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है, मैं मानता हूँ कि आज जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और हमारे नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी, हमारे यहाँ पर बिहार में जिस प्रकार से जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक एनडीए की टीम के रूप में काम किया है, आज भी जनता के मन में वही विश्वास और समर्थन दिख रहा है। और मैं मानता हूं, जितने भी लोगों ने भ्रम फैलाने का प्रयास किया होगा, जनता ने आज विश्वास पूरी तरह से सड़कों पर दिखाकर स्पष्ट कर दिया है।
5: एकदम बिहार की जनता और बांकीपुर की जनता इस बार फिर से कमल छाप को भारी मतों से विजय बनाएगी।
6: भाजपा ने अपनी पूरी
5: कोई लड़ाई नहीं
7: है, नहीं कोई ड्रामा नहीं हुआ। जैसा कि बताया हम लोगों ने कि 16 से ज़्यादा जन स्वराज के नेताओं को पुलिस ने कल पूरे शाम देर रात तक परेशान किया, उनको अरेस्ट, सो कॉल्ड अरेस्ट किया है, लेकिन बेसिकली पेपर पे अरेस्ट नहीं किया, उनको डिटेन कर लिया है और फिर उनको अलग अलग थानों में रखा गया। थानों से हटा कर उनको कहाँ ले जाया गया ये किसी को पता नहीं था, लेकिन जो भी बात है वो तो अपनी जगह पर निपटा जाएगा। ये क्लियर है कि हारती हुई भाजपा, पहले उन्होंने अपने विधायक सांसदों को लगाया, मंत्री नेता अभिनेता सबको लगाया, कोई असर नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने अपने एनडीए के साथियों को लगाया, साथी दलों को, उसका भी असर नहीं हुआ।
8: बांकीपुर ने हमेशा विकास, सुशासन और जनसेवा को सर्वोपरि रखा है, हर चुनाव में इसी सोच के साथ अपना जनादेश दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी बांकीपुर विकास की इस यात्रा को और मजबूत करेगा। जैसा कि हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने भी बांकीपुर की जनता से एनडीए समर्थित प्रत्याशी श्री नीरज कुमार सिन्हा जी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। जिस भरोसे के साथ आपने हमेशा श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर विश्वास जताया है, उसी भरोसे को इस बार भी जीत में बदलना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आपके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।
9: का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, इस बार बांकीपुर की जनता जो है बदलाव चाहती है। बहुत देख लिया बीजेपी को, ये लोग चंदा चोरी करके, वोट चोरी करके छात्रों पर AK-47 गोलियां चला रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को आगे बढ़ा रहे हैं, अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही,
6: त्रिकोणीय लड़ाई है।
9: लोगों का अपना आकलन है, लेकिन हम लोग जो है पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। पूरा आशीर्वाद जनता का राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार प्रत्याशी रेखा गुप्ता जी को मिल रहा है। भाजपा ने किसानों को ठगा, युवाओं को ठगा, आप देखिएगा भाजपा के लोग जो हैं जितने वादे चुनाव में किए थे कुछ कोई वादा पूरा नहीं किया।
10: आज मतदान प्रारंभ हो चुका है, सुबह से ही मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी, जिस तरह से मैंने रुझान देखा है, हमारे एनडीए के उम्मीदवार नीरज सिन्हा कमल पर बटान भारी मात्रा पर दबा रहे हैं लोग और जीत हमारी तय है।
11: वोटर हूं, नितिन जी का भी मैं वोटर रहा हूं जब वो लड़ते थे, और नितिन जी बांकीपुर में मेरे वोटर हैं, पटना साहिब एमपी को। तो एक प्रेम का रिश्ता है। और बांकीपुर में जितना काम हुआ है,

0: जब जब सृष्टि पर संकट आया है, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की।
1: मेरा ज्येष्ठ पुत्र

0: see here, the kind of, caricatures that have gathered here on the ground zero here, and the placards that they have brought. Bhagwant Mann, Shan Karo, Paper League, Ban Karo. Aaj ki badi...
1: आज की डिमांड है कि जो पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर है उनका इस्तीफा होना चाहिए।
0: तो जब तक इस्तीफा नहीं देते ऐसी धरना,
2: जब तक केजरीवाल के जो शिक्षा मंत्री पंजाब के इस्तीफा नहीं देंगे ऐसी प्रदर्शन होते रहेंगे। दो कानून हमारे देश में नहीं चलते। दिल्ली में इनको इस्तीफा चाहिए, पंजाब में ये कहते हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। इतना दोगलापन ये कहाँ से लाते हैं?
0: So as you heard here, Vedika, the protesters here calling it the double standards of the Aam Aadmi Party Supremo Arvind Kejriwal, because while he extends support to the protest here at Jantar Mantar, he is not able to dismiss his own education minister in Punjab over the alleged paper leaks of 11 exams. And we are showing you the visuals currently. You'll see very dramatic visuals on the ground. These are the protesters who are in fact trying to march towards the Aam Aadmi Party office. But they have been stopped at barricades number 2 because of the huge deployment of the security forces. The entire area, the security has been beefed up, and you'll hear constant sloganeering, not just against the Punjab Chief Minister, but also against the Aam Aadmi Party Supremo, Arvind Kejriwal. And they go on to say that these protests on Ground Zero will continue even in Delhi until unless it is the Education Minister of Punjab who submits his resignation. Over to you.
3: Ishika, I need you to stay safe while you do get us the ground reports from the national capital. I want to understand, you've had Swati Maliwal come out and say that 6 paper leaks have taken place in Punjab in the last 5 years. What has been the statement, the defense by the Punjab government so far?
0: Well, as you rightly mentioned, Vedika, there are these MPs, you know, be it Swati Maliwal or be it, in fact, different other MPs and leaders of the BJP who continue to ask for resignation over the paper leak. In fact, it is the Punjab government who's saying that it is not, in fact, a paper leak. They are dismissing this claim of the BJP, saying that it was just a small irregularity. So they are dismissing the entire claim of the Punjab paper leak. So that is the stand so far that has come from the Punjab government, and that is why the BJP continues to question the silence of the Aam Aadmi Party Supremo Arvind Kejriwal here. You'll see all of these women also out here. Punjab Sarkar to maan hi nahi rahi hai ki paper leak.
4: देखिए, इनका ये हमेशा से काम रहा है। आज यहाँ दिल्ली के अंदर जो पेपर लीक मामले में इन्होंने छात्रों को उकसाने की कोशिश, जबकि नीट के छात्र उस धरने में, उस प्रदर्शन में नीट के छात्र थे ही नहीं, इन्हीं के गुंडे मवाली बाकी पार्टियों के लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर दिल्ली का माहौल खराब कर रहे थे। और आज अगर पेपर लीक का मामला पंजाब में आया है तो ये केवल ये कह रहे थे कि हम चीटिंग करा रहे हैं, ब्लूटूथ के उससे चीटिंग करा रहे हैं।
0: केजरीवाल तो अब तक इस पर कुछ नहीं बोले हैं। पंजाब सरकार लगातार कह रही है कि ये पेपर लीक का मामला ही नहीं, ये तो चीटिंग का मामला।
5: देखिए, यही दोहरा चरित्र जो है केजरीवाल का, इसी के खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से प्रदर्शन है। पंजाब में लगभग 5 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर हैं जो लीक हुए हैं, चाहे वो कॉलेज और स्कूल लेवल के पेपर हों या कंपटीशन लेवल का। और इन्हीं के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा था कि पेपर लीक में मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, और अगर इसमें अगर पंजाब सरकार में के भी पेपर लीक होते तो उसके भी शिक्षा मंत्री से हम इस्तीफा मांगेंगे। और आज ये लोग पूरी तरह से मुकर रहे हैं, और इसी के खिलाफ हम लोग अपने दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी के
0: तो लगातार ये धरना प्रदर्शन,
5: ये यहाँ से पंजाब तक चलेगा, और जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम लोग केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी और भगवंत मान के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे।
0: So as you heard here, Vedika, the Punjab government again and again saying that it was not a matter of paper leak, it was just cheating, while the BJP on ground zero, they say that until unless Arvind Kejriwal, the Aam Aadmi Party Supremo, breaks his silence and dismisses the education minister of Punjab, the protest from Delhi to Punjab will continue on ground zero.
3: So the pressure is building for the resignation of the Punjab Education Minister Harjot Singh Benz. Ishika, I want to understand from you, on one hand you have those BJP supporters behind you saying that we will continue with the protests, but what's the larger strategy, what's the larger game plan? Also to be noted, it's not just the BJP that is calling for his resignation, there are also other opposition parties who wanted the same, the resignation of Punjab

0: जब से सत्र शुरू हुआ है तब से यह सिवाय इसके कि हाउस को डिसरप्ट किया जाए, हाउस को बाधित किया जाए और हाउस न चलने दिया जाए, इसी में उनका सारा ध्यान है। और इसके साथ साथ मैंने यह भी देखा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, हमेशा गोल पोस्ट चेंज करना इसकी इनकी आदत है। सरकार की तरफ से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। और यह इसी सत्र की बात नहीं है, जितने भी पीछे सत्र हुए हैं सभी में सरकार ने हमेशा हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार रही है।
1: द बेस्ट वे टू गिव अ क्वाइटनेस टू दिस कंट्रोवर्सी इज टू टेबल द इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट द गवर्नमेंट हैज डन to check under what circumstances the firing was done. If the firing was done, who fired the gun, what ammunition was used, and who issued the order, why were those weapons and ammunition issued to quell after all a peaceful domestic protest, and what was the operating procedure, did they follow the operating procedure. So they just table a report saying this is the investigation, this is what has happened, this is the narrative of things, the matter will be closed.
2: मंत्री ने सदन के अंदर कह दिया कि फायरिंग हुई ही नहीं है और राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं।
3: आप बताइए तो उस लड़के जो राहुल जी आपके सामने लाए थे, उस लड़के को उसके पूरे शरीर में पैलेट्स कहां से आई, आसमान से गिर गई?
4: विटनेस वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, NOP they didn't allow to complete the speech. This become practice of the house. And Amit Shah is completely running away from the house. We need an answer. Who is ordered that the charge and firing in Delhi? Who is ordered? Amit Shah should come to Parliament and to explain. This is our clear demand.
5: Amit Shah was not aware of the firing or the brutal assault that has taken place on the students, then he is incapable to head the Delhi police. If he was aware and deeply involved with it, he is also a culprit. So either way, he has to come to the parliament and respond to the queries of the opposition.
6: Pellet guns chani hain, logon ke chot aayi hai, aansu gas ke gole chale hain, laathi chali, कई घायल हुए हैं, बहुत से लोग अस्पताल गए और बहुत से लोग पहले जब विपक्ष को पता लगा उससे पहले उनको डिस्चार्ज करके घर भी भेज दिया गया। तो ये बड़े सवाल है जिसका जवाब तो सरकार को देना होगा और इसके लिए गृह विभाग ही बनता है क्योंकि पुलिस और आर्म फोर्सेस उन्हीं के अंडर आती है। तो अगर उनके ऑर्डर पर नहीं चला है कुछ तो किसके ऑर्डर पर ये फैसला लिया गया है?
7: ये ताकत है जो आतंकवादी है, जो नक्सलवादी है, जो देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रच रहा है, वो सारे लोग उनसे डरते हैं। तो आप डर रहे होगे। दूसरा सवाल ये है कि आपके किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है ना, जनता ने वोट दिया है, जनता ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको गृहमंत्री बनाया है। तो जब तक भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट देती रहेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते रहेंगे और मोदी जी अपने मंत्रिमंडल में जब तक माननीय गृहमंत्री जी को गृहमंत्री बनाते रहेंगे, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। और आप निहायत ही अभद्र गलत मानसिकता के व्यक्ति हो जी।
8: देखिए, हमने उनसे कहा कि विषय क्या है, विषय ये है कि बाहर जो छात्र और युवा प्रदर्शन कर रहे थे उस प्रदर्शन में लाठियां चली, कील लगी, लाठियां चली, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, अश्लीलता हुई, पिलेट फायरिंग हुई जहां सशरीर छलनी शरीर के साथ राहुल गांधी जी ने प्रस्तुत कर दिया। तो अब उस पर अगर चर्चा होगी तो जवाब कौन देगा? जवाब तो गृहमंत्री जी ही देंगे। आप गृहमंत्री जी के अंतरिक्ष मंत्री जितेंद्र सिंह को ले आए यहां पे, अरे सैटेलाइट की बात हो तो वो करे, लाठी का जवाब वो नहीं दे सकते। अच्छा फिर हम क्या कह रहे भाई कि जो मंत्री सामान्यता उसे सदन में आना चाहिए, हमको उसे अपने घर तो नहीं बुला रहे, तू अपने घर क्यों नहीं आ रहा, सदन में क्यों नहीं आ रहा, ऐसी क्या मजबूरी है कि वो सदन से भाग रहे हैं?

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी रावत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट एज दे ब्रेक। Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 PM.
11: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम ही हो भारत का स्वाभिमान।
12: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
13: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, every day.
14: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
15: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, and Sandy Howard.
14: The show that sets the prime time agenda.
15: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
14: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
16: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
17: Really?
16: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
13: चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
18: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
13: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea, witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
19: This location from Tel Aviv
13: brought clarity right now, right to complex right issues of national security and international affairs.
20: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
21: The Ayatollah Khamenei is gone.
22: There has been a missile attack right behind me
21: and we need to rush into a shelter.
23: Heading there.
24: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
13: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
25: POK के firing range में खड़े हैं।
26: Just few inches away is POK.
25: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
13: Launch control 0 to 100.
27: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
28: This car makes no sense, yet it makes every sense.
29: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
28: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
13: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
30: So many attacks.
13: The chaos and cries of disaster zones. The fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
30: It's incredible.
13: He has seen history break. Live. Unfiltered.
0: 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right and Center.
0: Hard facts.
1: War struck country.
0: Hard questions.
1: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
2: In the Kargil area.
1: North Ukraine.
3: In France. In Italy.
1: At Srinagar.
3: France.
1: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV.

0: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
1: From the newsroom, to the studio, to the thick of political action.
2: You're watching NDTV 24/7.
3: The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues.
2: With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of DJing.
3: Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also on.
0: It's an image that's caught the nation's imagination, a video of a crowd of protesters trying to push away a school bus and one woman standing in the way. The picture is even more of a talking point now because it is reminiscent of what we saw a week ago, a young Mumbai model standing in front of a police bus in the midst of an anti-NEET protest. Here, there is a school bus and the woman standing in front of it is in police uniform. The lady in this picture is ACP Traffic Monica Shukla, and the video is from the farmers' protest in Bhopal Wednesday. When the protesters were trying to enter the city, the IPS officer was right there with her team. The image of her holding off hundreds of men standing alone in front of a school bus has now gone viral. She spoke to us a while ago here on NDTV.
2: So there are certain images that go completely viral. We've had in the recent past several images of people who are standing up, even as, you know, there is a crowd around them in the face of intimidation. One such picture has emerged again from Bhopal, where a police officer, a lady police officer, can be seen standing in front of a school bus, even as there are hundreds of people around us, around her. Joining us now is the lady in that video, ACP Traffic, Monica Shukla, who was there in Bhopal. Monica ji, bahut bahut dhanyawad humse baat karne ke liye. Ye bataiye ki wo jo तस्वीर है जिसमें आप एक स्कूल बस के सामने ऐसे हाथ फैलाकर खड़ी हुई हैं, आखिर हुआ क्या था उस वक्त? वो स्कूल बस कैसे फंस गई आंदोलनकारियों के बीच में?
4: नहीं नहीं, वो स्कूल बस फंसी नहीं थी। हमने लगभग 10-12 स्कूल बसें बैरिकेटिंग के रूप में यूज की थी। उन बसों के एक तरफ जो पुलिस के बैरिकेट होते हैं, लगभग 6 to 7 लेयर बैरिकेट थे। उसके बाद तीन लेयर बसेस हमने आंदोलनकारियों को मेन शहर में जाने से रोकने के लिए लगाई थी। तो जो आंदोलनकारी थे उन्होंने वो पूरे बैरिकेड्स तोड़ दिए थे या खींच दिए थे। उसके बाद वो बस पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गए थे और वो आंदोलनकारी उस बस में बैठकर उसको ले जाना चाह रहे थे जो पुलिस ने एस बैरिकेटिंग लगाई थी। मेरा उद्देश्य उस समय एट ए ग्लांस यही था कि हमको आंदोलनकारियों को वो बस नहीं ले जाने देना है। तो जो इंस्टेंट मेरे दिमाग में आया, मैं उसके सामने खड़ी हो गई कि नहीं भाई, आप इस गाड़ी को नहीं ले जा सकते।
2: आपको डर नहीं लग रहा था? क्योंकि मैं उन तस्वीरों को देख रही हूँ, एक आप अकेली महिला हैं और उस भीड़ में सिर्फ और सिर्फ वहां पर आंदोलनकारी दिख रहे हैं। कोई बस के ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई बस के सामने, कहीं बस आपके ऊपर चढ़ जाती तो।
4: मेरी बहुत कम था इसलिए हमको ये करना पड़ा और मेरी टीम पूरी मेहनत से काम कर रही थी
2: लेकर के बड़े सारे पूरे देश भर में भी जो आंदोलन अलग अलग चल रहे हैं उसको लेकर के पुलिस के बारे में कई बातें हो रही हैं, बल प्रयोग के बारे में बात हो रहा है। तो कैसे आप वो एक बैलेंस मेंटेन करती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन हो पाए और किसी भी कोई भी अगर मासूम वहां पर फंसता है तो उसके

0: ऊपर अतिरिक्त बल प्रयोग ना।
1: देखिए, हमको बड़ी संयम और सहनशीलता से काम करना पड़ता है, क्योंकि जो आंदोलनकारी हैं, यद्यपि वो भी कोई क्रिमिनल नहीं है, वो अपनी मांगों को लेकर वहां इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ये सही बात है कि वो एकदम से शहर में अगर एंटर हो जाएं तो उससे जनता को नुकसान भी हो सकता है, कि जरूरी नहीं कि आंदोलनकारी में कौन कैसा व्यक्ति हो। दूसरी बात, जो किसान आंदोलन के लोग आए थे उनका कोई एक लीडर नहीं था और वो यूथ ज्यादा थे, तो ये दोनों चीजें थोड़ी गंभीर हो सकती हैं। और हमने काफी डायवर्जन लगाए थे, मैं ट्रैफिक और क्राइम देखती हूँ, तो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जनता को भी दिक्कत ना हो उनके इस प्रकार के डायवर्जन से, या एकदम से लीडरलेस जो लोग होते हैं वो कहीं शहर में एंटर कर गए तो हमारी शहर की जनता को तकलीफ ना हो, कानून व्यवस्था खराब ना हो, यही सब दिमाग में रहता है। और हम सभी लोग, हमारी पूरी टीम 2 दिन से वहां लगी हुई थी, तो जो मेरे सामने जितना मेरे को उस समय निर्णय लेना लगा वो मैंने लिया कि किसी भी प्रकार से आंदोलनकारी बस को ना ले जाएं, और मेरे को इसमें कोई ऐसा डर नहीं लगा।
0: तो एक एज अ पेरेंट आखिरी में क्या उन पेरेंट्स को आप कहेंगे? पेरेंट, पुलिस, बहुत सारे रोल आपको अदा करने पड़ते हैं, एक महिला है, एक माँ है, खुद की बेटी पढ़ रही है, क्या कहेंगे जो लोग आपको अभी इस वक्त देख रहे हैं?
1: देखिए, किसी का बच्चा अगर आंदोलन में जाता है तो उसके पेरेंट्स का थोड़ा सा चिंता होना लाजमी है, बट मेरा कहना है कि हम सड़कों पर बच्चे उतरें, इससे बेहतर है कि वो लोकतांत्रिक तरीके में जो जो चीजें हो सकती हैं पहले उनको देखें। हर समस्या का समाधान सड़कों पर जाकर नहीं होता है, ऐसा मेरा सोचना है।
2: We're sipping a short break. I'll be back with Breaking Ground at 1 p.m. where our top focus once again will be on why has Hockey India changed the jersey from blue to orange. A lot of people asking that question, be it sporting greats or politicians. We'll be back with more.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
8: सबका राजा आकर मसाला।
9: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom. Weekdays at 4 p.m.
10: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
11: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। अभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
12: आर प्योर शाही पनीर मसाला।

0: से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, और यह इसी सत्र की बात नहीं है, जितने भी पीछे सत्र हुए हैं सभी में सरकार ने हमेशा हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार रही है।
1: The best way to give a quietus to this controversy is to table the investigative report the government has done to check under what circumstances the firing was done. If the firing was done, who fired the gun, what ammunition was used, and who issued the order, why were those weapons and ammunition issued to quell a peaceful domestic protest, and what was the operating procedure, did they follow the operating procedure. So if they just table a report saying this is the investigation, this is what happened, this is the narrative of things, the matter will be closed.
2: मंत्री ने और मंत्री ने सदन के अंदर कह दिया कि फायरिंग हुई ही नहीं है, और राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं।
3: आप बताइए तो उस लड़के जो राहुल जी आपके सामने लाए थे, उस लड़के को उसके पूरे शरीर में पैलेट्स कहां से आई, आसमान से गिर गई?
4: विटनेस वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, एलओपी दे डिडंट अलाउ टू कंप्लीट दी स्पीच, they have to, they, this become practice of the house, and Amit Shah is completely running away from the house. We need an answer, who is ordered that the charge and firing in Delhi, who is ordered? Amit Shah should come to parliament and to explain. This is our clear demand.
5: Amit Shah was not aware of the firing or the brutal assault that has taken place on the students, then he is incapable to head the Delhi police. If he was aware and deeply involved with it, he is also a culprit. So either way, he has to come to the parliament and respond to the queries of the opposition.
6: Pellet guns chani hain, logon ke chot aayi hai, aansu gas ke gole chale hain, laathi chali, kai ghayal hue hain, bahut se log aspatal gaye, aur bahut se log pehle जब विपक्ष को पता लगा उससे पहले उनको डिस्चार्ज करके घर भी भेज दिया गया। तो ये बड़े सवाल है जिसका जवाब तो सरकार को देना होगा, और इसके लिए गृह विभाग ही बनता है, क्योंकि पुलिस और आर्म फोर्सेस उन्हीं के अंडर आती है। तो अगर उनके ऑर्डर पे नहीं चला है कुछ, तो किसके ऑर्डर पे ये फैसला लिया गया है?
7: ये ताकत है जो आतंकवादी है, जो नक्सलवादी है, जो देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रच रहा है, वो सारे लोग उनसे डरते हैं। तो आप डर रहे होगे। दूसरा सवाल यह है कि आपके किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है ना, जनता ने वोट दिया है, जनता ने, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको गृहमंत्री बनाया है। तो जब तक भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट देती रहेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते रहेंगे, और मोदी जी अपने मंत्रिमंडल में जब तक माननीय गृहमंत्री जी को गृहमंत्री बनाते रहेंगे, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। और आप निहायत ही अभद्र गलत मानसिकता के व्यक्ति हो।
1: देखिए, हमने उनसे कहा कि विषय क्या, विषय ये है कि बाहर जो छात्र और युवा प्रदर्शन कर रहे थे, उस प्रदर्शन में लाठियां चली, कील लगी लाठियां चली, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, अश्लीलता हुई, पिलेट फायरिंग हुई, जहां सशरीर छलनी शरीफ के साथ राहुल गांधी जी ने प्रस्तुत कर दिया। तो अब उस पर अगर चर्चा होगी तो जवाब कौन देगा? जवाब तो गृहमंत्री जी ही देंगे। आप गृहमंत्री जी के अंतरिक्ष मंत्री जितेंद्र सिंह को ले आए यहाँ पे, अरे सैटेलाइट की बात हो तो वो करे, लाठी का जवाब वो नहीं दे सकते। अच्छा, फिर हम क्या कह रहे भाई कि जो मंत्री सामान्यता उसे सदन में आना चाहिए, हमको उसे अपने घर तो नहीं बुला रहे, तो अपने घर क्यों नहीं आ रहा, सदन में क्यों नहीं आ रहा, ऐसी क्या मजबूरी है कि वो सदन से भाग रहे हैं?
8: Well, the entire India Alliance have gathered outside the Makar Dwar of the Parliament, and the press conference that Mr. Rahul Gandhi, leader of opposition in Lok Sabha, did yesterday, he clearly stated that it was Home Minister Amit Shah who gave orders to the police personnel who allegedly had used pellet guns and lathi charged against the students who were protesting on July 20th.

0: पहलू समझ लेना चाहिए। कानूनी पहलू जो है धारा 148, 149, 150, धारा 43 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में समाहित हैं। कृपया उनको एक बार देखने का कष्ट करें और सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ये कल्पना शक्ति की उड़ान से और कोरे आरोपों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है।
1: भी जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति को ऐसे प्रकरणों में बोलने से पहले मेरा मानना है कि पूरी प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए। दिल्ली में पुलिस कमिश्नरेट है और पुलिस कमिश्नरेट में जो मैजिस्टीरियल पावर्स हैं वो पुलिस के पास रहती हैं। अगर कोई ऑर्डर करेगा लाठी चार्ज का, टीयर गैस शेल्स का, चिली बॉम्ब्स का, कोई भी ऑर्डर करता है, पैलेट गन्स का, पंप एक्शन गन का, या अल्टीमेट आगे चलकर फायरिंग का, तो ये ऑर्डर वहीं मौके पे लिया जाता है। जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करते हैं वो इन राइटिंग ऑर्डर मांगते हैं अधिकारी से, उनके पास प्रोफॉर्मा रहता है, वो तुरंत पहले उस पर साइन करा लेते हैं।
2: गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, मैंने 37.5 बरस वर्दी पहनी है, भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है मुझको अच्छी तरह से मालूम है। लीथल वेपन, नॉन लीथल वेपन में होता है रबर बुलेट, उसके बाद ये जो कहते हैं पैलेट गन कुछ नहीं होती, 12 बोर बंदूक होती है। राहुल गांधी जी को याद दिला दूं, 7 नवंबर 1966 को इसी पार्लियामेंट के सामने संत आए थे, साधु आए थे, गायें लेकर आए थे, उनका ये था कि साहब गोबध नहीं होना चाहिए, ये करिए इंदिरा जी को कहा था, और इंदिरा जी गांधी ने सीधे राइफलों से गोली चलवाई थी। पुलिस का रिकॉर्ड के अनुसार 8 साधु संत मारे गए थे, गायें मारी गई थी।
3: Meanwhile, amid all this, CRPF chief Gyanendra Pratap Singh has told his personnel, his security personnel, he would own bona fide decisions taken on duty. His assurance came as the Delhi protest action faces internal scrutiny.
4: आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे हमारी ऑपरेशनल बटालियंस हो, चाहे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की यूनिट्स हो, आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बलहित में जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है। आप अपना काम निर्भय होकर करते रहें।
3: In news just coming in, this has to do with the Karnataka cabinet expansion row. NDTV's Deepak Gupta now confronted Congress MLAs for being in Delhi and not in the state of Karnataka amid Karnataka facing a drought. NDTV confronted Congress MLAs Vijay Anand, Kashyapa Nawar and R.B. Thimmapur.
5: मिस्टर Kashyapa Nawar here with us. Sir, बताएंगे कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं और MLAs जो हैं दिल्ली में कैंप कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटका में ड्राउट है, रेनफॉल नहीं हो रही है, कॉन्स्टिट्यूएंसी खाली है, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे MLAs यहाँ पर हैं, क्या आप भी एक यू आर होपफुल दैट दिस एंटायर ड्रामा विल एंड टुडे? सर,
6: इट्स नॉट अ ड्रामा, इट्स अ प्रोसेस, यू नो आवर पार्लियामेंट इज गोइंग ऑन, ऑनरेबल अपोजिशन लीडर इज वेरी बिजी, ऑल द MPs, आवर AICC प्रेसिडेंट, उन्हें भी बिजी है, वो पार्लियामेंट की वजह से और देश में जो जो चल रहे हैं, स्टूडेंट का ये मुद्दा, इसके वजह से डिले हो रहे हैं। ये चुड़े तो कुछ भी नहीं है,
5: ये दो दिन लास्ट वीक यहाँ पर थे, ये वीक भी यहाँ पर है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके ही लोग बता रहे हैं, बीजेपी वाले अटैक कर रहे हैं कि ड्राउट है, रेनफॉल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने सारे प्रॉब्लम है, कावेरी की प्रोटेस्ट हो रही है, और विधायक मिनिस्टर बनने के लिए यहाँ पर दिल्ली में कैंप कर रहे हैं।
6: अरे एक हफ्ते से ये चल रहा है, ये छोड़े तो पहले हम कॉन्स्टिट्यूएंसी में था ना, सब कुछ मैनेज करके 3 साल से जो हम जो लोगों का मांगे थे वो मांगे पूरे करके हम रखे हैं।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: थोड़े में

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा,
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 PM.
6: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
7: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
8: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, every day.
9: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
10: Hello and welcome to watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal. What's happening? How?
9: The show that sets the prime time agenda.
10: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
9: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
11: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
12: Really?
11: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
8: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
13: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
14: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
13: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
15: Launch control, 0 to 100.
16: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
17: This car makes no sense, yet it makes every sense.
18: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
19: Your friend said, ye le le. We said, maybe not.
20: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: It is an established system that whether it's the leader of the house or leader of the opposition, when they speak on behalf of the party, the time is allocated, it is counted in the time allotted to the party. However, looking at the position, being the leader of the house and leader of opposition, they always enjoy some privileges, and I have seen the Honorable Chair has always given that courtesy. But what I want to say is opposition leader represents entire opposition party, and leader of the house represents entire house. And that part, we will always ensure from our side. And only when there is some kind of remarks which is objectionable, then only our members rise and object. Otherwise, leader of opposition is always given due respect.
1: I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Leader of the opposition, Sriman Malliarjun Gargeji. Please take your seat. Nothing will go on record except Gargeji's speech. Don't get agitated. Let us hear the points of the speakers. Please listen.
2: धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आपने सविस्तर से सुनने का भी बात यहाँ पर रखी, इसीलिए मैं अपने बात को ठीक ढंग से रखूँगा और मैं यही चाहता हूं कि सरकार के लोग ठीक से सुने और इसका उत्तर वो ठीक से दे, यही मेरी अपेक्षा है और आप मुझे डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, ये मेरी आशा है। सर, मैं शुरू करता हूं एक मैं शुरू करता हूं पेपर चुराने वाले बचते रहे, पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले पीटते रहे, ये कैसा न्याय, ये कैसी रीत, गुनाहगार हंसते रहे, मासूम सिसकते रहे, यानी मासूम लोग आज मासूम, तो ठीक है, आपका हिंदी बहुत अच्छा होगा, आपका हिंदुस्तानी भी अच्छा होगा, मेरा भी थोड़ा हिंदुस्तानी सुनिए। सर, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पेपर लीक होने से कितने मासूम लोगों का नुकसान हुआ और कितने लोग पीटे गए, कितने माँ बाप परेशान हैं, कितने औरतें बच्चे परेशान हैं, इसको जाहिर करने के लिए ये बात मैंने आपके सामने रखी। सभापति जी, आप अभी पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 में जो जहाँ चर्चा के लिए आई है, उसमें सिर्फ आंकड़े बदले हैं। मेरे पास पूरा ये है बिल, तो उन्होंने पढ़ा, वो बिल मेरे पास भी है, इसमें सिर्फ आंकड़े बदलते गए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क इससे पड़ेगा आप किस ढंग से इस एग्जामिनेशन को

लेके चलेंगे और विदाउट पेपर लीक आप कैसा बनाएंगे वो उस पे ऊपर निर्भर करता है, नहीं कि इसके इसको हमने बढ़ाया 1 करोड़ से 10 करोड़ किया या 2 महीने से 6 महीने किया, इससे सुधारने वाला नहीं है। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि ये तो नई बात तो नहीं है, लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना और उधर से अभी अपने भाषण में कहा कि आप लोगों ने नहीं माना। लेकिन इस मजबूत कानून को ठीक करने के लिए हम बार बार आपके सामने कहते रहे, लेकिन आप किए नहीं। लेकिन 2 साल के बाद आप जो काम कर रहे हैं उसे 2024 में ही क्यों नहीं किया, तो अब कर रहे हैं 2024 में, यानी 2 साल पहले आप क्यों नहीं किए? क्योंकि तब आपको राजनीति करनी थी, लोकसभा चुनाव सामने थे, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार पेपर लीक और युवाओं के भविष्य का मुद्दा उठा रहे थे। आप ये करते तो क्रेडिट नहीं मिलता था उस वक्त, इसीलिए आप उसको छोड़ दिए। तो उस समय परीक्षा व्यवस्था को सुधारने की बजाय आप जल्दबाजी में ऐसा कानून लाए जिसे 2 साल में ही आपको संशोधित करना पड़ रहा है। सभापति जी, इस अमेंडमेंट बिल का हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये अभी भी अधूरा है। ये पेपर लीक होने के बाद भी इसकी कार्रवाई को मजबूत करना ये जरूरी है। पेपर लीक होने से रोकने की मजबूत व्यवस्था इसमें नहीं है। सिर्फ आपने आंकड़े बदले, लेकिन आपका इंटेंशन आपने इसमें नहीं बताया, इसको कैसा रोकना। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि ये सब जो माहौल आज चल रहा है, इस माहौल को ठंडा करने के लिए और जो आज हमारे विद्यार्थी युवा जो सड़क पे आए हैं उनको ठंडा करने के लिए ये बिल लाया गया है, ये भय सो समस्या को सुलझाने के लिए नहीं। सभापति जी, पिछले 2 महीने की घटनाओं ने देश को झकझोर दिया है। देश भर के छात्रों और नौजवानों ने परीक्षा व्यवस्था की नाकामियों के खिलाफ आवाज उठाई। विपक्ष ने उनकी आवाज सड़क से लेकर संसद तक उठाई। बढ़ते जनदबाव के आगे सरकार को घुटने टेकने पड़े। मैं देश के छात्रों नौजवानों को मुबारकबाद देता हूं, उनका संघर्ष रंग लाया और सरकार को झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री को प्रधान को हटाना पड़ा। और इसीलिए ये युवाओं की ताकत है। और जब युवाओं की ताकत देखने के बाद हमारे सरकार को भी ये मालूम हुआ, अरे इससे ज्यादा अगर हम कुछ खींचतान करेंगे तो धागा टूट जाएगा और हमारी कुर्सी चले जाएगी। इसीलिए डर के आखिरी में उन्होंने युवाओं का जो डिमांड था उसको माना। लेकिन उसमें यह है, उसके पीछे है कि उनकी कुर्सी बचाने के लिए भी ये काम उन्होंने किया, ना कि विद्यार्थियों के समस्या को समझाने के लिए सुलझाने के लिए नहीं की। कुर्सी कैसा बचाना और इतना आज

0: पेशेंट्स हो रहे हैं सब कुछ, और हमारे जितेंद्र सिंह साहब भी इसको सुलझाने के लिए सड़क पर आना पड़ा, उनको भी कहना पड़ा कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं वो ये, क्योंकि उनको मेरे पास भी झुक के एक दिन आएंगे, वो वक्त भी होगा। तो प्रधानमंत्री जी,
1: गृहराज जी प्लीज
0: सर, तो वो समझाने की भी कोशिश करे, आए सब बोले, लेकिन डर इसका था उनको, वो जो सत्याग्रह या वो जो एजिटेशन था राहुल जी ने उस दिन किया, वो एकदम डर गए और डर के बोले कि ये ठीक, इसको आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। तब उन्होंने ये तय किया कि प्रधान को हटाया जाए, शिक्षा मंत्री को हटाया। तब ये एक उनका अंदरूनी विचार है, और आप किसी से भी पूछिए, वो दिल में उनके है लेकिन बाहर नहीं बोलते, क्योंकि मोदी जी अपने खुर्ची के लिए ये सब कुछ किए। ये कदम तभी उठाया जब छात्र पेपर लीक, परीक्षा की गड़बड़ियों और संस्थागत नाकामियों की बात कर रहे थे, तब सरकार ने उनकी बात सुनने की बजाय उनको अराजक कहा और हर सवाल को राजनीति से जुड़ा बताकर खारिज कर दिया था। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ साहब, जब विद्यार्थी पहले ये पूछे, महीनों से वो लोग माँ सड़कों पे बैठे और महीनों से एजिटेशन कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, उस वक्त आप क्यों नहीं पूछे, उस वक्त उनके पास क्यों नहीं गए, उनके पास क्यों आप निगोशिएट नहीं करे। बाद में बुला के नड्डा साहब अपने चेंबर में बुला के समझाने के बजाय, जिस दिन वो वहां बैठे थे उसके दो दिन बाद या तीन दिन बाद अगर आप जाते तो ये समस्या नहीं होती, इतने लोग लाठी नहीं खाते थे, इतने लोग बर्बाद नहीं होते थे, इतने लोग बारिश में नहीं रहते थे। तो ये आप, आपकी वजह से, आपके सरकार की वजह से ये सब भुगतना पड़ा। उसके कारण बीजेपी सरकार है, मोदी जी है, सबसे बड़ा हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब, जो तिकरे ही नहीं हूं मैं देख रहा हूं। मैं तो बाकी के छोटे छोटे इश्यू में आके बार बार अपनी बात रखते हैं, हर तरफ घूमते हैं, तो किस तरफ क्यों नहीं घूम रहे मुझे मालूम नहीं,
2: डरे हुए हैं।
0: तो ये प्रधानमंत्री भी मुंह नहीं खोल रहे और हमारे होम मिनिस्टर भी नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में ही इतनी गड़बड़ हो रही है और आप होम मिनिस्टर हो, लॉ एंड ऑर्डर देखते हो, इतना होने के बावजूद भी, गड़बड़ी होने के बाद आपका मुंह भी नहीं खुल रहा। क्या कोई स्टिच कर दिया क्या मुंह को, बंद कर दिया? बोलना चाहिए था खुलकर, देश का नुकसान होने के बजाय देश के भलाई के लिए आपको बोलना पड़ता है, मुंह खोलना पड़ता है, कभी इंसल्ट भी सहन करना पड़ता है, आप करना पड़ता नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो जो सबक स्टूडेंट्स ने तुमको सिखाया है उससे डबल सारे विद्यार्थी और यूथ मिलके एक दिन फिर आपको वो सबक सिखाएंगे। सर 20 जुलाई 2026 को हजारों छात्र शांतिपूर्वक संसद की ओर मार्च कर रहे थे, वे संवाद चाहते थे, लेकिन उन्हें मिला लाठी चार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनॉन्स, पैलेट गन, करंट वाले बैरिकेड, मेट्रो लाठी में किले रखकर और रेलवे स्टेशन भी बंद करें।

0: और मेट्रो बंद करें और इंटरनेट बंद करें, ये सब ठप हो गया। ये सब आपने किया और इससे विद्यार्थी उचके, नागरिक भी बहुत इसमें गुस्से में रहे। तो इसीलिए उनको ये एजिटेशन करना पड़ा, लेकिन आप संभाल नहीं सके, शांति से उनसे बात नहीं कर सके। 100 से अधिक छात्र इस एजिटेशन में जो थे वो घायल, और आईसीयू में वेंटिलेटर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पड़े बहुत से, और कई बच्चों को आंखों में वो पैलेट के छर्रे लगे, आंग पे लगे, पीछे लगे, आप सब देखे हैं, सब टीवी में आप बहुत देखते रहते हैं, आप देखे हैं। लेकिन ये देखकर हमको तो शर्म आई, उनको शर्म आया कि नहीं मुझे मालूम। जो मुझे शर्म आया, अरे मेरे विद्यार्थी जो गांव-गांव से आए, स्टेट से आए, उन बच्चों को पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं और हॉस्पिटल में गिरे हैं। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके दिल में क्या है।
1: Now I call upon the leader of the house. Sabhapati ji,
2: one minute.
1: When he speaks, Sabhapati ji, I call. When he is speaking, if he wants, I will call him. When the leader of the house is speaking, if the leader of the opposition wants to intervene, I will call the leader of the opposition.
2: Sabhapati ji.
1: Yes,
2: Sabhapati ji, leader of the opposition को हम शांति से सुन रहे हैं, और प्रजातंत्र में शांति से सुनना ये हमारी जिम्मेवारी है सरकार की। लेकिन मेरा निवेदन है लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कि वह तर्क के साथ भावावेश में ना आए, और भावावेश में ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो असंसदीय है। अभी जो उन्होंने एक वाक्य यूज किया वह असंसदीय है, उसे कार्रवाई से निकालना चाहिए, और आगे भी आप भावनाओं में ना आए। तो मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता,
1: अनपार्लियामेंट्री
3: यानी अनपार्लियामेंट्री बाई एदर साइड दैट विल बी एक्सपेंस्ड। नो, डोंट इंसिस्ट ऑन इट। Please try to be within the framework so that the smooth, wonderful debate should take place.
0: Sir, मैं कभी unparliamentary word इस्तेमाल नहीं किया। मैंने यही कहा, हम बोले तो जनशक्ति, जन लोग, विद्यार्थी, महिला, ये लोग। मैं नहीं ऐसा जाके मैं खींच लेके आता हूँ नड्डा साहब को, होम मिनिस्टर को, ये नहीं बोला। मेरा कहना यह है कि ये जनशक्ति आपको खींच के लाएगी, कम से कम आके सदन में बैठो, बोलो, सुनो, रिप्लाई दो। अब हमेशा हर चीज का हमारे पास हमदर्द बोल के कोई औषध था, तेज नहीं, जिंदा तिलिस्मान, हर बीमारी को जिंदा तिलिस्मान, फीवर आने दो जिंदा तिलिस्मान, और कोई को बुखार आ गया वो जिंदा तिलिस्म। अच्छा खांसी आ गई जिंदा तिलिस्म, उसका नाम ही जिंदा तिलिस्म। हर कौन सी बीमारी आने दो, लोग हैदराबाद में वो जिंदा तिलिस्म आती देते थे सामने, तो वैसा इनके पास कोई नहीं। हमेशा जो अपने पोर्टफोलियो के विषय रहते हैं, ठीक है, एक आधा बार हमारे स्टेट मिनिस्टर्स उनके तरफ से बोलेंगे, कोई बहुत ही अर्जेंट काम है, ठीक है, वो बोली, लेकिन हमेशा सारी बात नड्डा साहब को लगा देते हैं। वो नड्डा साहब हर चीज का वो निभाते हैं, और उसके बाद अब जितेंद्र सिंह आए, हर चीज को उनको आगे करते हैं। और ये सब क्या है, ये सब जिंदा तिलिस्मात का काम कर रहे हैं। छोड़ो सर, 20 जुलाई की घटना के तुरंत बाद सरकार को देश के सामने पूरी सच्चाई रखनी चाहिए थी, लेकिन हैरानी है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी आज तक, मैंने कहा पीएम या एचएम अपनी बात नहीं रखे, इसके बारे में रिग्रेट भी नहीं करे। रात के 12 बजे, रात के 10 बजे इंस्टाग्राम, उसमें ऐसा लेके बात कर रहे, और क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही थी, बहुत परेशान थे। अरे आपको तो मन की बात बोलने की आदत है, आपको तो हर बात में इंटरफेयर करने की आदत है, आपको तो पिछले सरकार को 100 बार गालियां देने की आदत है, कम से कम बच्चों को एड्रेस करने के लिए आपको समय नहीं मिला, रात के 12 बजे मिला। और दूसरे बात, धन्यवाद धन्यवाद, वो भी रात के 12 बजे। थैंक यू फ्रेंड्स। ये नए नए कोटे, नए नए शब्द उन्होंने प्रयोग किए, मैं तो हमेशा हिंदी में बोलते थे, हिंदी में बोलते थे। सर सर मेरे सर, अरे कोई पार्लियामेंट्री नहीं है मेरा, क्यों दिखा रहे तुम, कुछ नहीं उसमें। सर सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से उनको पूछना चाहता हूँ, लाठी चार्ज कराने के लिए, आंसू गैस करने के लिए, छोड़ने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया? कौन लाठी चार्ज का आदेश दिया, आंसू गैस का दिया, और पैलेट गन का इस्तेमाल करने के लिए आदेश कौन दिया? नहीं, आप स्टेटमेंट दे सकते थे, लेकिन आप नहीं, क्योंकि आप होम मिनिस्टर को हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन बहुत दिन हिफाजत नहीं कर सकते। नहीं होता साहब, अगर आदमी झूठ बोलता है तो एक बार उसका बाहर निकलना पड़ेगा बंटवाल, तो इसीलिए आपके लोग आए, सादे कपड़ों में छात्रों को पीटने वाले लोग कौन थे? दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? सीआरपीएफ एंड रैपिड फोर्स किसके आदेश पर काम करता है? इस पूरे घटनाक्रम का सर्वोच्च सूत्रधार कौन थे? कौन थे? अच्छा अच्छा मुझे मालूम है, देश इन सवालों का जवाब चाहता है। अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इन सवालों का जवाब अगर उनके पास नहीं है, अगर वो सफाई नहीं दे सकते यहाँ कर, वो सदन में आके ही देना, मैं बाहर पूछ रहा हूँ थोड़ी, तो आना और वो देना चाहिए। और खासकर इस कारणों के लिए, इस वजह से वो जिम्मेदार है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, और प्रधानमंत्री उनको पूछना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री की हिम्मत होती है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये उसके जिम्मेदार है, जो चीजें

मैं आपके सामने रखा, अगर वे इस्तीफा नहीं देते तो प्रधानमंत्री को उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए और दूसरे बर्खास्त करना चाहिए। यह सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं है, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम में छात्रों पर हुई बर्बरता पर भी केंद्र सरकार चुप क्यों है? बिहार में AK-47 का इस्तेमाल जिस पर हुआ तो आतंकवादी नहीं छात्र था, छात्रों पर दमन हुआ, उनको जेल भेजा गया, FIR हुआ, पर किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई। क्या सरकार को बच्चों पर हुई इस बर्बरता को लेकर जरा भी पछतावा नहीं है, जरा भी शर्म नहीं है? और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो काम हुआ, जिस तरह शिक्षा मंत्री जी इस्तीफे के बाद संसद के परिसर में बहुत पहुंचे, तो सत्ता पक्ष ने उनका जैसा स्वागत किया कि कारगिल युद्ध में जीत के आए जैसा उनकी स्वागत और उससे ये संशय संदेश है कि आप नाकामियों का भी उत्सव मनाते हो। आप नहीं मानते नड्डा साहब, दिल से आप नहीं मानते, क्या मानते हैं? इस सदन के मुख्य द्वार पर जो मंत्री राजीनामा दिया, जिसके खिलाफ ये सब चार्जेस थे, क्या वो ऐसा अपना क्या बोलते हो, हाँ, वो सब मुकुट पहन के शाल डाल लेके हंसते हुए? अरे तुम तो नाराजगी व्यक्त करना, क्योंकि मैंने ऐसी गलती की, बच्चों को मारने पीटने लगाया, तो इसलिए ये ऐसी हालत मेरी हो गई। ये पश्चाताप करने के बजाय आपने जो ये अपना जलसा मना रहे। और दूसरी बात, सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, जब जंतर मंतर पर एक महीने से ज्यादा समय तक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, तब सरकार ने संवाद का रास्ता क्यों नहीं चुना? एक मंत्री के इस्तीफे के शिक्षा व्यवस्था नहीं बदल दी, यानी एक मंत्री को इस्तीफा देता है उससे पूरे व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था बदलती, ऐसा मैं तो नहीं मानता, क्योंकि वो एक कारण। लेकिन इसको अगर आपकी सिस्टम वही रहेगी, आपका प्रयास वही रहेगा, तो निश्चित रूप से आप इसको सुधार नहीं सकेंगे। अब मंत्री तो गए, वो बात और है, लेकिन इसको सुधारने की कोशिश आप अभी भी नहीं कर रहे। सर उल्टा हमेशा उनकी आदत है, हम जो बोलते हैं उसका उल्टा करना। अगर इंस्टीट्यूशंस वही रहेंगे, NTA वैसी ही रहेगी, एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं बदलेगा और जवाबदेही तय नहीं होगी, तो कुछ महीनों के बाद फिर कोई नया पेपर लीक होगा और हम फिर इसी सदन में यही बहस हम लोग करते रहेंगे। क्योंकि पेपर लीक के बारे में आपने जो बिल रखा वो एक तरफ है, लेकिन इसको रोकने के लिए क्या करें वो इम्पोर्टेंट था, लेकिन आप सिर्फ लोगों को आपको रोकना। सर सभापति जी, सरकार की नाकामी के सबसे ताजा मिसाल NEET UG 2026 है, जिसमें 22 लाख से अधिक छात्र बैठे थे, पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द करनी पड़ी और बाद में पता चला कि परीक्षा से लगभग 15 दिन पहले बाजार में पेपर घूम रहा था। जांच में पता चला कि शिक्षा तंत्र में घुसा एक संगठित नेटवर्क नासिक, सीकर, दिल्ली
जम्मू

0: जम्मू कश्मीर, बिहार, केरला और उत्तराखंड तक ये फैला हुआ था। गिरोह खुलेआम काम कर रहा था, पर सरकार सोई हुई थी। क्या आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है? क्या आपके पास आईबी नहीं है? क्या हर स्टेट आपके हर जगह तो डबल डबल इंजन है, सरकार है, डबल इंजन सरकार? क्या वो लोग इंफॉर्मेशन नहीं देते? क्या आप कलेक्ट नहीं करते? तो समय नहीं है सर, है सब व्यवस्था उनके पास, लेकिन समय नहीं, इसको सुलझाने के लिए समय नहीं, उसीलिए वो ऐसा हुआ। मैं पूछता हूं कि आपकी केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? तो उसका जवाब उनके पास नहीं है। सभापति जी, ये कोई पहली नाकामी नहीं है। 2015 से लेकर 16, 21, 24 और 2026 तक नीट बार बार पेपर लीक और गंभीर गड़बड़ियों के आरोपों से घिरता रहा। हर बार मोदी की गारंटी फेल होते गई। हमेशा बोलते रहे, मैं देखूंगा, इस बार नहीं होने दूंगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कहाँ है कड़ी से कड़ी सजा? तो कड़ी तो टूट गई, लेकिन सजा किसको भी मिली? सर, आज सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की और स्पीडी इन्वेस्टिगेशन की बातें करती है, लेकिन उसका अपना रिकॉर्ड क्या है? 2024 नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी को क्लीन चीट मिल गई है, जिनका नाम अभी हमारे जयराम रमेश जी ने लिया, मुखिया लिया। तो क्या किया साहब? उसको नाम मालूम है, जो आदमी किया वो भी मालूम है, डालना उसको
1: पार्टी भी मालूम।
0: पहले तो बोलते थे छोटी मोटी चीज को, अगर डी नोटिफिकेशन, क्या है वो, डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन में अगर मैं विफल हो जाऊंगा तो 15 दिन के अंदर मैं नहीं करूंगा, मैं चौराहे पे अपने आप को लटका देना, मेरे फांसी डाल। ये उन्होंने कहा, मैं मजाक से नहीं कर रहा, आप ही के बात है, लगाओ ना इसको। जो आदमी किया आपको मिला है, आपके हाथ में है, जो जो आपको उसको क्लीन चीट दे रहे हैं, जो मिलता है उसको छोड़ रहे हैं, और आपका अचीवमेंट जीरो है, किसी को शिक्षा अब तक नहीं हुई। तो सर, 2026 मामले में दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सीबीआई समय पर पेश तक नहीं हुई, और पिछले दशक में केंद्र और राज्य की कम से कम 152 परीक्षाएं पेपर लीक के शिकार हो गए। और
2: खड़गे जी,
0: आज तक
2: हाउ मच मिनट्स मोर यू वांट
0: लीक के मामलों में? सर,
2: हाउ मेनी मोर मिनट्स यू वांट? Because time is over, I am just asking.
0: I want, sir, you could have asked me how many more hours you want instead of more.
2: That again, that is correct, but we cannot sit endlessly.
0: Sir, I want, I will finish another half an hour. आज तक पेपर लीक के मामले में किसी को सजा नहीं हुई। जब जांच और जस्टिस का यही हाल हो तो केवल कानून में कड़ी सजा लिख देने से न्याय नहीं मिलेगा। हर लीक लाखों छात्रों को यह संदेश देती है कि उनकी मेहनत की सरकार की निगाह में कोई कीमत नहीं है। इसका सीधा असर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और पड़ता है, और मोदी जी के कार्यकाल में लगभग 125,000 छात्रों ने आपकी सरकार की नाकामियों के वजह से सुसाइड कर लिए हैं। सर, सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करने की जगह हर बार केवल डैमेज कंट्रोल और हेडलाइन मैनेजमेंट की किया है। देशव्यापी छात्र आंदोलन के दबाव के बाद 12 साल में पहली बार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा।

0: छिपा हुआ, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी का तबादला हुआ और एनटीए के 47 अधिकारियों को हटाने का दावा किया। लेकिन सर, इसमें मैं पूछ रहा हूं, 47 में कम से कम 15 जगह खाली है और बाकी के तो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। अब कौन किसको निकाले, आप कहाँ हैं 47 लोग? तो ये सर दिखाने के लिए, कहने के लिए मत करो, लोगों के दिल जीतने के लिए करो। ये महत्व क्या है, और बच्चों की हिफाजत करने के लिए करो। सर, सरकार मानती है कि दोबारा परीक्षा करा देने की पेपर लीक का समाधान है। नीट 2026 री एग्जामिनेशन में 2 लाख से अधिक छात्र शामिल ही नहीं हो सके। छात्रों की तुलना में लगभग 2 गुनी छात्राएं परीक्षा से वंचित रही। कम समय में दोबारा परीक्षा ने आर्थिक रूप के कमजोर परिवारों पर आवास, ट्रैवल और अतिरिक्त खर्च का भारी बोझ डाल दिया। सर, करोड़ों छात्र अनिश्चितता में जी रहे हैं। परीक्षाएं टलती है, पेपर लीक होते हैं, नतीजे देर से आते हैं और भर्तियों का वर्ष तक अटकी रहते हैं। नतीजा ये होता है कि युवाओं का करियर रुक जाता है, कई उम्मीदवारों की उम्र सीमा निकल जाती है। इसीलिए हमारी मांग है कि सभी परीक्षाओं के लिए एक कानूनी रूप से टाइम बॉन्ड एनुअल कैलेंडर बनाया जाए, ताकि सरकार भी समय सीमा के प्रति जवाबदेह हो और छात्रों का भविष्य अनिश्चितता से भरोसे से न रहे। सर, मैं और एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है इसके बारे में कि इस शिक्षा व्यवस्था की बीमारी का केवल एक लक्षण है। हर 10 बच्चों में से लगभग 2 बच्चे 10वीं कक्षा तक पहुंच पाते हैं और कक्षा 12 तक आते आते 10 में से लगभग 4 बच्चे रहते हैं। यानी इससे आप अंदाजा लगाइए, 10 में से 4 बच्चे अगर हाई स्कूल तक जाते हैं तो क्या इस शिक्षण का वैल्यू है? और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो 355 रिपोर्ट के अनुसार लगभग 10 लाख शिक्षकों के पद खाली है। सर, 10 लाख शिक्षकों के पद खाली रख के आप अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं और आप अपना कल्चर बदलना चाहते हो और आप अपना देश का भविष्य विकास बनेगा, कहाँ है विकास तुम्हारा? अरे बच्चे स्कूल में बच्चे की भर्ती नहीं हो रही है, टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही है, तो आप इसके ऊपर सोचे कभी? 10 लाख खाली होने तक बैठे हैं। और दूसरी चीज, जब कक्षाओं में शिक्षक ही नहीं होंगे तो कोई भी शिक्षा नीति सफल नहीं होती। आप विकसित भारत की बात करते हैं पर 10 लाख खाली पदों को भरने के लिए कदम नहीं उठाते। सर, चुनौती हमारे शैक्षणिक संस्थानों की ऑटोनॉमी और एकेडमिक फ्रीडम का लगातार कमजोर होते जा रहा है। विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री देने की जगह नहीं होती, वे नए विचारों, साइंटिफिक टेंपर, शोध, स्वास्थ्य, बहस के केंद्र होते, तो वे संकीर्ण सोच, अंधश्रद्धा या किसी एक विचारधारा को थोपने की जगह नहीं होती। लेकिन मोदी साहब आज आरएसएस के लोगों को, मैं उसको भर्ती करके वाइस चांसलर आरएसएस पूछ पूछ के करते हैं, प्रोफेसर्स की भर्ती, आरएसएस के लोग होना, अरे उसको पढ़ना आता है क्या नहीं, या वो एक्सपर्ट है क्या नहीं। दूसरे कौम के कोई लड़के नहीं है, कोई प्राध्यापक नहीं है, सिर्फ आरएसएस अटैच्ड लोग विश्वविद्यालय में भर्ती होते हैं। और वाइस चांसलर्स हर यूनिवर्सिटी में वो आरएसएस के लोगों को ही भरते हैं। और इससे क्या हो रहा है, अच्छी सरकार की अच्छी नहीं बन रही है। करीब
1: कोटारी कमीशन ने कहा
0: कि जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, लेकिन आज हम 3% खर्च करते हैं। इस यानी 6% खर्च करना ये रिपोर्ट कहता है, लेकिन सरकार अब तक 3% खर्च कर रही है। इससे शिक्षण का सुधार होता है, बच्चों को शिक्षक मिलते हैं। अरे थोड़े तो आप इसे ध्यान दो ना। और दूसरी चीज इसी का नतीजा है कि शिक्षा एक बड़ा कारोबार बन चुका है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस सब खुल रहे हैं, उसके वजह से गरीब के बच्चे तंग और तबाह हो चुके हैं। आज देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या 70,000 से ज्यादा है, जिसमें करीब 4,50,00,000 छात्र दाखिला लेते हैं, लेकिन SC ST के बीच एनरोलमेंट आज भी राष्ट्रीय औसत से एवरेज से कम है। डिसेबिलिटी वाले छात्रों की मौजूदगी 0.12 है। सभापति जी, ये उस सोच का सिंबल है जो शिक्षा को सबका अधिकार नहीं बल्कि कुछ लोगों का विशेष अधिकार मानती है। सरकार की नीतियां बार बार उस मनुवादी सोच की याद दिलाती है जिसका उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है। और वहां पर मैं संस्कृत तो उतना ठीक ढंग से पढ़

0: ये पढ़ो इसमें आप तो, अरे आप तो मनुस्मृति है, पढ़ो इसको, मैं देता हूँ मैं आपको। तो इसीलिए
1: सर, योर मेंबर इज शाउटिंग,
0: आप इतना मेरे को टाइम दे रहे, धन्यवाद करने के बाद इंटरफियर कर रहे उनको। सर आप भी सुनने लायक है, आपको भी सुनना जरूरी है, क्योंकि
1: आई कैन गिव यू मोर टाइम ऑल्सो, बट यू डोंट लाइक लेट नाइट स्पीचेस, दैट्स व्हाई आई वांट टू कर्टाइल यू।
0: सर वन मिनट, सर अरे उस विधायक की बात ही कर रहा हूँ, हर चीज आपको बताया, नंबर बताया, टीचर्स के नंबर बताया, सिलेबस बताया, और एक बात बता दो, आप शिक्षा में सुधार ला लीजिए, सबको समान और न्यायपूर्ण शिक्षा देंगे। और आपका ये भी कहना है कि जो विश्वविद्यालय है उसमें अच्छे अच्छे टीचर्स डालना है, अच्छे वाइस चांसलर आना है, लेकिन उसमें ये भी आ रहा है, सिलेबस जो बदल रहे हैं आप उसमें ये भी आ रहा है, ये क्या है, शूद्र के वेद पाठ सुनने पर शीशे और जस्ते से उनके कान भर दिए जाए, वेद के अक्षर का उच्चारण करने से, सर वेद के अक्षर का उच्चारण करने पर उसकी जीभ काट ली जाए, तथा वेद वेद मंत्र धारण करने पर उसका शरीर काट डालना चाहिए। इसमें लिखा हुआ
1: मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मनुस्मृति हैज टू डू विद दिस बिल एनीथिंग, नो नो, वेदर दिस मनुस्मृति इज हैविंग एनीथिंग टू डू विद दिस बिल,
0: आरएसएस सिलेबस, दिस कमिंग, दिस इज कमिंग इन यूनिवर्सिटी हाई स्कूल ऑनवर्ड। सर
1: प्लीज कंप्लीट योर स्पीच, प्लीज
0: मैं आपसे
1: प्लीज कम टू,
0: सर मैं आपसे
1: प्लीज कंक्लूड योर स्पीच, प्लीज
0: प्लीज
1: यू टेक योर सीट, आई एम कमिंग टू हिम, नाउ आई एम कमिंग टू हिम, यू प्लीज टेक।

0: come to me.
1: You are a minister. You please take your seat. I am going to call you. Call the leader of the house. You please take your seat. Kharge ji, please conclude. Please conclude.
0: ऐसे सोच वालों को निकालना चाहिए. सभापति जी, यूपीए सरकार ने हर नागरिक को शिक्षा का अधिकार दिया, लेकिन ये लोग अधिकार छीन ले रहे हैं. और मैं इस कंक्लूड,
1: गार्गे जी प्लीज कंक्लूड. नाउ ऑलरेडी 15
0: सीखने के
1: बजाय पास होने
2: सभापति जी, जो अभी वक्तव्य लीडर ऑफ द ऑपोजिशन माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है, उस वक्तव्य से समाज में एक विद्वेष की भावना पैदा होती है और अशांति का भी वातावरण प्रतिपादित होता है.
1: जयराम जी, जयराम जी, यू प्लीज लिसन टू हिम.
2: अशांति का
1: दिस इज नॉट करेक्ट. When the LOP was speaking, I asked them to sit. When the leader of the house is speaking, you should listen to him.
2: अशांति का वातावरण पैदा होता है. हम सब लोग जिम्मेवार सदस्य हैं. मेरा निवेदन है कि जो उन्होंने कहा है, जहां तक मेरी पूरी जानकारी है, ये तथ्यों से परे है. और मनुस्मृति का ओरिजिनल टेक्स्ट उसको ऑथेंटिकेट करें. ये ओरिजिनल नहीं है. ये मैं निवेदन करूंगा इस पर प्रकाश डालने के लिए सुधांशु जी जरा 2 मिनट बोले.
3: सर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो विषय रखा है, मैं यहां ऑब्जेक्टिव सर सुनिए.
1: One minute, listen to me.

0: If this is, he is not authenticating that book, whatever he said about Manusmriti will not go into the records. You understand? You are authorizing the Manusmriti.
1: I will authenticate what, you know, what Kharge ji has said. Sir, Jairam Ramesh ji par bahut vidwan vyakti hai. Main unhe batana chahta hu, sir. William Jones, jo Calcutta High Court ke judge the, 1790 mein unhone Manusmriti ka translation kiya. Unhone sir, ek baar sir, puri baat kar jata hu. Sir, teen books ka translation kiya. Vidya Bharata Hipodesh, Abhikyan Chakutla wa Manusmriti. Dono available hai aur ye available nahi hai. Aur sir, main kehna chahta hu, Baba Sahab Ambedkar ki kitab, Hoover Shudras, chapter number 1, page number 1, paragraph number 3, unhone likha hai, there is no connection of modern day schedule caste with the Vedic Shudras. Baba Sahab Ambedkar ki kitab, The Untouchables, uspe likha hai, there was no untouchability in Manusmriti. Sir, maine Baba Sahab ko quote kiya hai. Aur jo aap suniye sir, inhone bola, sir, main kehna chahta hu,
0: do you know about
1: William Jones se pehle ki, do you know about Manusmriti ki ye available nahi hai. Sir, usse pehle ki, darjanon kitabein available hai. Masire Alam Giri wale bulaye, Shahnama wale bulaye, Jahangir Nama wale bulaye, Tajuke Babri wale bulaye, Fatwale Firoz Shah wale bulaye, Tabaqat e Nasri wale bulaye, aur Suriya sir, Tajik Hind wale bulaye. Sir, magar wahi available nahi, isliye maine kaha I want authentication from original text.
0: You are going to speak at the stage.
1: Aur ye angrezon
0: ka bana hua
1: koi text available nahi hai. British time se pehle ka koi text available nahi hai. Aur iska kisi bharatiya
0: ko nothing will go on record for the moment. Nothing will go on the record for the moment.
2: एक बात बहुत विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूँ
0: तिवारी,
2: आज
0: तिवारी जी वन मिनट, व्हेन यू आर स्पीकिंग, व्हेन एलओपी स्पीकिंग, ऑल योर मेंबर्स आर स्टैंडिंग ऑल द टाइम.
2: नहीं नहीं, सब बैठ गए.
0: क्या सब बैठिंग है? क्या सब बैठिंग है? यू शुड हैव सम डिसिप्लिन. यू शुड हैव सम डिसिप्लिन. When I am asking him to speak, you are shouting.
2: Sir, एक मिनट बस. मेरा एक व्यक्तिगत अनुरोध है सर.
0: प्लीज आई विल कम बैक टू.
2: माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन ने स्वयं स्वमेव नहीं बोला है, एक्स्ट्रापोल नहीं बोला है. उन्होंने अपने समर्थन में परिमल प्रकाशन पब्लिकेशन नाम है और ये किताब इनके कार्यकाल में छपी है, चल रही है, प्रतिबंधित नहीं है. तो अगर ये दिखा रहे हैं तो गलती इनकी है.
0: I want to know from you, Diwari ji. Are you authenticating? Diwari ji, Diwari ji.
2: Le जा बुक को.
0: No, no, no. I don't want the book.
2: Sir,
0: I don't want to go into the book. I'm not worried about Manusmriti. What I want to know from you is whether you are, Gargi ji, is authenticating that book. You are not authenticating. Then why you are quoting me from that book? That is not correct.
2: मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि 12 साल से इनकी सरकार.
0: Honorable leader of the house. Yes.
3: No, only one thing. Whether he is authenticating it or not. If he is authenticating it, please authenticate. I want original text of Manusmriti. Original text. Original text. Original text. Original text. Original. Before original text before the British time.
0: Trivedi ji, you please take your seat.
3: Original text before the British time.
0: Trivedi ji, when original text on his legs, why you are shouting?
3: Original text before the British time.
0: Nobody can authenticate that text. Why you are quoting him? So whatever has been quoted from that book will get expunged. And now I request Sriman Brijlal ji to deliver his speech. No, you please take your seat. Please take your seat. Yeah, unless you please take your seat. You are going to get your
4: own.
0: You are going to get your turn. Your name is there as fourth. I have got only the second. We have to conclude this debate. You can say anything. You can say all your views when. No. You can say all your views. Your number is there as fourth. I just called the number 2. Let us have the smooth discussion, please.
4: बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, मैं बहुत आभारी हूँ आपका और अपने पार्टी लीडरशिप का जिन्होंने पार्टी की तरफ से मुझे डिबेट शुरू करने का मौका दिया है। आज इस मौके से ना केवल मेरा समाज एसटी खुश हो रहा है बल्कि लाखों सुरक्षा कर्मी भी खुश हो रहे हैं जिनके साथ मैंने 37.5
0: बरस। I want a smooth, fair discussion and debate. You please conclude. Don't quote unnecessarily from other books, which you cannot authenticate. When you cannot authenticate, please don't quote.
5: No, one minute.
0: You are authenticating. Who is authenticating?
5: Sir.
0: Who is authenticating? Jairam Ramaji, you are authenticating.
6: We are authenticating.
0: You are one man. Who is speaking? He should authenticate. Let him authenticate. He is not authenticating. Sir. Why you are worried?
5: Sir.
0: Please be specific to the subject. You want to improve the law, you tell me something so that I can request the treasury bench to include that. Kindly, we all are worried about paper leakage. That is affecting the future of every youngster. That is the feeling of everyone. You please be positive, constructive, and you put your arguments.
5: Sir, देखिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैं जो बनारस यूनिवर्सिटी में पब्लिश हुई किताब को रेफर करते हुए और गौतम ऋषि ने जो बोला है वो मैं यहाँ पर रखा।
0: There are so many books from so many universities. Whether we can authenticate everything.
5: We can.
0: We cannot now. So I am requesting you please stick on to the subject of the bill.
5: सरकार का ये
0: ऐसा
5: और कारोबारी माहौल तैयार करना है जो निवेश को आकर्षित करे। निवेश तभी देश के युवाओं के लिए सार्थक होगा जब वो बड़े बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण रोजगार पैदा करे। इसीलिए हम मांग करते हैं कि सरकार संसद के सामने एक नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी पेश करे। इसमें यह स्पष्ट किया जाए कि भारत में ऐसा नीति और कारोबारी वातावरण कैसे बनाया जाना और निवेश एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड जो इन्वेस्टमेंट है वो किस ढंग से करना, ये सब चीज़ें उसमें होना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार में अब तक 30 लाख से भी ज़्यादा नौकरियां खाली पड़ी हैं और वो पब्लिक सेक्टर हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट बैंकिंग में सब सारी चीज़ें हो सकते हैं और अनएडेड स्कूल्स हो सकते हैं। हर जगह जो गवर्नमेंट मदद करती है वैसे इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, लेकिन 30 लाख वैकेंसी रहते हुए भी ये भर्ती क्यों नहीं कर रहे? वाई दे आर नॉट फिलिंग? क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट को जाता है, क्योंकि ये बैकवर्ड्स को जाता है, क्योंकि 50% वैकेंसी उनको जाता है। तो आप भर्ती नहीं करना चाहते और गरीबों के बच्चों को नौकरी नहीं देना चाहते, ये मंशा आपकी है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस, सैंक्शन पोस्ट, इसको तुरंत ही भर्ती करना चाहिए। ये मेरी तीसरी मांग है। और लास्ट में मैं आपसे कहूंगा और लास्ट में मैं ये कहूंगा
0: सर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी,
5: चार
0: सेकंड मोर देन 50% ऑफ द
5: एलोकेटेड
0: टाइम, स्टिल आई एम गिविंग यू द टाइम, यू प्लीज कंक्लूड।
5: सर सीधी मेरी चार मांगे हैं। एक, देश में एक

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में,
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
10: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
11: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े। vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
12: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
13: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
14: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal.
13: The show that sets the prime time agenda.
14: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
13: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
15: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
16: Really?
15: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
12: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
17: POK ke firing range mein khade hain.
18: Just few inches away is POK.
17: Ho sakta hai dushman ko pata ho ki Saif Ali Khan yahan par khade hain. Is it fire?
19: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है, शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
4: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
12: From the newsroom to the studio to the thick of political action.
20: You're watching NDTV 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC.
9: Welcome back. The big focus, all the developments in Parliament and the Vande Mataram bill has been brought in the Lok Sabha. Let's listen into what's taking place.
21: Stated that song Vande Mataram, composed by Bankim Chandra Chatterjee, very important, composed by Bankim Chandra Chatterjee, this full sense, which played a historical role in Indian freedom struggle, shall be honored equally with Janagana Mana. Madam, with due respect I am telling, I already spoke this bill. One person is important and one song is important for this country have a communal outlook. Why partition took place? One person, Savarkar, one song, Vande Mataram. I will demonstrate. No. This poem. Wait. Please hear me. Madam, legal issue.
22: Sri A. Raja Ji द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 02 को स्वीकृत किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे. मेरे विचार में निर्णय हाँ ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ, संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड दो विधेयक अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, खंड दो विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड एक अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, खंड एक अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।
0: जी बोलेंगे
22: माननीय मंत्री।
0: तो मैं आधे मिनट में अपनी बात रखना चाहूंगा। यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है, यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। महोदय, किसी का राजगीत का भी सम्मान भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार करती है, मोदी की सरकार करती है। और सिर्फ आग्रह इतना जरूर है कि जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्रगीत का भी गायन हो। तुष्टिकरण करने वाले लोग 1937 में जवाहरलाल ने इसी तुष्टिकरण के तहत वंदे मातरम के दो छंद को स्वीकार कर लिया था और एक विचारधारा बनती थी जिसके कारण देश में बंटवारा हो गया था। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए, वंदे मातरम। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए।
22: प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में वो हां कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्यवाही कल शुक्रवार दिनांक 31 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
9: Alright, so Lok Sabha adjourned after the Vande Mataram bill was brought into the house and voting also took place amid the sloganeering and chants, as you could hear all the disruption and chaos. However, the chair there, asking for a voice vote. This is the Prevention of Insults to the National Honour Amendment Bill, which actually puts the national song at the same status as the national

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
11: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
12: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े वंदे भारतम .org पर रजिस्टर करें।
13: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
14: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
15: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal.
14: The show that sets the prime time agenda.
15: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
14: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
16: POK के firing range में खड़े हैं।
17: Just few inches away is POK.
16: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
13: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
18: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
10: Has snowballed into a full-blown political controversy with opposition leaving no stone unturned, launching a blistering attack on Vijay. The DMK shared pictures of both Vijay and former Chief Minister M.K. Stalin, drawing parallels between the two and firing cheap copy jibe, accusing Vijay of focusing on optics and social media content. DMK called Vijay's inspection a mere PR exercise, further asking Vijay to concentrate on improving law and order in the state and not just make reels.
19: Yeah, it has become a scheduled program of the chief minister to inspect. There is a difference between seriously working and acting like you are working. There are two different things. You have to seriously work rather than do inspection and create reels. That is not more important. There are issues that have been, the law and order issue is a big thing in the state. There is an issue of the VBG Ramji where farmers who are already in distress are also going to be more distressed. There are a lot of things. You are totally not giving importance to the real issue, but rather than, you know, in the name of inspection, you are creating a PR management, which is totally not acceptable.
10: All right, so the DMK, they're accusing the Chief Minister Vijay of just creating reels, asking him to do some real work. With that, we'll slip into a short break. We'll be back with all the top news. Don't go anywhere.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में,
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा,
9: सबका राजा आकर मसाला।
10: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom. Weekdays at 4 PM.
11: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
12: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। अभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
13: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, every day.
14: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
15: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, Sandy Howe.
14: The show that sets the prime time agenda.
15: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
14: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
16: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
17: Just few inches away is POK.
16: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
13: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
18: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है, शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
4: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
13: फ्रॉम द न्यूज रूम टू द स्टूडियो टू द थिक ऑफ पॉलिटिकल एक्शन,
19: NDTV 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues with multiple

0: The anti-paper leak bill was tabled in the Rajya Sabha today. Remember, it was passed yesterday in the Lok Sabha, and it is expectedly, it has led to a fierce government versus opposition showdown. Union Minister Jitendra Singh presented the bill in the upper house, and as he did in the Lok Sabha, he once again raked up all the paper leaks that took place during the UPA era and in other opposition rule states. The opposition, led by Congress President Mallikarjun Kharge, raised the issue of alleged police excesses during the protest on July 20th, questioning the pellet gun use and the force against protesting students. Kharge said the responsibility lies with the Home Minister and that he should either clarify on who ordered the alleged use of force or resign. Remember, this is an issue that the opposition has been raising again and again. Why Amit Shah is absent from Parliament? There was also a showdown on the issue of Manu Smriti with Mallikarjun Kharge accusing the government of following casteism.
1: Some of the infamous paper leaks extensively reported in the media and talked about include the 2009 Railway Recruitment Board, 2011 All India Engineering Entrance Examination, 2012 AIIMS Delhi Entrance Leak, 2013 Maharashtra Higher Secondary Certificate Leak, 2010 B.Ed Entrance Examination, 2014. Yes, I am coming to that.
2: अरे मेरे विद्यार्थी जो गांव-गांव से आए, स्टेट-स्टेट से आए, उन बच्चों को पैलेट गन पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं और हॉस्पिटल में गिरे हैं. किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है. बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते. एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे.
3: राम मंदिर की हम तो उस पर चर्चा चाहते हैं कि आखिरकार जो हजारों करोड़ रुपए आए जब राम मंदिर का भव्य शिलान्यास हुआ, जब वो भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ, तो भगवान राम जी के जिस तरह से
2: सरकार की नीतियां बार बार उस मनुवादी सोच की याद दिलाती है जिसका उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है. और वहां पर मैं संस्कृत तो उतना ठीक ढंग से पढ़ नहीं सकता, लेकिन उसका ट्रांसलेशन मैं आपको पढ़ा के. अच्छा, ओरिजिनल टेक्स्ट के लिए लो बुक लो, मैं उसका ट्रांसलेशन.
4: जो अभी वक्तव्य लीडर ऑफ द ऑपोजिशन माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है, उस वक्तव्य से समाज में एक विद्वेष की भावना पैदा होती है और अशांति का वातावरण पैदा होता है. हम सब लोग जिम्मेवार सदस्य हैं. मेरा निवेदन है कि जो उन्होंने कहा है, जहां तक मेरी पूरी जानकारी है, ये तथ्यों से परे है. और मनुस्मृति का ओरिजिनल टेक्स्ट उसको ऑथेंटिकेट करें, ये ओरिजिनल नहीं है.
5: कांग्रेस पार्टी अब इलेक्टोरली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को नहीं हरा सकती, तो फ्लोर ऑफ द हाउस से इट इज कॉलिंग फॉर वायलेंस. वो वायलेंस की धमकी दे रही है. कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे फ्लोर ऑफ द हाउस में अपनी स्पीच में कहते हैं कि हम होम मिनिस्टर अमित शाह को खींच कर लाएंगे और जनता के सामने फिर बताएंगे. ये आगजनी करना, वायलेंस करना, ये कांग्रेस पार्टी की प्रवृत्ति है. ऐसी सोच अर्बन नक्सली सोच है. इसीलिए देश की जनता हमेशा कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में बैठाना चाहती है, क्योंकि जो वायलेंस पे विश्वास रखता है, जो सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र के खिलाफ लड़ने की बात करता है, जो ओपनली होम मिनिस्टर मिनिस्टर के खिलाफ वायलेंस की बात करता है वो लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। ऐसी सोच टुकड़े टुकड़े वाली और अर्बन नक्सली सोच है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस कहा था।
0: All right, so the BJP really picking up that line of Mallikarjun Kharge, where he spoke about dragging the Home Minister Amit Shah, saying that where is he hiding? Why hasn't he come to Parliament? The Congress arguing that this was just, you know, a manner of speaking, of not literally, but the BJP raising that issue, saying the Congress is promoting violence against the Home Minister. Another point that led to, you know, some disruption and ruckus in the Rajya Sabha was when Mallikarjun Kharge attempted called the BJP casteist and attempted to quote the Manu Smriti, but the government taking exception to this, saying you need the exact quote and not allowing for it. Let's go across to Tej Sri for all these developments. And Tej Sri, even as the discussion is continuing in the Rajya Sabha, take us through these two points that became very controversial, Mallikarjun Kharge raising the Manu Smriti and also then talking about dragging the Home Minister to the Parliament.
6: Willis, absolutely, Gagi. Two major issues were raised in this, in his entire speech while Mallikarjun Kharge was speaking. A, he spoke actually on Manu Smriti, where, there was an interruption from the side of

0: sir.
1: Yesterday, what you witnessed was very unfortunate. NOP, they didn't allow to complete the speech. This become practice of the house. And Amit Shah is completely running away from the house. We need an answer. Who is ordered that to charge and firing in Delhi? Who is ordered? Amit Shah should come to Parliament and to explain. This is our clear demand.
2: Amit Shah was not aware of the firing or the brutal assault that has taken place on the students. Then he is incapable to head the Delhi police. If he was aware and deeply involved with it, he is also a culprit. So either way, he has to come to the parliament and respond to the queries of the opposition.
3: Now, former police officials have hit back at Rahul Gandhi over his remarks questioning the role of Union Home Minister Amit Shah in the police action against protesting students. Rejecting Rahul's allegations, a former Director General of Police, S.P. Vaid, and other retired officers argued that operational decisions during protests are taken by officers on the ground based on the situation and not by the Home Minister. They've maintained that the use of force, including a lathi charge, is decided by field commanders in accordance with established crowd control protocols, while written authorization is required in the case of paramilitary deployment. The response comes after Rahul Gandhi accused the government of failing students and demanded accountability over the alleged police excesses.
4: Unreasonable demand, LOP is demanding. Home Minister lays down overall policy for the forces and the union territories. He doesn't decide what force to be used on the spot. It is decided by the magistrate on the spot or senior police officer on the spot. How much force to be used, what is the quantum and what kind of force to be used. What we saw in Delhi Jantar Mantar violence, even as per Delhi police data, about 900 of these people had a criminal record. So that speaks of the number of people who had past criminal record. So what kind of people were present there? They were not only students.
5: करनी चाहिए, कानूनी पहलू समझ लेना चाहिए. कानूनी पहलू जो है धारा 148, 149, 150, धारा 43 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में समाहित हैं. कृपया उनको एक बार देखने का कष्ट करें और सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी. ये कल्पना शक्ति की उड़ान से और कोरे आरोपों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है.
6: भी जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति को ऐसे प्रकरणों में बोलने से पहले मेरा मानना है कि पूरी प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए. दिल्ली में पुलिस कमिश्नरेट है और पुलिस कमिश्नरेट में जो मैजिस्टीरियल पावर्स हैं वो पुलिस के पास रहती हैं. अगर कोई ऑर्डर करेगा लाठी चार्ज का, टीयर गैस शेल्स का, चिली बॉम्ब्स का, कोई भी ऑर्डर करता है, पैलेट गन्स का, पंप एक्शन गन का, या अल्टीमेट आगे चलकर फायरिंग का, तो ये ऑर्डर वहीं मौके पे लिया जाता है. जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करते हैं वो इन राइटिंग ऑर्डर मांगते हैं अधिकारी से. उनके पास प्रोफॉर्मा रहता है, वो तुरंत पहले उस पर साइन करा लेते हैं.
7: गांधी जी झूठ बोल रहे हैं. मैंने 37.5 बरस वर्दी पहनी है. भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है मुझको अच्छी तरह से मालूम है. लीथल वेपन, नॉन लीथल वेपन में होता है रबर बुलेट, उसके बाद ये जो कहते हैं पैलेट गन कुछ नहीं होती, 12 बोर बंदूक होती है. राहुल गांधी जी को याद दिला दूं, 7 नवंबर 1966 को इसी पार्लियामेंट के सामने संत आए थे, साधु आए थे, गायें लेकर आए थे. उनका ये था कि साहब गोबध नहीं होना चाहिए, ये करिए, इंदिरा जी को कहा था. और इंदिरा जी गांधी ने सीधे राइफलों से गोली चलवाई थी. पुलिस का रिकॉर्ड के अनुसार 8 साधु संत मारे गए थे, गायें मारी गई थी.
3: Meanwhile, amid this controversy, the CRPF chief Gyanendra Pratap Singh has asked its personnel to perform their duties fearlessly, saying that he would take responsibility and accountability for their decisions. Now, his assurance comes at a time that the Delhi protest action is facing internal scrutiny.
0: आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे हमारी ऑपरेशनल बटालियंस हों, चाहे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की यूनिट्स हों, आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बलहित में जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है। आप अपना काम निर्भय होकर करते रहें।
3: Meanwhile, politics has intensified over the alleged pharmaceutical examination paper leak in Punjab, with the BJP launching a massive protest today outside the Aam Aadmi Party headquarters in Delhi. BJP workers breached police barricades during the demonstration and demanded the immediate resignation of the Punjab Education Minister, Harjot Singh Bains, holding the AAP government accountable over the alleged leak. BJP also warned that its agitation would expand from Delhi to Punjab if action is not taken. The protests come even as Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has earlier rejected allegations of paper leaks under his government. Mann maintained that there has not been a single paper leak in the state during the last 4.5 years.
8: आम आदमी पार्टी दोगुली राजनीति करती है। देखिए, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के मापदंड दोहरे नहीं हो सकते। मैं पूछना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी की सरकार से, पंजाब की सरकार से और केजरीवाल जी से, कि पंजाब में भी उनके शासनकाल में फार्मेसी रिक्रूटमेंट का पूरा एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हुआ। वहां पर भी छात्रों का भाग्य जो है दाव पे लगा। अभी तक उन्होंने अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा या फिर उनको बर्खास्त क्यों नहीं करा? और देखिए, आम आदमी की पार्टी की सरकार एक टेक्निकलिटी के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है कि तो मास चीटिंग स्कैंडल। फैक्ट ऑफ द मैटर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज क्लियरली फासन ओनली एंड ओनली ऑन द आम आदमी पार्टी पंजाब गवर्नमेंट।
9: भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केजरीवाल को ये चेताने आए हैं, याद दिलाने आए हैं कि इन्होंने जंतर मंतर पर मनीष सिसोदिया ने कहा था कि अगर पंजाब में पेपर लीक होगा तो हम पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे। भगवान ने उनकी जल्दी सुनी है। उससे पहले भी जो फार्मास्यूटिकल का पंजाब में परीक्षा का पेपर लीक हुआ, उससे पहले 12th पंजाब में 12वीं क्लास का अंग्रेजी का पेपर भी लीक हुआ था।
10: हिपोक्रेसी ऑफ अरविंद केजरीवाल एंड भगवंत मान एंड राहुल गांधी स्टैंड्स एक्सपोज्ड। Those who were asking for resignation of the Education Minister of India, where there have been more than 10 paper leaks in Punjab in recent past, students are on the street in Punjab and are demanding resignation of the Education Minister of Punjab. Neither has Mr. Kejriwal done that, neither has Bhagwant Mann done that. In fact, the 2023, it was Mr. Kejriwal and Bhagwant Mann who in a public roadshow acknowledged that paper leak is rampant in Punjab. Zero accountability in Punjab and asking for accountability in center speaks about the hypocrisy of Arvind Kejriwal.
11: BJP has upped its ante, and that is why we are seeing that today the Delhi BJP unit is holding a massive protest and marching towards the Aam Aadmi Party office. We are showing you the very dramatic visuals that we are getting you from ground zero. You'll see all of these, in fact, are karyakartas of the Delhi BJP who are currently on the barricades. And this is, in fact, the second layer of barricades because they have already broken the first layer of barricades. And let me show you the crowd here that you'll see here, the kind of, karyakartas that have gathered here on the ground zero here, and the placards that they have brought. Bhagwant Mann, Shan Karo, Paper Leak, Ban Karo.
12: आज की डिमांड है कि जो पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर है उनका इस्तीफा होना चाहिए।
11: तो जब तक इस्तीफा नहीं देते ऐसे ही धरना?
13: जब तक केजरीवाल के जो शिक्षा मंत्री पंजाब के इस्तीफा नहीं देंगे ऐसे प्रदर्शन होते रहेंगे। दो दो कानून हमारे देश में नहीं चलते। दिल्ली में इनको इस्तीफा चाहिए, पंजाब में ये कहते हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ, इतना दोगलापन ये कहां से लाते हैं?
11: प्रोटेस्टर्स हियर कॉलिंग इट द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, बिकॉज़ व्हाइल ही एक्सटेंड सपोर्ट टू द प्रोटेस्ट हियर एट जंतर मंतर, ही इज नॉट एबल टू डिसमिस हिज ओन एजुकेशन मिनिस्टर इन पंजाब ओवर द अलेजेड पेपर लीक्स ऑफ 11 एग्जाम्स, एंड वी आर शोइंग यू द विजुअल्स करंटली, यू सी वेरी ड्रामेटिक विजुअल्स ऑन द ग्राउंड, दीस आर द प्रोटेस्टर्स हु आर इन फैक्ट ट्राइंग टू मार्च towards the Aam Aadmi Party office, but they have been stopped at barricades number 2 because of the huge deployment of the security forces. The entire area, the security has been beat up, and you'll hear constant sloganeering, not just against the Punjab Chief Minister, but also against the Aam Aadmi Party Supremo, Arvind Kejriwal.
3: All right, so the BJP there are protesting in the national capital. With that, we'll slip into a short break. More news coming up on the other side. Stay with us.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉलमार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: सबका राजा आकर मसाला।
11: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
12: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
13: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
14: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
15: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
16: Hello and welcome to watching Prime Time with me, Aisha Sehgal.
15: The show that sets the prime time agenda.
16: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
15: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
17: POK के firing range में खड़े हैं।
18: Just few inches away is POK.
17: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
14: चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
19: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
14: From the newsroom to the studio to the thick of political action.
20: You're watching NDTV 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
14: When stories have impact.
21: Padmajal Joshi, managing editor and prime time anchor.
14: Then news has influence. The buck stops here with Padmajal Joshi.
20: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding, and I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.
22: Launch control, 0 to 100.
23: This isn't just about cars and bikes, this is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense.
24: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
23: Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
25: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
26: Really?
25: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram and trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
11: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
12: So many attacks.
11: The chaos and cries of disaster zones. The fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
12: It's incredible.
11: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
12: Welcome to Left, Right and Center.
11: Hard facts.
12: War-struck country.
11: Hard questions.
12: In the Ukraine.
11: 30 years of trust.
13: In the Kargil area.
12: North Ukraine.
13: In France. In Italy.
12: At Srinagar.
13: I am Iskandar.
12: Vishnu Shom for NDTV.
11: Vishnu Shom. Only on NDTV.
14: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
15: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
16: Hello and welcome to watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, on Saturday.
15: The show that sets the prime time agenda.
16: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
15: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
17: POK के firing range में खड़े हैं।
18: Just few inches away is POK.
17: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
14: चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
19: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस तेल में।

0: Our top focus on the show today, the anti-paper legal in Rajya Sabha today, and expectedly it led to a fierce government versus opposition showdown. Union Minister Dr. Jitendra Singh presented the bill in the upper house after, of course, it was cleared in the Lok Sabha through a voice vote yesterday. This further raked up paper leaks. Dr. Jitendra Singh also spoke about various paper leaks during the UPA era and also in the opposition-ruled states. The opposition, led by Mallikarjun Kharge, raised the issue of alleged police excesses during the protest on July 20th. Kharge said that the responsibility lies with the Home Minister Amit Shah and that he should either clarify on who ordered the alleged use of force or resign. There was also a showdown on the issue of Manusmriti, with Mallikarjun Kharge accusing the government of following casteism. Take a listen to all the reactions, the showdown in the Rajya Sabha as debate over the anti-paper leak still continues.
1: Infamous paper leaks extensively reported in the media and talked about include the 2009 Railway Recruitment Board, 2011 All India Engineering Entrance Examination, 2012 AIMS Delhi entrance leak, 2013 Maharashtra Higher Secondary Certificate leak, 2010 B.Ed entrance examination, 2014. Yes, I am coming to that. Yes.
2: मुझे शर्म आया. अरे मेरे विद्यार्थी जो गांव-गांव से आए, स्टेट से आए, उन बच्चों को पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं और हॉस्पिटल में गिरे हैं. किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है. आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते. एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे. सरकार की नीतियां बार बार उस मनुवादी सोच की याद दिलाती है जिसका उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है. और वहां पर मैं संस्कृत तो उतना ठीक ढंग से पढ़ नहीं सकता, लेकिन उसका ट्रांसलेशन मैं आपको पढ़ा के. अच्छा, ओरिजिनल टेस्ट के लिए लो बुक लो, मैं उसका ट्रांसलेशन कर.
3: जो अभी वक्तव्य लीडर ऑफ द ऑपोजिशन माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है, उस वक्तव्य से समाज में एक विद्वेष की भावना पैदा होती है और अशांति का वातावरण पैदा होता है. हम सब लोग जिम्मेवार सदस्य हैं.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: We are over, जिमी।
3: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
8: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
9: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
10: So many attacks.
9: The chaos and cries of disaster zones. The fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
10: It's incredible.

0: neat protest. Here, there's a school bus, and the woman standing in front of it is in a police uniform. The lady in this picture is ACP Traffic Monica Shukla, and the video is from the farmers' protest in Bhopal on Wednesday. When the protesters were trying to enter the city, the IPS officer was right there with her team. The image of her holding off hundreds of men standing alone in front of a school bus has now gone viral, and she spoke to us a short while ago. Take a look.
1: So there are certain images that go completely viral. We've had in the recent past several images of people who are standing up, even as, you know, there is a crowd around them in the face of intimidation. One such picture has emerged again from Bhopal, where a police officer, a lady police officer, can be seen standing in front of a school bus, even as there are hundreds of people around us, around her. Joining us now is the lady in that video, ACP Traffic, Monica Shukla, who was there in Bhopal. Monica ji, bahut bahut dhanyawad humse baat karne ke liye. Ye bataiye ki wo jo तस्वीर है जिसमें आप एक स्कूल बस के सामने ऐसे हाथ फैलाकर खड़ी हुई हैं, आखिर हुआ क्या था उस वक्त? वो स्कूल बस कैसे फंस गई आंदोलनकारियों के बीच में?
2: नहीं नहीं, वो स्कूल बस फंसी नहीं थी। हमने लगभग 10-12 स्कूल बसें बैरिकेटिंग के रूप में यूज की थी। उन बसों के एक तरफ जो पुलिस के बैरिकेट होते हैं, लगभग 6 to 7 लेयर बैरिकेट थे। उसके बाद तीन लेयर बसेस हमने आंदोलनकारियों को मेन शहर में जाने से रोकने के लिए लगाई थी। तो जो आंदोलनकारी थे उन्होंने वो पूरे बैरिकेड्स तोड़ दिए थे या खींच दिए थे। उसके बाद वो बस पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गए थे, और वो आंदोलनकारी उस बस में बैठकर उसको ले जाना चाह रहे थे जो पुलिस ने एज बैरिकेटिंग लगाई थी। मेरा उद्देश्य उस समय एट ए ग्लांस यही था कि हमको आंदोलनकारियों को वो बस नहीं ले जाने देना है। तो जो इंस्टेंट मेरे दिमाग में आया, मैं उसके सामने खड़ी हो गई कि नहीं भाई, आप इस गाड़ी को नहीं ले जा सकते।
1: आपको डर नहीं लग रहा था? क्योंकि मैं उन तस्वीरों को देख रही हूँ, एक आप अकेली महिला हैं और उस भीड़ में सिर्फ और सिर्फ वहां पर आंदोलनकारी दिख रहे हैं, कोई बस के ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई बस को धक्का मार रहा है, और आप सिर्फ वहां पर ऐसे हाथ सामने करके खड़ी हुई हैं बस के सामने, कहीं बस आपके ऊपर चढ़ जाती तो?
2: मेरी बहुत लंबी नौकरी है तो इसमें ऐसे कोई डर की चीज नहीं है। हमारा पूरा फोर्स लगा हुआ था और वो बैरिकेड के राइट हैंड साइड ज्यादा फोर्स था। ये लोग बैरिकेड से पीछे की तरफ कूदे, जहां मेरे सीपी सर थे, मैं थी, 2-3 TI थे, हमारे पास फोर्स कम था, इसलिए हमको ये करना पड़ा। और मेरी टीम पूरी मेहनत से काम कर रही थी।
1: अब जब आप लोगों का रिएक्शन देख रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में पुलिस को लेकर के बड़े सारे पूरे देश भर में भी जो आंदोलन अलग अलग चल रहे हैं उसको लेकर के पुलिस के बारे में कई बातें हो रही हैं, बल प्रयोग के बारे में बात हो रहा है, तो कैसे आप एक बैलेंस मेंटेन करती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन हो पाए और किसी भी कोई भी अगर मासूम वहां पर फंसता है तो उसके ऊपर अतिरिक्त बल प्रयोग?
2: देखिए, हमको बड़ी संयम और सहनशीलता से काम करना पड़ता है, क्योंकि जो आंदोलनकारी हैं, यद्यपि वो भी कोई क्रिमिनल नहीं है, वो अपनी मांगों को लेकर वहां इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ये सही बात है कि वो एकदम से शहर में अगर एंटर हो जाएं, जनता को नुकसान भी हो सकता है, कि जरूरी नहीं कि आंदोलनकारी में कौन कैसा व्यक्ति हो। दूसरी बात, जो किसान आंदोलन के लोग आए थे उनका कोई एक लीडर नहीं था और वो यूथ ज्यादा थे, तो ये दोनों चीजें थोड़ी गंभीर हो सकती हैं। और हमने काफी डायवर्जन लगाए थे। मैं ट्रैफिक और क्राइम देखती हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जनता को भी दिक्कत ना हो उनके इस प्रकार के डायवर्जन से, या एकदम से लीडरलेस जो लोग होते हैं वो कहीं शहर में एंटर कर गए तो हमारी शहर की जनता को तकलीफ ना हो, कानून व्यवस्था खराब ना हो, यही सब दिमाग में रहता है। और हम सभी लोग, हमारी पूरी टीम 2 दिन से वहां लगी हुई थी, तो जो मेरे सामने जितना मेरे को उस समय निर्णय लेना लगा वो मैंने लिया कि किसी भी प्रकार से आंदोलनकारी बस को ना ले जाएं, और मेरे को इसमें कोई ऐसा डर नहीं लगा।
1: तो एक एज अ पेरेंट आखिरी में क्या उन पेरेंट्स को आप कहेंगे? पेरेंट, पुलिस, बहुत सारे रोल आपको अदा करने पड़ते हैं, एक महिला है, एक माँ है, खुद की बेटी पढ़ रही है, क्या कहेंगे जो लोग आपको अभी इस वक्त देख रहे
2: हैं? देखिए, किसी का बच्चा अगर आंदोलन में जाता है तो उसके पेरेंट्स का थोड़ा सा चिंता होना लाजमी है, बट मेरा कहना है कि हम सड़कों पर बच्चे उतरें, इससे बेहतर है कि वो लोकतांत्रिक तरीके में जो जो चीजें हो सकती हैं पहले उनको देखें। हर समस्या का समाधान सड़कों पर जाकर नहीं होता है। ऐसा मेरा सोचना है।
0: On that note, we slip into a very short break. We'll come right back. Coming up next is Nationwide at 6 with my colleague Ankit Tyagi. Fiery debate in Rajya Sabha over exam reforms. Government lists UPA era leaks, questions why Congress never set up national testing body. Opposition hits back.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
2: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break.

0: You know, when Mr. Narasimha Rao became the Prime Minister, he had to become an MP within 6 months. And he was getting ready for the election. And that was the time when T.N. Session and he had an argument. T.N. Session wanted money for issue of a voter ID card.
1: Mm.
0: And Narasimha Rao refused. He said, we don't have the money. You know, Session's reply, okay, you don't have the money. I'm not going to conduct the election. Which means, and if the election had not been conducted, Narasimha Rao would have had to resign. The government would have fallen. The consequences would have been disastrous. Immediately, Narasimha Rao fell in line and he gave him the money and the elections were held.
1: That's a very important anecdote for a lot of people, those who will still go back and remember T.N. Session as one of the pioneer election commissioner who changed or at least had the election commission office, completely at a place where people still look at that period with reverence. Thank you so much, Dr. Qureshi, for your clarity as far as this issue is concerned. Let me very quickly go across now to the other important story that we are tracking at this moment. And we try on Nationwide at 6 to try and get you the stories that have a real impact on people's life from across the country. And what could be more shocking than our next story? What you are seeing there is ant infestation. Then you will ask me, why am I putting an ant infestation story at 6 o'clock? Because this tells you the state of our healthcare system. This example, ladies and gentlemen, comes from the operation theater at a hospital in Chhattisgarh. The operation theater in this hospital is out of business for the last 1 week, over a week, because of serious ant infestation. It tells you the priorities of the state as far as the health services for our people is concerned. This is a serious case of negligence that has come to light from the Durg District Hospital, where an ant infestation in an operation theater of the mother and child unit has disrupted surgical services for the past 8 to 10 days. As a result, several scheduled surgeries have been postponed, causing inconvenience to the patient. The presence of ants inside the operation theater raised serious concerns over the risk of infestation, forcing hospital authorities to suspend operations in the facility. On an average, nearly 5 surgeries are being affected daily because the authorities were so negligent that they forgot to, in fact, clear the operation theater of this infestation of the ants. Officials have pointed to lapses in pest control measures as contributing factor. Now, there are, after this news has come out and patients are speaking about their misery, suddenly, the government is waking up.
2: या पहली बरसात जब हुई तो बरसात के बाद में चींटे अंदर आ रहे थे, जो पंख वाले चींटे होते हैं वो अंदर आ रहे थे, उसकी वजह से ताकि किसी पेशेंट को दिक्कत मत हो या ऑपरेशन में दिक्कत मत हो करके उसको ओटी को बंद कर दिया गया था और उसका रिपेयर कार्य स्टार्ट हुआ था। जो जहाँ जहाँ से चींटे आ रहे थे वो जगह पूरी पैक कर दी गई है और अभी उसको फ्यूमिगेट करके रखा हुआ है, 2 दिन में ओपन कर देंगे और किसी भी प्रकार के कोई भी पेशेंट को यहाँ से रिफ़र नहीं किया गया है। और हमारे पास 8 OT हैं तो 8 OT में 2 को बंद किए जहाँ पर चींटे आ रहे थे और बाकी 6 रनिंग कंडीशन में थे और हर एक ऑपरेशन को सफलतापूर्वक कराया गया है।
1: Let me go across at this moment to Zulfi, our colleague who is joining us from Raipur for more on this. Zulfi, this tells you कि सरकार की जो प्राथमिकता है वो क्या है, ये इससे पता चलता है कि एक ऑपरेशन थिएटर में इस तरीके की इन्फेस्टेशन होती है और अब 10 दिनों तक आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इसको।
3: बिल्कुल, सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की जा रही हैं और खासकर अगर देखा जाए तो राजधानी रायपुर से लगा हुआ दुर्ग जिले हैं तो जिले स्तर के अस्पतालों में उम्मीद की जाती है कि बेहतर फैसिलिटीज़ उपलब्ध होंगी। लेकिन अगर देखें कि बरसात का मौसम होता है और बरसात के मौसम में अक्सर जो है जो चींटे हैं वो निकलते हैं, लेकिन उसकी बिल्डिंग जो है जर्जर है और जिसकी वजह से लगातार चींटे जो हैं ऑपरेशन थिएटर में निकल रहे हैं, जिसकी वजह से 7 से 8 दिनों तक ऑपरेशन पूरी तरीके से टालने पड़े और जो पहले से प्लान किए हो गए थे प्री प्लान ऑपरेशन से उनको पोस्टपोन भी किया गया कुछ को, और कुछ को दूसरे जो OT हैं वहाँ पर ऑपरेशन कराए गए मरीजों को, जिसकी वजह से मरीजों को तो दिक्कत आई। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर जो है सवाल खड़े हुए होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सरकार तमाम दावे करती है। आज भी स्वास्थ्य मंत्री

0: श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बस्तर हो, सरगुजा हो, इन तमाम जगहों पर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ उन राज्यों में है जहां पर एक साथ 5 मेडिकल कॉलेज की परमिशन दी जाती है और मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। ऐसे में जिला अस्पताल में अगर इस तरीके की घटना आती है कि वहाँ पर पेस्ट कंट्रोल ना कराया गया हो, दीवारें वहाँ की उनमें सीत आ चुकी हो और जिसकी वजह से बड़ी तादाद में चीटें निकल कर सामने आ जाएँ। जी
1: बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार हमारे साथ, जुल्फी हमारे साथ जुड़ने के लिए एट दिस मोमेंट। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी एंड व्हाई आई वांटेड टू पुट दिस आउट इज बिकॉज इट टेल्स यू हाउ सीरियस आर गवर्नमेंट्स आर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट फैसिलिटीज फॉर हेल्थ व्हिच मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्री रिलाइज अपॉन। एंड इफ यू थॉट दैट द एपैथी स्टॉप्स एट वन हॉस्पिटल इन छत्तीसगढ़, वेल लेट मी टेक यू to a different story and to, from Chhattisgarh to a absolutely you know western part of our country to Pune in Maharashtra. Bridges are important. People celebrate when bridges are made and are made functional for the people. Imagine a bridge being constructed to ease traffic, ready, brand new, absolutely ready for its functioning, but it has become a point of contention because they can't decide who will go and inaugurate the bridge. This is the kind of political credit mongering that you see, ladies and gentlemen, because of which people suffer. It's our own money that we pay as taxes. And tomorrow is the last day for paying your income tax. We pay taxes for bridges, for roads, and politicians fight, squabble that who will go and cut the ribbon. And because of that, people suffer. In Pune, a fully completed bridge connecting the Karari and Keshav Nagar area has remained shut for last, not one, not two, but 7 months. This bridge is ready, waiting for inauguration. People can't use it for last 7 months because officially the municipal corporation has not been able to find somebody to in fact cut the ribbon. Now, when we approached and asked them what is happening, they said that the approach road is still under construction, but local residents have different explanations. They claim the delay is because of political leaders cannot decide who should get the credit for inaugurating the project. The result, commuters continue to sit in traffic while some two-wheeler riders are even forced to squeeze past the barricades and use the footpaths to cross the bridge, raising serious safety concerns. I want to tell you, this bridge has cost 23.20 crore rupees and it is only waiting for who gets the opportunity to claim the credit. And in this credit war, the people, as always, are suffering.
2: मुंडवा के केशव नगर से खराड़ी में जाने के लिए मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मुड़ा मुटा नदी पर यह पुल खड़ा किया गया है। पिछले तीन से चार सालों से यहाँ पे ये पुल जो है वो बन रहा था, लेकिन स्थानिक नागरिक बता रहे हैं कि यहाँ पे 7 महीने हो गए ये पुल बनकर तैयार है, लेकिन उद्घाटन नहीं हो पा रहा है। उसके वजह से ये पुल जो है वो खुला नहीं किया गया है। खराड़ी केशव नगर के इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या हर रोज़ पाई जाती है और इस समस्या को कम करने के लिए पालिका प्रशासन के तरफ से यह पुल बनाया गया है और इसमें लगभग पालिका प्रशासन के 23 करोड़ रुपए लग गए हैं, लेकिन पिछले 7 महीने से इस पुल का काम पूरा होने के बावजूद भी पुल खुला किया गया नहीं है। उसके वजह से स्थानिक नागरिक परेशान दिख रहे हैं।
3: बच्चों से लेकर सबके सारे मीटिंग्स कल सबके कैंसिल हो गए, तो इतना सब तकलीफ है, तो ये ओपन कब होगा हम सब इंतज़ार कर रहे हैं और हमको जानना है कौन ये अथॉरिटी है, कौन करने वाला है और इसका जवाब और ये आंसर क्यों नहीं मिल रहा है हम लोगों को। वी आर रियली वेटिंग फॉर दिस आंसर एंड वेटिंग फॉर द डे व्हेन दिस विल ओपन।
4: हार्डली अगर मैं यहाँ से स्कूल जाता हूँ ना तो 2 किलोमीटर है वो, और अगर ये पुल बंद है तो पूरे यहाँ से मुझे 7-8 किलोमीटर का राउट लेके जाना पड़ता है, तो उस वजह से बहुत तकलीफ होती है। अभी बारिश नहीं है, अभी मुझे उनको वहाँ पे ड्रॉप रिक्शे से वो आए स्कूल से वहाँ तक, फिर वहाँ से मैं यहाँ पे वॉकिंग लेके आके फिर यहाँ से हम लोग वॉकिंग जा रहे हैं।
5: मैं अभी स्कूल से चल के आया हूँ इधर, क्योंकि ऑटो भी इधर से नहीं जा रहे अभी तक। सारे बोल रहे कि ये पुल खुला ही नहीं है और मुंडवा ब्रिज से उनको नहीं जाना क्योंकि ट्रैफिक पड़ता है उधर से। मांझरी पे आप देखो सुबह सुबह पूरी बस की लाइन लगी हुई है, क्या ही करें हम उसमें.
1: I mean, you saw those visuals. There were some goats on that, you know, bridge. And I think at this moment, it is only fit for those goats to, in fact, go and chill there. Because till the time the minister decides that they get to cut the ribbon, to claim credit, and then say, look at the vikas that we have brought in for last 7 months and 3 years before that of construction, the people only wait despite paying their taxes on time. All right, with that, we are slipping into a very short break. Coming back with much more on the other side on Nationwide. Stay tuned.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
11: We are over, Jimmy.
12: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
13: POK के firing range में खड़े हैं।
14: Just few inches away is POK.
13: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
15: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
16: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
17: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, everyday.
18: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
19: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
20: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, on Saturday.
19: The show that sets the prime time agenda.
20: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
19: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
21: Launch control, 0 to 100.
22: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
23: This car makes no sense, yet it makes every sense.
24: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
25: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not."
26: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
27: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
28: बैठ सकता आपके साथ? खाइए ना प्लीज।
27: आप कहाँ से हैं?
28: हरियाणा। कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
27: डेढ़ महीने पे।
28: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
27: 3 साल।
28: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
27: बहुत।
28: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
27: सिनेमा घर तक अलाउड।
28: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है। इतना बड़ा सैक्रिफाइस करते हो, बहुत बड़ी बात है।

0: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
1: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
2: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में,
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा,
8: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
9: We are over, Jimmy.
10: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
11: POK के firing range में खड़े हैं।
12: Just few inches away is POK.
11: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
13: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
14: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े, vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
15: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, everyday.
16: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
17: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
18: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, and Sandy Howard.
17: The show that sets the prime time agenda.
18: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
17: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
19: Launch control, 0 to 100.
20: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car

0: On the other side is Ranbir Kapoor as Lord Ram, first seen as the calm and compassionate prince before transforming into a formidable warrior.
1: विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए, तो भी मुझे स्वीकार।
0: Sai Pallavi brings grace and vulnerability to Sita.
2: उस वचन का क्या जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था?
0: While Ravi Dubey's Lakshman stands by Ram and Sita through their journey into exile. The cast also features Lara Dutta as KK.
1: निर्णय मैं ले चुका हूँ। एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है।
2: तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास।
0: And Rakul Preet Singh as Shubhnakha.
3: Shubhnakha.
2: वो मोहित हो गई है आप पे।
0: And in a special casting choice, Arun Govil, the iconic television Ram, plays King Dashrath.
4: Ram!
0: Made on a reported budget of 4,000 crore rupees, Ramayan also brings together Oscar winners A.R. Rahman and Hans Zimmer for its music.
1: रावण तीनों लोकों का स्वामी है तो तीनों लोकों के सामने उसका वध करूंगा। मैं अपनी सीता को वापस लूंगा।
0: The film releases in two parts, with the first chapter arriving worldwide in October 2026, ahead of Diwali.
1: ये राम के युग का आरंभ है।
0: Your report, NDTV.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आकर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: We are over, Jimmy.
6: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PP अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
7: POK के firing range में खड़े हैं।
8: Just few inches away is POK.
7: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
9: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
10: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
11: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
12: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज़ रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी राउत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द NDTV न्यूज़ रूम, वीकडेज एट 4 PM।
13: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
14: Hello and welcome to watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
4: We are over, Jimmy.
5: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
6: POK के firing range में खड़े हैं।
7: Just few inches away is POK.
6: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
8: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
9: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। अभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
10: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, everyday.
11: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
12: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
13: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, of Saturday.
12: The show that sets the prime time agenda.
13: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
12: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
14: Launch control, 0 to 100.
15: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
16: This car makes no sense, yet it makes every sense.
17: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
15: Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
18: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht. हर रोज।
19: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
20: The mustard

0: Fellow panelists and all the brilliant, I dare say, Gen Z, although some of them look as young as me, but I look like a dinosaur right now. But can I just say that I'm a vegetarian dinosaur, I think Stegosaurus. Look, three or four points. First of all, to the Gen Z and mostly the speakers, my fellow panelists, I think one of them is Gen Z, I suppose. Fortunately or unfortunately, Padmaja, I didn't read those books in school that these Gen Zs have been reading. And those books are Textbook 101 of Hypocrisy and Double Standards. Here is a photo, let me show you. I hope the camera pans on it. This is a wonderful lady called Ketaki. She had a medical condition. And when Anish says, well, everything should be allowed, free speech, she was thrown in jail for 40 days despite her medical condition. And her crime was to forward a Facebook post that people from Anish's party thought was mocking Shri Sharad Pawar. This is the level of hypocrisy that goes on in our Gen Z.
1: Can we have
0: Now,
1: Dr.
0: come
1: Ranganathan on
0: to.
1: screen, please? Yes.
0: Yeah. Now let me come to my friend and elder brother Tehsin, who talks about right to protest. I take him back to, I think, 2008, 2009, when in one stroke, 8,500 protesters were charged with sedition by his government, Congress government, and what did Chidambaram call them? Anti-national. Years before BJP called them. So let's not have double standards. Let's stick to the issue. What is the issue? Should protest have been allowed? Yes, of course. Legal, with permission, protest should have been allowed. I am a free speech absolutist. I don't mind anybody using or giving abuses because, as you rightly said and countered the first Gen Z who spoke about it is disappointing to have such views because where do you draw that line and who draws that line? Nobody is qualified enough to draw that line. We are still suffering because Nehru drew that line and he changed the first our constitution with the First Amendment.
1: Okay, one young man
0: Where the
1: disagrees with
0: right
1: you
0: to
1: here.
0: free speech was
1: Just two
0: conditional for just
1: points.
0: 10 seconds.
1: Okay, 10
0: The
1: seconds. More than
0: reason
1: a
0: why
1: young man here. Yes.
2: Just two points, sir. Sir talked about hypocrisy and double standard. BJP से ज्यादा hypocrisy किसी के पास नहीं है. 70,000 करोड़ का घोटाला करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए थे. सेकेंड सर, यू टॉक्ड अबाउट इस देश में पत्रकारों को मिड डे मील पर दिखाने के लिए उनको जेल भेज दिया जाता है. यू आर टॉकिंग अबाउट हिपोक्रेसी. यू टेल मी, ये बीजेपी पहले एग्जाम लीक के बारे में बात करती थी मैम या नहीं करती थी? अगर आप गवर्नमेंट में नहीं है, आप उसके बारे में सर एक सेकंड सुन लीजिए प्लीज. सर एक सेकंड सुन लीजिए. नाउ द सेकंड पॉइंट, यू टॉक्ड अबाउट लाइन. सर पता है एसी हॉल में बैठ के इस एनडीटीवी के स्टूडियो में ना मैं समझ सकता हूं स्टूडेंट का दर्द और ना आप समझ सकते हैं. आप एक बार जाइए, जाके गांव में देखिए एक बाप अपने बच्चे को कैसे पढ़ा रहा है. मैं मुखर्जी नगर में रहता हूं, आप जाइए वहां देखिए बच्चे 5,000-5,000 के कमरों में कैसे रह रहे हैं. और आप हिपोक्रेसी की बात करते हो और डबल स्टैंडर्ड की. एक भाई अगर सुसाइड कर लेता है, उसके भाई को आप कैसे लाइन के बारे में सिखाएंगे? सर नहीं सिखा सकते हैं आप लाइन के बारे में. आप अगर स्टूडेंट के साथ वैसा बिहेव करेंगे, नेल लगा के आप उनको मारेंगे, ठीक है? आप कहते हैं कि लाइन की बात करो, वो लाइन आप भी नहीं क्रॉस कर
1: पाएंगे. देयर इज नो लाइन टू क्रॉस डॉक्टर रंगनाथन व्हेन देयर इज सो मच बबलिंग अंडर द सरफेस. डॉक्टर रंगनाथन,
0: पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये जेन जी इतनी अच्छी पॉलिटिकल स्पीच कैसे दे रहा है. क्या टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ है क्या? नंबर वन,
1: दिस इज द रियल जेन जी. दे आर दे नो देयर पॉलिटिकल व्यूज.
2: यू हैव दैट यू डोंट वांट द यूथ ऑफ दिस नेशन टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स. दैट इज द प्रॉब्लम विद यू सर.
0: सुनो सुनो, वन सेकंड, लिसन लिसन,
1: लेट हिम आंसर. यस,
0: I showed you respect by hearing you. Please show some respect, not of my age, but hearing my point of view.
2: Sure,
0: Number
2: sure.
0: one, सबसे ज्यादा हिपोक्रेट तो मैं बीजेपी को मानता हूं. आपने ये किस एजेंडा के तहत ये मान लिया कि मैं बीजेपी को हिपोक्रेट नहीं मानता? पहली गलती वो. दूसरी गलती, जब मैं ड्रॉ द लाइन कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं लाइन ड्रॉ होनी ही नहीं चाहिए. इसलिए कह रहा हूं मेरे प्यारे जेंजी, थोड़ा ध्यान से पढ़ लो और सुन लो. मैं कह रहा हूं कौन लाइन ड्रॉ करेगा? कोई नहीं कर सकता लाइन ड्रॉ, क्योंकि जो मेरी तरफ से मैं अब्यूज समझ रहा हूं वो स्टेट सैंक्शन कर रहा है. एक स्क्रिप्चर है एक रिलीजन का जो कि मुझे गधा मानता है, सेटन मानता है, वर्मिन मानता है, मुझे एप मानता है, कहता है कि मुझे स्किन अलाइव होना चाहिए.
1: okay.
0: क्या वो अब्यूज नहीं है? लेकिन
1: okay.
0: वो अलाउड है.
1: so we,
0: वो मैं लाइन ड्रॉ नहीं कर
3: रहा.
1: On the language,
0: और ये सबसे,
1: let me just understand this, Dr. Ranganathan.
0: या
1: In
0: ये
1: a protest, can somebody set the standards for what is acceptable, what is not acceptable?
0: Absolutely not.
1: Okay.
0: Anything is allowed according to me as far as free speech is concerned with four caveats. Yeah. Do I need to mention those? I will mention them later. But let me come to the third point which the young person with the mic was speaking, because it's very important.
1: Okay.
0: He's going down a...
3: Anand, we got it. Listen. Let me make it very clear to all of you. Congress was terrible.
0: Very unfair.
3: That's why you guys...

0: हैं कि लैंग्वेज कैसे यूज करेंगे, तो जो अभी सौरभ दास या तिलचट्टा पार्टी के दूसरे लोग कह रहे हैं कि वो लैंग्वेज जो हम नहीं सुन सकते हैं, वो लैंग्वेज जो हम नहीं सुन सकते हैं, वो लैंग्वेज हम नहीं बोलेंगे, बस एक लाइन का फॉर्मूला है, रेड लाइन यहाँ ड्रॉ हो सकती है। दूसरा, जब हम ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक को उठा ले जाने पर हम गुस्सा हुए, तो सोनम वांगचुक से भी एक बार पूछ लेना चाहिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने वो सफदरजंग गए, फिर मेदांता गया, और उन्होंने जो अपील की है, और वो ये कह रहे हैं कि हमारी इस पर नजर होगी कि सरकार एजुकेशनल रिफॉर्म करती है नहीं। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इतना बड़ा आंदोलन है ये, मतलब हाल के दिनों का सबसे बड़ा मूवमेंट है, और जो इसका इशू था एजुकेशनल रिफॉर्म, वो गायब हो गया है, उस पर कोई बात ही नहीं हो रही। रील्स पर बात हो रही है, एब्यूजी लैंग्वेज पर बात हो रही है, दूसरी चीजों पर बात हो रही है, क्या? और अच्छा है आप पॉलिटिशियन बन जाइए, देश को नए नौजवान पॉलिटिशियंस की जरूरत है, लेकिन क्या ये पॉलिटिशियंस बनकर सचमुच इशू पर बात करेंगे, या वही करेंगे जो यहाँ किया?
1: वन वेरी फेमस एक्टर हैज सेड, प्लीज डोंट रिस्पेक्ट बुड्ढे जस्ट बिकॉज दे आर सीनियर सिटीजन, सम लुक लाइक दे हैव डेवलप्ड भक्ति डिमेंशिया, इट मेक्स देम डिल्यूजनल दैट दे कैन टेक ऑन द यंग व्हेन दे कांट इवन काटो अ नाइट विदाउट फाइव ट्रिप्स टू द बाथरूम। डोंट ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट देम बिकॉज ऑफ देयर एज, दे वर जस्ट बॉर्न बिफोर यू, लेट देम अर्न इट। Leave some food on a newspaper at the corner of the road at a safe distance. Don't engage. So we are already at a point where we are saying that Buddhe don't deserve respect. And who will decide who is this Buddhe who doesn't deserve respect? And is it a free-for-all now? It's all accepted.
2: Ma'am, I think as being a constitutional state, hum sabhi, like beyond the politics of BJP and Congress, sir, as a Gen Z and as a student, I would say ki जो भी राइट्स हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन दिए हैं, एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर सुप्रीम कोर्ट, एवरीथिंग हैज लिमिटेशंस, एंड वो लिमिटेशन होनी चाहिए। लेकिन लिमिटेशन कौन सी होनी चाहिए? लिमिटेशन होनी चाहिए हमारे खुद के मॉरल ग्राउंड्स पे, यानी जो हम, क्या जो हम किसी को बोल रहे हैं क्या वो खुद हम सुन पाएंगे अपने ऊपर? दूसरी ओर, मैं इस प्रोटेस्ट का पार्ट रहा 23 जुलाई को, परंतु इस प्रोटेस्ट का पार्ट रहते हुए हम कुछ ऐसे स्लोगन्स मिले हैं घोड़े पर, ना जाने कौन कौन से ऐसे ऐसे स्लैंग और ऐसे ऐसी गालियां दी गई है जिसको कि हम सुनना नहीं चाहेंगे, जो कि अगर किसी इंस्टीट्यूट में दी जाए तो हम उसको सीधा बोलेंगे कि ये इंस्टीट्यूट बिल्कुल अभद्र है, लेकिन वहां पर छात्र है। लेकिन इसके कारण क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होते हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं डिफाइन है कि छात्र क्या होते हैं, छात्र का कोई डेफिनेशन नहीं है। तो कोई भी छात्र बनकर छात्र के प्रोटेस्ट में शामिल होता है, कुछ भी अभद्रता का व्यवहार करता है, अंततः उसको बोला जाता है कि हम छात्रों को सपोर्ट कर रहे हैं।
3: There's a very famous statement जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने कही है, और वो ये है कि एक कंट्री जो है वो स्ट्रिक्ट लॉज पे नहीं चल सकता, उसको एक मॉरल बैकिंग, मोरालिटी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। बट एट द सेम टाइम, वॉट इज मोरालिटी नाउ? एंड इट इज फ्रॉम बोथ द साइड, बी फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोटेस्टर्स, बी फ्रॉम द साइड ऑफ द पुलिस। द क्वेश्चन इज कि लैंग्वेज, जब लैंग्वेज की हम बात करें तो लैंग्वेज इज नॉट जस्ट टर्मिनोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो अबाउट द ब्रुटैलिटी जो हम यूज कर रहे हैं। सो बोथ द थिंग्स कम इन टू प्ले। And there will be a chain of reactions. अगर आज मैं किसी के बारे में, for example, I support a government, और मैं उसको कुछ कहती हूँ, हाँ, चार लोग मुझे आकर के और कहेंगे, आप कैसे अपने anger को channelize करो, ये बहुत ज़्यादा important है।
1: Also, very quickly, this gentleman here, then I will go back to Dr. Ranganathan and Anish over.
4: Yes. Hi, I'm Anurag Dwivedi. I'm a MBA finance student. So respect is like a communication. It's a two-way thing. आप दोगे आप पाओगे। और ये जो अभी कमेंट आया था कि बुड्ढों ने कुछ ऐसा मतलब बोल दिया, तो इस देश के बुड्ढे वैसे भी जेन जी इसको कॉकरोच बोल रहे हैं और वो पछता रहे हैं। सो लेट्स बी प्रूडेंट अबाउट दैट, दैट रेस्पेक्ट शैल बी अ टू वे थिंग, नॉट अ वन।
1: I mean, who said it? The Chief Justice.
0: Cockroach नहीं बोला है.
1: हाँ, so the Chief Justice of India used that word. But if why should people walking on the road be called Buddhe who don't deserve respect? What did those old men do to be called Buddhe who don't deserve respect?
4: No, I said that respect is a two-way thing. If a Genri is respecting you, it's the duty of the elders to respect us back. But the elders are not respecting us, then how that you expect that we should?
1: Okay, that young lady there.
5: मैम, एडिशनली आई वुड लाइक टू, आई थिंक यहाँ पे जितने लोग बैठे एवरीबडी वुड अग्री विद द फैक्ट, एज सर ऑल्सो यू नो लैश्ड आउट अबाउट दैट, कि वी डोंट टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर एवरी पर्सन इंडिविजुअल ओपिनियंस। एग्जैक्टली दैट, इफ आई टॉक अबाउट इट, कि अगर प्रोटेस्ट में, इफ आई वेंट टू द प्रोटेस्ट एंड आई डिड नॉट से एनीथिंग दैट वॉज ऑफेंसिव और हीनियस, सो देर आर देर माइट बी यू नो एंटी सोशल एलिमेंट्स इन द प्रोटेस्ट, बट नॉट एवरीबडी इन द प्रोटेस्ट इज डूइंग द सेम थिंग। सो वाई इज द एंटायर जनरेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर वट इज हैपनिंग over there? गाली दी गई है तो हर इंसान ने तो नहीं दी है। Additionally, अगर yes sir,
6: I want to say one very simple thing because I agree with you. Please see इसमें से कितने slogans abusive थे और कितने slogan वास्तविक हुई हैं थे।
1: Also,
6: let's be honest, yeah, the abusive slogans were a small fraction of the slogans raised. There was no abusive slogan raised on the stage. What Gen Z was doing was having fun. They're doing like Subway Surfer.

0: reels and making those reels and mocking the government and those go more viral. Any smart person with a camera knows कि अगर आप गाली दोगे तो आपकी reel की reach limit हो जाएगी. तो वो गाली देते नहीं है, आप ढूंढ ढूंढ के उनको ढूंढ रहे हो कि अच्छा चलो गाली दे दी हम खुश हो गए.
1: I have a contradiction to the point I've made. जैसे सर मैंने आपको बोला कि हमको एक line draw करनी है, but being elder people, now I am not drawing the age bracket here, but being elder people, don't you think अगर किसी ने वहाँ पे गाली दी तो आपको उसका response एक अच्छी तरह से करना चाहिए था. If some person in any action gave abuse there, तो आपको नहीं लगता आपको उनको समझाना चाहिए था instead of sending mob to their places or sending them threats? That is my contradiction. I in starting said that I am making a generalized statement that abuse is wrong from both the sides.
2: Just a question. वही तो कह रहे हैं ना, now it is being said that don't check us, this is the way we will speak from here on.
1: It's not about don't check us, I am asking the question to sir that if we are making the boundary, then don't you think that if Gen Z did something wrong तो आपको उनको अच्छे समझाना चाहिए था. If you are coming on the same ground as us, पहला आप हमको बोल रहे हैं कि आपने गाली दी, that is wrong, I am also accepting it, but आपको नहीं लगता आपको,
2: don't file FIRs, exactly. If they are abusing, don't come after them with,
1: tell us and what we did wrong.
0: Accountability, no, one second, I just have to say one thing, accountability has to begin.
3: समझना होगा कि जो भी ये बात कर रहा है, हम सबके घर में जेन जी बच्चे है भाई, उनकी बात हम सुनते भी हैं, उनको सुनाते भी हैं, उनसे समझते भी हैं, लेकिन गालियां सुनना सुनाना ये तो लैंग्वेज नहीं
4: है. लेकिन
2: पीपल गेट देयर बैक अप व्हेन देयर आर पीपल लाइक कंगना रनौत. यू नो आई कोटेड द एग्जांपल ऑफ रिचा चड्ढा, बट देन ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम यू हैव कंगना रनौत हू इज सेइंग दिस इज जनरेशन गटर, हाउ डज दिस हेल्प. जो दो तीन बच्चे हैं वो अब और भी,
3: किसी को भी आप पूरी जनरेशन को एक जिसको कहते हैं ना कि ब्लैंकेट आपने बोल दिया कि ये गटर हो गई, ये बिल्कुल ठीक नहीं है. लेकिन इसका दूसरा पहलू है, अगर कंगना ने मतलब मैं उसको नहीं कह सकता क्योंकि टीवी चैनल एंकर से बातचीत हुई, लेकिन अगर वही बात कही कि आप जो सुनना नहीं चाहते हो, आप कपड़े उतारने की आजादी, गाली देने की आजादी, तो उसकी रेड लाइन कहां ड्रॉ होगी? फिर तो दोनों तरफ होगा, एक तरफ नहीं हो सकता है ना.
5: नो वन सेकेंड, I'm again coming to who has disproportionate power. Where does accountability set in? All of this today is being put in as if the students are on equal footing with the government. Let me ask you, Padmaja, when those 20 students committed suicide in 2024, I'm not asking Dharmendra Pradhan, the then NTA chief is today principal secretary Chhattisgarh, where was accountability set? Is 2 years not enough to set accountability? This guy's 5,000 rupees apartment, he must be staying with 5 other people. His life is a struggle. His life is a struggle because your kids go abroad to study. You can tell them that your life is a struggle. Which Neta's kids are struggling like this? This is not right. They are the future of our country. They are struggling. They have suffered. And it is the duty of the government to be empathetic. You can't come and use disproportionate force and say, oh, but bro, we are equal. No, we are not equal. The power rests with you.
2: Okay, Dr.
0: I have to just say one more thing here, right? Let's take accountability from those abusing PM Modi. But when will we take accountability from Sachin Sharma who ordered the lathi charge and the tear gas? When will we take accountability from the police officer who ordered pellet guns to be used in the national capital?
2: It should be done now. No. Which is why the Supreme Court
0: has it not been done now? Because the government should resign then.
5: Is the Supreme Court running
0: the point of the government?
5: Okay.
0: How can you not take action?
2: Okay, just to be factually correct, accountability should be sought, and which is why there are multiple pleas before the Supreme Court, which is now asking. It doesn't help to shout me down. Which is why the Supreme Court is saying there should be an independent investigation, which should see whether there was violence on the part of the police and whether there was violence on part of the protesters. Both are going to be investigated.
0: Until then, the government should have the grace to suspend the officers who took this action.
2: Okay. How can people have trust, Dr. Ranganathan, when there is no accountability? And now we've moved beyond the language question also, right? Now we have come to that we had no option to pick up the bricks because nobody was listening to us. And now you are coming after us and turning us into criminals, Dr. Ranganathan.
6: Look, by all means, the people who gathered there, Padmaja, alongside you are brilliant, as you started by saying. But can I say, I'm so disappointed by some of the statements coming out. एक कह रहा है जब तक आप एक कमरे में ना रहो 10 लोगों के साथ आपको सफरिंग नहीं पता चलेगी. ये लॉजिक ये वही है कि जब तक मैं खेत में जाता रहूं, जब तक मेरे पास घर पे टॉयलेट ना हो मुझे टॉयलेट की इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगी, जब तक मेरे सर पे एप्पल ना गिरे मुझे पता नहीं चलेगा कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज है. यही चीज पॉलिटिशियंस यूज करते हैं. एंड एज फार एज अनीश गवांडे सेइंग ही इज नॉर्मलाइजिंग इलीगैलिटी, The Jantar Mantar protest, there was no lathi charge there because that was a legally sanctioned protest. Anish, do not be a riot monger, please. You are going to be a politician. When the march happened, the march was illegal and there were three stages of police action. The first action was section 144 was imposed. The second was tear gas was happening. The third was lathi charge. And the fourth was when less lethal force. Aap wahan pe the kya? Were you the police officer sanctioning it? Were you in charge of
2: Anish?
6: You were one in the mob. You were not the police.
0: No, I was in the mob.
6: Whose problem it was to take care of the situation. Don't talk like somebody who doesn't believe in rule of law or logic or science. I don't know which subjects you study.
0: I have been to multiple protests in my life. This was the first time when I was in the mob. And I had a lathi charge being directed towards me and tear gas being lobbed towards me. Sir, you have to listen now. Without any advance warning, the police is supposed to issue 3 warnings before tear gas is fired. The police did not do so.
6: Who said lathi
0: charges, sir? In lathi charges, the lathi is not supposed to go above the knee. The lathi is supposed to immobilize you. It is not supposed to go all the way up to people's necks. So clearly, this is a failure of the Delhi police's training. This is the failure of any kind of de-escalationary procedure on the Delhi police's part.
6: Says an IPS officer, Anish Gawande.
0: Sir, please see Meera Borwankar. Meera Borwankar, one of the most senior IPS officers in this country, has come out and said that what the Delhi police did was unacceptable.
6: You marched illegally, yes or no?
0: No, this was a failure of policing, sir.
2: Okay, young man.
6: Come up with facts or get a fact checker out because sir, I can't counter each one of these lies.
4: With due respect, sir, पहली बात तो ये है कि चिल्लाने से सत्य बदलने वाला नहीं है पहली चीज. दूसरी बात जो अनिश सर ने कही कि वहां पर आप कैसे जो प्रोटेस्ट में देखे थे कैसी लैंग्वेजेस थी अब्यूसिव लैंग्वेज को आप साइड कर लीजिए. बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट भी थे वहां पर स्लोगन्स भी थे कि कुछ पुछू प्लीज रिजाइन कर दो ना. इसको कोई नहीं बोल रहा है. कितने प्यार से हम बोल रहे थे. ठीक है. दूसरी बात रही बात अकाउंटेबिलिटी की सर. तो अकाउंटेबिलिटी इस देश में
2: सर. लेट्स जस्ट कम बैक टू द मेन इशू. वी आर टॉकिंग अबाउट द वायलेंस.
4: इट इज द मेन इशू. अकाउंटेबिलिटी इज द मेन इशू.
2: मेन इशू इज द वायलेंस. इन द वायलेंस, yes, there were many people saying kuchu puchu,
4: yes,
2: but there were also many people who were, one, with a criminal background, two, on camera they are engaging in violence,
4: and there were and few people who were non-uniform ho karke bachcho ko maar rahe the. Wo log kaun the?
2: Three, remember that the very act of marching towards parliament was an act of breaking the law. So who is accountable for that?
4: Accountable.
2: The law was broken.
4: उस वहां पर पुलिस थी. पुलिस जो है सीधे लाठी चार्ज कर रही है. उसके लिए वो अकाउंटेबल नहीं हो रही है और कोई भी कार्य हो रहा है उसके लिए कोई अकाउंटेबल नहीं हो रहा है. यहां पर सिर्फ अकाउंटेबिलिटी हमारी ओर से जारी
6: है. वाज द लॉ ब्रोकन और नॉट?
4: सर पहले जो हमारी जो लॉ की बात आप
6: कर रहे हैं, वाज द लॉ ब्रोकन?
4: सर लॉ किसके लिए बना हुआ है? लॉ हमारे लिए बना हुआ है ना.
6: आस्क दिस गाय
4: सर,
6: वाज द लॉ ब्रोकन, यस और नो?
4: लॉ को मतलब फॉलो करना केवल हमारा ही दायित्व है या फिर वो स्टेट की? थोड़ा उसके बारे में कोई जवाबदेहिता नहीं मांगेंगे सर. दूसरी बात तो ये है कि जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपद धर्म की, हम सर ये आपद धर्म आ गया था हमारे ऊपर क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे सामने दोस्तों को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, सर फट गया है सर. क्या जो इस्तीफा दिया गया उससे उसका मरहम पट्टी हो जाएगा? उससे मरहम पट्टी नहीं होने वाला. एक और बात है, छोटी सी बात यहाँ पे. इसका मतलब कि पुलिस ही फेल की है, स्टेट ही फेल की है वहाँ पर.
2: दोस्त, लॉ मेंटेन करने के लिए ही तो पहले बैरिकेड तोड़ दी,
4: बिना किसी
2: फिर आप और आगे बढ़े,
4: पेलेट गन से
2: टियर गैस चली,
4: वार्निंग
2: फिर आप और आगे बढ़े, यू केम क्लोज टू पार्लियामेंट.
4: जो है पेलेट गन चला रहे हो बिना किसी वार्निंग के. एक चीज मैम, यहाँ अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही थी, छोटी सी बात है. डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की. यहाँ पर हमारे पूर्व मंत्री जी ने इस्तीफा दिया और क्या कहा कि हम अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं. हम जो है इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे देश के यूथ का जो टाइम बर्बाद हो रहा है, हमारे देश के यूथ जो एंटी नेशनल, हमारे देश के यूथ का. सर एक मिनट सर, छोटी पूरी बात हो जाए सर,
3: कंफ्यूजन हो.
4: हमें यहाँ पर जो
3: ये जो मार्च था उससे पहले 20 दिनों तक जंतर मंतर पर पीसफुली वही पुलिस, उनको एक तरह से कहें कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, किसी ने कोई गड़बड़ नहीं की. जिस दिन ये पार्लियामेंट मार्च था, हम सब लोग टीवी पर थे और हमें लग रहा था कि 3 घंटे तक जिस तरह से मॉब पार्लियामेंट के इर्द गिर्द था और जिस तरह से वो सिक्योरिटी लैप्सेस से बिल्कुल वहां पर दिल्ली पुलिस फेल हुई. और हम तो कहते हैं कि उसको पहले मैनेज करना चाहिए था, लेकिन जब आप पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ गए, और मैं फिर कह रहा हूं 3 घंटे 4 घंटे तक कोई लीडरशिप नहीं थी सीजेपी की, कोई बताने वाला नहीं था बच्चे कहां जाएंगे. और उसके बाद जब ये सब हुआ, उसके बाद ये घटनाएं, फिर आप नहीं बता सकते कि पहले मुर्गी या पहले अंडा, पहले किसने क्या किया, पहले पत्थर चले या पहले लाठी चली. और मुझे लगता है कि जब हम ये कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पुलिस बनाम बच्चे, ये ऐसा नहीं है, इसको समझना पड़ेगा.
2: First, give your name and what do you do?
7: Okay, so I'm Ananjay. I'm currently pursuing my bachelor's at IIT Madras. And I wanna point out that कि लोग बोल रहे हैं कि पुलिस की responsibility होनी चाहिए. I accept that, but the point is कि पुलिस जो एरिया जंतर मंतर से लेकर संसद तक का, that is very highly protocolled area. वहाँ पे आप ऐसे रेंडमली टहलने नहीं जा सकते. दैट इज वेरी, मैं मानता हूँ जंतर मंतर की उनके पास परमिशन थी, बट जंतर मंतर से आगे का उन्होंने क्या रिटर्न में गवर्नमेंट से लेटर लिया था या नहीं लिया. एट द सेम टाइम अगर गवर्नमेंट से लेटर लिया भी था तो पुलिस

0: वालों के ऊपर मानता हूँ उन्होंने गलत किया, बट एट द सेम टाइम पुलिस वालों के पास ऑर्डर्स थे, मतलब जिन्होंने ऑर्डर के अगेंस्ट किया उनको मैं मान रहा हूँ उन्हें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बट अगर उनकी नौकरी है यार, सरकारी नौकरी के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, उनके पास अगर कुछ ऑर्डर्स आए हैं तो दे आर फॉलोइंग देयर ऑर्डर्स, तो जिन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं दे आर सपोज्ड टू अकाउंटेबल।
1: लेट मी टेक हिज पॉइंट फॉरवर्ड। Only narrative we've heard in the news channels, except NDTV, other news channels, is that there were all these goons here. Somebody's a POSCO accused, somebody's a rape accused, somebody's so-and-so criminal, etc. That's the narrative we've heard. It's clearly put out by the government. Now, question one. I agree with what he said, that this is the most sensitive geography in the history of this country. What was the police doing? Were they snoozing? What was the home ministry doing? I'm not asking the honorable home minister. Why did you switch off internet? Because the entire protest was running on an internet. Do you not have common sense? It's basic common sense. Point number two. This is the Delhi that's seen two riots, one bomb blast under the same home ministry. Who will take accountability? And last thing, when the honorable ex-education minister resigned and he came to parliament, I want each one of you to see the garlanding and the hero's welcome he got. 20 kids died. 20 kids died. His daughter studies abroad. I'm not comparing it. He got a hero's welcome. If this is accountability, sorry, accountability, wo hona chahiye tha. Dharmendra Pradhan ji ka waisa swagat. Aap kya inko murkh samajhte hain, sarkar?
2: इसीन मुश्किल ये है कि आपने हमें सुना ही नहीं, मैं तो पहले से ही पहले दिन से मैं रिजिग्नेशन मांगने वालों में हूँ। पहले दिन से मैंने कहा कि वो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बात बार बार तहसीन कह रहे हैं कि उनके बच्चे अब्रॉड जाते हैं, उनके बच्चे अब्रॉड जाते हैं। अरे इस मूवमेंट का सबसे बड़ा नेता अभिजीत दीप के अब्रॉड से पढ़ के आ रहा है, थोड़ा तो यार तहसीन सोचा करो। कुछ भी बोल
3: देते Let me ask a larger question. Is this now a model that we are going to see replicated? And are we now all resigned to the fact that now the pressure group will come from the streets and not from the parliament or the legislative assemblies of India?
4: Good morning, sir. मेरा नाम अर्पण कुमार गिरी है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से छात्र हूँ। मेरा ये कहना है कि सर, जैसे अब आप लोग कह रहे हैं कि अचानक से पुलिस आई और लाठी चार्ज कर दी, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हुआ है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप पूरी क्रोनोलॉजी को समझते हैं तो अभिजीत दीप के एयरपोर्ट पर आते हैं, बुक दिखाते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती है, पुलिस उन्हें पूरा अलाउ करती है। अभिजीत दीप को लगता है कि उन्हें गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं देगी, 6 जून को उनको परमिशन मिल जाता है। अभिजीत दीप को लगता है कि ये लॉन्ग टाइम परमिशन के लिए नहीं जाएगी, सॉरी हंग, तो वो भी मिल जाता परमिशन। फिर सोनम वांगचुक जी आते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं, उन्हें लगता है कि वो भी एक दो दिन में हटा लिए जाएंगे, उन्हें भी नहीं होता है। जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है कि हमें इनका
1: ऑर्डर नहीं,
4: आई हैव रेड हाईकोर्ट का
1: ऑर्डर,
3: व्हाट्स योर पॉइंट? यस, गो।
4: हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है कि मुझे इनका डेली मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, ये देखने
1: के लिए। नहीं, वो नहीं था, सॉरी, नो, ही इज रॉन्ग।
4: सर लेट मी कंप्लीट,
1: बोलिए आप, बोलिए।
4: ओके, तो उसके लिए अगर
1: ऑर्डर बोलिए, ऑर्डर बोलिए ना, क्या था?
4: उन्हें मेडिकल रिपोर्ट चाहिए थी, ठीक है,
1: हॉस्पिटल ले जाना,
4: क्योंकि क्योंकि एक मिनट, जो कि पीआईएल फाइल हुई थी, पीआईएल फाइल हुई कि
1: ऑर्डर क्या था?
4: ऑर्डर ये था कि मुझे मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, जो पीआईएल फाइल
2: वही था, स्टेट से भी हो सकती थी,
1: वो तो स्टेट से हो सकती थी।
4: मेरा सवाल ये है कि अगर आप अकाउंटेबिलिटी सरकार की मांगते हो, ठीक है, तो आप अकाउंटेबिलिटी उन बच्चों के लिए क्यों नहीं मांग रहे हो? अभिजीत
1: दुखे ने बच्चे ले आए मेरे पास, वो
4: जो मार खाए, जिन्होंने अनडाउटेडली विशिष्ट भकाने में आगे मोबिलाइज करने के लिए प्रोटेस्ट में। दूसरी बात, पार्लियामेंट कोई पिकनिक प्लेस नहीं है कि आप बिना एनओसी के आ जाते हो घूमने के लिए यहाँ पे, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन मानते हो, एक मिनट, आप कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हो, तो आपको ये भी मानना होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज हैं उनके ऑर्डर्स को कम से कम फॉलो कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज ने आपको प्रोटेस्ट करने का पूरा राइट दिया, आपने 25-26 दिन पूरा प्रोटेस्ट किया, आपको जब मार्च करना था पार्लियामेंट, बस उसके लिए आपको एनओसी नहीं मिला और आप उसके लिए आकर वायलेशन कर लेते
3: हैं। इट इज ऑल्सो इनकम्बेंट ऑन द प्रोटेस्टर्स एंड द ऑर्गेनाइजर्स टू फॉलो द लॉ एंड द बेसिक पॉइंट that Dr. Ranganathan was making, that in marching to parliament beyond Jantar Mantar, the law was broken. Anish.
5: Ma'am, Padmaja, was the march to parliament announced on the 6th of June? Was it announced in the weeks after? Why was the march to parliament necessary? Because this government has forgotten to listen. 31 दिन वहां पे दिन रात किसी को बैठना पड़ता है। आप संसद 200-300 मीटर दूर रखते हो, आपको तब तक आवाज सुनाई नहीं देती है, तो आवाज सुनाई देने के लिए किसी को आपके दरवाजे तक पहुंचना पड़ता है।
3: But no, then why march to parliament? No, but I'll tell tomorrow you why. Barge inside this Prime Minister's residence.
5: Because then
3: tomorrow somebody will barge into your threat, house, Anish.
5: Bigger security threat is marching to the Prime Minister's residence.
3: Dr. Ranganathan.
5: Parliament is the temple of democracy, and that was the march. And Padmaja, let me tell you this. let me also say this. For many of you, I was part of the Nirbhaya protests. Mm. And a lot of us raised our voice against how the Congress government shut down the Nirbhaya protests. Even then, main ek hi second bolunga aapko, tabhi bhi. जब इंडिया गेट पर लाखों लोग आ गए थे उनको वाटर कैनन से हटाया गया था पेलेट गन इस्तेमाल करने की बदतमीजी
4: एक शॉट
5: इस देश में इंडिपेंडेंट इंडिया में किसी देश इस देश में
4: किसी सर मैं सिर्फ दो लाइन बोलूंगा ज्यादा नहीं आपने कहा कि सरकार सुनना भूल गई थी तो मैं बता दूं कि ये वही सरकार है जिसने फार्मर्स के लिए 11 बार कॉन्वर्सेशन भी करी थी और उसके बाद हमने फार्मर्स बिल को रिपील करने के लिए ठीक है
0: मैं ये कहना चाहता हूं आपसे
3: डॉक्टर रंगनाथन यस
6: Yeah, so, you know, I need to focus on not just the voters, the Gen Z voters, but whom they're going to be voting for in the future. And I hope my good friend Anish doesn't mind. They're going to possibly be voting for him. What he's saying is, ki hamari baat nahi suni, isliye humne law ko toda. Ye wohi log hain jo, this is textbook anarchy. Are we living in a democracy or are we living in an anarchy? What he is saying is, हमारी बात नहीं सुन रहे इसलिए पार्लियामेंट में बात सुने इसलिए हमने इलीगली मार्च कर लिया दैट एंटायर एरिया एंड आई वॉन्ट टू आस्क देर वॉज अ स्टूडेंट आउट हियर हु मेड द पॉइंट दैट द एंटायर एरिया इज अ सिक्योर जोन आई एम हैजर्डिंग अ गेस आउट हियर आई डोंट नो हु दैट स्टूडेंट इज बट यू टेक द माइक टू हिम आई एम श्योर ही इज आइदर स्टडिंग साइंस और इंजीनियरिंग इसमें रैशनल थॉट की जरूरत है प्लीज आस्क
3: He's a law student. Why do you have such a low opinion of law students? Yes.
1: He can argue both.
3: So let me ask you this. Okay, just a second. I again want to come back to the question. Are the laws now going to be decided on the streets? Is the Jantar Mantar model now the acceptable model moving forward?
7: First of all, when the previous exam papers leaked, no accountability was held. So, and it is the right of the people to protest. Why are we saying that we should have choices? We can have both. We can go to the courts and we can protest as well. And another, we are not talking.
3: Let me ask you this. Tomorrow you give a competitive exam. Somebody is not happy with you qualifying. If I manage to get 5,000 people, aapka naam kya hai?
8: Yash.
3: Kal ko main kahun, Yash ka admission cancel kar do. Main zyada deserving thi. Main nahi agree karti ki Yash ko admission milna chahiye. Aapka admission rad ho jana chahiye.
1: That's trivializing.
3: No. It's about the pressure group. It's about the pressure group. Look, it's about the pressure group, Tehseen. Today, the fact is,
1: because he got admission. There were people who died.
3: There are many people who have legitimate arguments and causes, but they do not manage to mobilize people. So they are unheard. And unfortunately, that is the precedent that has been set. In a democracy, if you manage to mobilize enough people, it is a legitimate.
9: Excuse me. मैं ये सवाल करना चाहूंगा 2014 में बीजेपी की सरकार आती है 2015 में प्री नीट का पेपर लीक होता है एंड नाउ वी आर लिविंग इन 2026 15 से लेके 26 तक कौन सी अकाउंटेबिलिटी की बात की जब तक हम संसद तक नहीं पहुंचे कौन सा ऐसा नेता था प्रधानमंत्री या शिक्षा मंत्री जिसका कोई भी बयान आया ट्वीट आया या किसी ने कुछ भी रिजाइन की बात की तो जब तक अगर हम संसद पर नहीं जाते हैं अगर भगत सिंह ने लंदन में जाके उस बम को नहीं फेंका होता तो किसे पता लगता कि भगत सिंह क्या कर सकता है तो दिस इज वेयर द रेवोल्यूशन स्टार्ट
3: विल द सीजेपी प्रोटेस्ट हैपन नेक्स्ट एट कर्नाटका एंड Punjab, when is it happening? Because Congress is protesting. I have to say, the Congress is protesting in Parliament. And yesterday, Charanjit Singh Channi protested in Punjab also. When is the CJP planning to protest in Punjab?
5: I certainly hope that they'll protest in Punjab soon. But what I will say is that what has unfolded over the last few weeks should worry the government. If I were the Home Minister and the Prime Minister, I would call for an all-party meeting because there is a fundamental disconnect between this government and young people.
3: Hmm.
5: If you feel like you are not being listened to, if you feel like actions are being taken without you being consulted, then there is going to be a democratic trust deficit that is very difficult for any government, for any political party to overcome.
3: Okay, tell me your name. What's your point?
10: So I'm Ronak Chaudhary and currently I'm a class 10th student and the youngest among all of here people here.
5: So are you Gen Alpha now?
10: Yeah. So yes, so my question is to the Congress. See, accountability cannot be selective, right? So मैं आपके सामने कुछ facts and figures रखना चाहती हूँ. 2005 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम लीक होता है, नो मिनिस्टर रिजाइंड, नो अकाउंटेबिलिटी टेकन. 2011 में AIEEE का पेपर लीक होता है, नो यूनियन मिनिस्टर रिजाइंड, नो अकाउंटेबिलिटी टेकन. राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट 2008 में लीक होता है, अगेन नो अकाउंटेबिलिटी टेकन, नो यूनियन मिनिस्टर रिजाइंड.
1: नो लिसन, आई एब्सोल्युटली थिंक ऑल गवर्नमेंट्स इन इंडिया हैव लेट डाउन यू पीपल. Why should I do whataboutry? There is absolutely no reason. It is your life, your future. You think the Karnataka education minister is good? He's terrible. The point is, I hope cockroach protests. If they don't, it is not the responsibility of cockroach to protest.
8: They
1: are students. It is the responsibility of the opposition there to bring down the Congress government. And please do it. I will support you. I think where it is wrong. Let's learn to stop this whataboutry. If people are dying, if people are losing out, we must.
2: Padmaja.
3: I think she is only saying, I demand equal accountability of everyone. I think they should. Not whataboutry.
1: I think you should. And I think, sir, ek second, ek hi line, sir. I think you should. I think you're absolutely right. I don't even demand of cockroach. I think the opposition in Karnataka must do it. And if they don't do it, they are failing you. I think the Congress should back up. I totally agree with you.
2: Padmaja, ye kamal.

0: Yes.
1: Any young yes. people's movement today yes. should establish itself as a political party. Like he said, he wants to become a politician. Young people want to become politicians today, and we need more avenues for them to achieve success, to have a platform.
2: But tomorrow your friend Ashutosh will contest against you.
1: And I will welcome that, because okay. that is the beauty of democracy, and we will hold them accountable.
2: All right. People's movement or political party? What do you want from CJ?
3: Ma'am, see, first of all, you also posed a question over there, that is mass mobilization the new form of how laws are going to be established in this country? Talking about lawlessness, is right to education not a fundamental law in this country? Is it not? And if asking for accountability in education, let alone kisne pehle law toda, first of all, agar education ke paper leak hote hain, agar student rose ro hai, to pehle law kisne toda? Uske baad, if you're asking about students to be disciplined enough, I completely agree they should have never done something that is illegal, but who is provoking them to be illegal in the first place? And answering what you said, you know, is CJP should be a political party or not? I mean, giving a chance to a political pressure group coming in, and if, okay, first of all, you also said ki agar you know, unke paper ke against, if you gather 5,000 people, will he have to leave his seat? First of all, people do not come to streets like that. He was also saying that at that point. Itne log agar streets pe aaye, the issue was genuine. Yes. Lakhs of people throughout the country. It was not just Delhi. It was the entire country, every state, even my city. I come from a tier 3 town. There as well, students from class 11th and 12th were trying to
2: Where
3: protest.
2: Are you from?
3: I am from Rudrapur in Uttarakhand. It's like the smallest city you would have never even heard of. People
2: I've actually been to Rudrapur, but yes, go.
3: Great. The point is that if so many people are resonating with one issue, log keh rahe ki sway ho gaya generation. How is the generation swayed if lakhs of people across country are coming to the streets? There is
2: so would you rally behind a people's movement or a political party? What do you prefer today? Should CJP stay the way they are?
3: Ma'am, CJP is a political pressure group. It worked once. We don't know what next issue they are able to mobilize people on. Neat leak.
2: So largely, who would you prefer? A formal political party, whether it is Congress, NCP, BJP?
3: Depends on what agenda they bring to the table.
2: Depends on what agenda. Yes, ma'am.
4: Well said. Well said.
5: Padmaja, so, can I please?
6: My name is Deepthi, and I want to give my take on the thing that ki 2024 mein paper leak hua, 2025 mein paper itna tough aa gaya ki bacche usko crack nahi kar paaye, and 2026 mein again hame paper leak dekhne ko mila. So it is not a thing ki hame decades mein dekhne ko mil rahi hai, hame bahut jaldi jaldi ye cheeze dekhne ko mil rahi hai, and why not we demand accountability for that? Aur hame ye kaha ja raha hai ki why are we taking the path of violence? Kyon hamari baat 2024 mein bhi nahi suni gayi? Ab hame jab 2026 mein apni baat sunane ka mauka mila, तब भी हमें ये कहा जा रहा है कि आप बहुत ही पीसफुल रहिए, जबकि हमारी बात सुननी नहीं जा रही है।
0: एक छोटी सी बात,
2: देखिए 2024 में लॉ आई थी, बट यू आर सेइंग एट दैट टाइम इट वाजंट सैटिस्फैक्टरी इनफ। जस्ट अ सेकंड, डॉक्टर रंगनाथन इज नॉट हियर, आई फील रियली बैड दैट ही इज पेशेंटली। देखिए, व्हेन यू आर पीसफुल, डॉक्टर रंगनाथन, मे बी दैट्स द लेसन, व्हेन यू आर क्वाइटली सिटिंग इन योर रूम एंड रेजिंग योर फिंगर, नोबडी लिसन्स टू यू। नाउ जेन जी हैज ऑल्सो लर्न द लेसन, नेक्स्ट टाइम यू शुड ऑल्सो कम हियर एंड सिट ऑन धरना विद अनीश गवांडे, तहसीन एंड हर्षवर्धन जी। यस डॉक्टर
7: Ranganathan. Yes, no, I won't sit with Anish because his foot is injured because he kicked me. No, look, I am just disappointed. Can I just say, with, I love everyone sitting there, but you know, this new argument that has come, this justification of committing illegality because someone provoked you, I am astonished. So by that logic, if somebody provoked you by burning a coach and 59 Hindu pilgrims, you are justified to commit a riot?
0: Oh, Hindu Muslim, again Hindu Muslim, again Hindu Muslim.
2: Okay.
4: Look, I just want to
0: again Hindu Muslim.
7: Do you understand what analogy is? Do you understand the logic? Meri samajh mein nahi aa raha.
2: Okay, all right. Maybe. One person, everyone wants to respond.
7: I mean, illegality.
8: So sir, so sorry sir, let's back to the topic. एजुकेशन रिफॉर्म से बात करते हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है आपको बड़ा लग रहा हो, लेकिन ये इस्तीफा पता नहीं कितने साल पहले हो जाना चाहिए था। वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन रिफॉर्म्स, 94,000 से ज्यादा स्कूल्स बंद कर दिए, 1,00,000 से ज्यादा स्कूल्स ऐसे जो सिंगल टीचर्स पे चल रहे हैं, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन रिफॉर्म्स। नीट लीक इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम, वी आर हैविंग सो मेनी एजुकेशनल प्रॉब्लम, तो उसके चक्कर में इस्तीफा तो बनता था।
2: और यहां आई थिंक बात वहां पे हो रही थी, इट वॉज अबाउट प्रोवोकेशन। इज रिस्पॉन्स टू अ प्रोवोकेशन जस्टिफाइड सिंपली बाय सेइंग दैट आई वॉज प्रोवोक्ड? दैट वॉज the logic being given over there? Yes, this one gentleman here and then Harshvardhan.
9: आपने जेंटलमेंटल मॉडल की बात करी थी, मैं उस पर सिर्फ दो मिनट लूंगा और दो तीन सवाल है, सर से भी पूछूंगा और जो रंगनाथन सर है उनसे भी पूछूंगा, सबसे पूछूंगा।
4: ये वकील साहब पूछिए।
9: जी बिल्कुल। मेरा जैसा कि है कि अगर जो हंगर स्ट्राइक है वो एक राइट टू प्रोटेस्ट के लिए दिया गया था और वो वॉइस रेज करने के लिए दिया गया था। करेक्ट, लेकिन इस प्रोटेस्ट को, सीजेपी के प्रोटेस्ट को इसलिए याद किया जाएगा कि कैसे हंगर स्ट्राइक को सरकार को ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, ये बहुत अच्छे से
0: गांधीवादी तरीका है, ये गांधी का देश है।
9: सेकंड थिंग, अगर देश में जैसे कि ब्लैकमेलिंग के लिए क्यों, क्योंकि अगर इस देश के 140 करोड़ आबादी, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है ही, अगर वो हर चीज़ के लिए अपनी प्रॉब्लम के लिए हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाए फिर ये देश खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, अनिश सर ने कहा कि सीजेपी अगर ये इलेक्शंस में आती है तो मैं उनको सपोर्ट करूंगा, तो ये आज एज ए स्पोक्स पर्सन इनका पहले से ही मतलब वो जो था वो इमेज क्लियर हो रहा है अब धीरे धीरे, क्योंकि इनको जब शेयर करना था स्टेज तो अरविंद केजरीवाल और जो पार्टी पॉलिटिकल मेंबर्स थे वो आते थे स्क्रीन।
2: आप क्या कह रहे हैं कि ये सस्पेक्ट है क्योंकि इनके पॉलिटिकल एम्बिशंस है, ये तो किसी का भी हो सकता है ना, दे हैव अ प्रेशर ग्रुप। जस्ट अ सेकंड हर्षवर्धन जी, देन आई एम कमिंग टू यू।
5: एक सवाल मेरे मन में है, आप में से कितने लोगों को राधा कृष्ण कमेटी के बारे में पता है?
10: एक मिनट, बीच में नहीं।
5: कितने लोगों को राधा कृष्ण कमेटी के बारे में पता है? आपको पता है? आप उनको माइक दीजिए जरा, आप तो पॉलिटिशियन भी बनना चाहते हैं, इतनी देर से सब कुछ कह रहे हैं,
0: ठीक है,
5: नहीं पता आपको? आपको पता है तो
0: मेरे ख्याल, एक्सक्यूज मी सर, डू यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस कंट्री?
5: एक मिनट,
0: डू यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस
2: कंट्री?
0: यू आर मिसलीडिंग द स्टूडेंट्स बाय टेलिंग कि अभिजीत दीप के यूएस से
5: पढ़ के स्टूडेंट को रिपोर्ट करो। जिनको पता है उनको दीजिए, आप उनको,
0: आई एम हियरिंग,
5: उनको माइक दीजिए ना।
2: ओके अनुराग, गिव इट टू,
0: आपको सब कुछ
5: पता है, माइक दीजिए, आप उनको माइक दीजिए,
0: दो क्वेश्चन पूछ लूं।
5: अरे माइक तो दे दो भाई, माइक दे दो, मैं समझ गया, तुम्हारा समझ में आ गया, इस तरह से लड़ने के लिए नहीं आते डिबेट में।
2: ओके गो ऑन खुशी, गो ऑन गो ऑन।
10: सो फर्स्टली टू यू, as you said, उनको आपने question पूछा?
5: नहीं,
10: no, no, sir, let me say now.
5: किसी को राधा कृष्ण कमेटी के बारे में पता है? तो आप बताइए ना, बताइए।
10: Yes, ma'am, as you said, firstly, we are here to ask question, not to be asked. Second, sir, about the committee. Sir, this was a 7-member committee. And as I have read about that, sir, now let me tell. As I have read about that, the document says that 76% of the things that the committee deciphered, 101 demands, they have been implemented. Implemented is the word. Sir, आपको नहीं लगता 76% ऑफ जो उस कमिटी ने बनाया, अगर वो इम्प्लीमेंट हो गया था, उसमें एक भी ऐसा रूल हो जिससे एग्जाम लीक ना हुए हो? आई एम टॉकिंग अबाउट द कमिटी, यू आर टॉकिंग अबाउट, सर, इफ 76% इज इम्प्लीमेंटेड,
5: कह रहा हूं, एंड देन बहुत अच्छा, मैंने शुरू में कहा था कि खुशी ने पॉइंटेड बात की है।
10: मैम, आई हैव वन क्वेश्चन।
5: राधा कृष्णन कमेटी ने 101 रिकमेंडेशन दी, जिसमें से 57 इम्प्लीमेंटेड है, बाकी पार्शियली इम्प्लीमेंटेड है, बाकी लॉन्ग टर्म है, उसके बावजूद ये पेपर लीक नहीं। हम क्या है ना, इस वक्त जो डिबेट हो रही है कि हमने मूवमेंट किया 24 में कुछ हुआ नहीं था, तब भी कुछ नहीं हुआ, हमें कम से कम फैक्ट पे बात करना चाहिए, स्पेशली जब हम जेंजी की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए जो एनटीए आया क्यों आया था, क्योंकि ऑल इंडिया पीएमटी एग्जाम में ढेर सारी गड़बड़ियां थी, पेपर लीक थे, सीट बिक जाती थी, एनटीए भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, हमें उसमें भी रिफॉर्म चाहिए। रिफॉर्म ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन वायलेंस कंटीन्यूअस प्रोसेस नहीं हो सकता है।
2: This is an ongoing debate. I'm very glad we managed to get all of these voices on board. I am running a little short of time, so I want to end with a show of hands. The resignation of Dharmendra Pradhan, and this was one thing that everyone was very directly sure of. This is our one takeaway. Who gets credit for it? Raise your hands if you think it is the CJP.
0: It's the people here. We. No,
5: students.
2: Raise your hands if you think it is the students.
5: Students of the country. Yes.
2: Raise your hands if you think it is the opposition parties.
5: No.
2: All right, that's an interesting takeaway. Today, as of today, who is the most popular youth leader according to you? The CJP.
11: No.
2: Rahul Gandhi.
11: Of course not.
2: Narendra Modi.
11: No.
2: Yes. But that seems strange. All of you thought there is no accountability from him.
0: Oh, ma'am.
12: Ma'am, famous होना मतलब accountable होना नहीं होता है ना.
13: Mr. Modi came and said, "Hello, friends."
12: Ma'am, last point.
2: Okay. So I think this, if there is one thing it shows over here, there is a little bit of confusion. It is a generation in flux that is still trying to make up its mind. But has this system been shaken up? Without a doubt, yes. Are we now going to see a huge change in the way in which politics is practiced? Perhaps yes. The direction in which it is going to be decided not by the people here alone, but most importantly the people sitting here. And for that, give yourself a huge round of applause. Thank you very much for joining us on this show, because when it is the people's sansad, the buck stops here. Thanks for watching.

0: Renatu Sataranga,
1: jo hona hai,
0: wo to hona hi hai. Rangile tu sada muskura, sada sada sada muskura. Rang rang rang rang rang rang rang gine re de. Kaise bhi ho din, rang bana rahe.
2: Bojo paints, rang bana rahe.
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी. एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस. फॉर द एलीट.
4: वी आर ओवर जिमी.
5: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
6: How far we have come, and we fix our eyes on the ascent that remains.
7: Finance Minister Nirmala Sitharaman, for your effort and for everything that you're doing for this country. Thank you very much.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आग और मसाला।

0: Renatu Sataranga jo hona hai wo to hona hi hai rangile tu sada muskura sada sada sada muskura rang rang rang rang rang rangine rang rangine re de kaise bhi ho din rang bana rahe
1: bojhe paint rang bana rahe
2: jante hain मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी एलीट मैट्रिमनी इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
4: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
5: We are over, Jimmy.
2: Hey, life में scratches तो आएंगे गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा आप अपना देख लो
6: इन व्हाट यू विल सी इज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल टॉक्स आई हैव एवर हैड
7: And now to a story that is sending waves of inspiration all across India. It has moved a billion hearts to tears with inspiration and has captured the imagination not just of India, but really the entire sporting world. And I'm talking about Haryana's very own Sharmila Dhankar, who has now become India's

0: first ever para-athlete to win a gold medal at the Commonwealth Games. Ram Ram, Sharmila ji, kaise hain aap?
1: Ram Ram sir, bahut acche hain sir.
0: सबसे पहले शर्मिला जी, इंडिया की पहली पैरा एथलीट बनकर कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड जीतने पर कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: वो मोमेंट कैसा था जब आप जीत गए थे, तो उस मोमेंट के बारे में बताइए, जो हमने वीडियो में देखा है, आपके शब्दों में बताइए कि कैसा था वो मोमेंट।
1: सर बहुत अच्छा रहा है, जीतने के बाद बहुत खुशी हुई, हमारे देश के लिए मेडल लेके आए, खुशी का तो अंदाजा ही नहीं था।
0: मेडल जीतने के बाद सबसे पहले ख्याल किसका आया आपको?
1: मेरी माँ का आया सर।
0: क्यों शर्मिला जी, बताइए क्यों माँ का ख्याल क्यों आया पहले?
1: सर क्योंकि मेरी माँ ब्लाइंड भी है, परेशान भी रही है माँ की जिंदगी भी, तो माँ ने मेरी हेल्प भी बहुत अच्छी की है, तो माँ की परेशानी तो मेरी परेशानी, इसलिए माँ का ख्याल आया।
0: क्या कभी लगा था शर्मिला जी की जिंदगी आपको यहाँ तक ले आएगी?
1: नहीं सर, कभी सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा।
0: लेकिन आपने आपने पहले कहा है कि आपकी जो लड़ाई है इस पॉइंट पर आने के लिए बहुत सालों से चल रही है। आपने अपनी जिंदगी के बहुत मुश्किल दौर देखे हैं शर्मिला जी, हमने पढ़े हैं आपके पहले इंटरव्यूज, आपकी ट्रेनिंग के बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में, सबसे बड़ा मोड़ कौन सा था आपके लिए?
1: बहुत परेशानी आई है सर, सबसे ज्यादा तो यही होता है कि माइंड डिस्टर्ब ना हो, बस मोड़ तो बड़े बड़े ही है सारे मेरी लाइफ के।
0: आपने अपनी शादी में बहुत अत्याचार और दर्द देखा है शर्मिला जी, उसके बारे में भी हमको पता चला है, फिर भी आप टूटने के बजाय और मजबूत बनकर निकली। बहुत सी महिलाएं जो आज भी अब्यूसिव मैरिजेस में हैं, वो आपकी कहानी देखकर देख रही होंगी, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी?
1: सर यही कहना चाहती हूँ, परिस्थिति कैसे भी हो घबराना नहीं चाहिए, परिस्थितियों से लड़ना सीखो और आगे बढ़ो, इतना एक दिन कामयाबी जरूर हासिल होगी कौन सी भी फील्ड हो।
0: जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था शर्मिला जी, तब हिम्मत कहाँ से आई आपको? हमने देखा है, डिटेल में देखा है कि आपने क्या सहा था उन सालों में, तो हिम्मत कहाँ से आई आपको?
1: सर लाइफ तो खत्म के बराबर ही थी, बस आपको नब्दा ना की अपनी माँ की तरफ देख जाती थी, माँ को देख देख के हिम्मत बनाती थी मैं कि मैं अगर हमारे साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए तो मेरी माँ का जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो ब्लाइंड है, देख वैसे नहीं पाती, दुख नहीं झेल पाती, अपनी माँ को देख देख के हिम्मत बनी।
0: 34 साल की उम्र में ट्रेनिंग शुरू किया था आपने, लोगों ने तब क्या कहा था जब आपने ट्रेनिंग शुरू की थी, लोगों ने क्या कहा था आपको?
1: लोग तो सब तरह के कहने वाले होते हैं, अच्छे भी होते हैं, टांग खींचने वाले भी होते हैं, लोगों ने तो ये भी कहा था अरे फिटी होगी तेरा जिंदगी मेडल नहीं आएगा, ऐसे कैसे मेडल आएगा, इतनी बड़ी ऐसी हो गई नहीं होगी छोड़ देगी। मैंने बोला था कि अभी नहीं छोड़ दूंगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है और मैं मेडल ला के दिखा।
0: और आज जो लोग शर्मिला जी, लोग जो हार मान चुके हैं, पैरा एथलीट्स या नॉर्मल एथलीट्स, और लोग आपकी कहानी सुनकर देख के प्रेरित हुए होंगे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी जो लोग हार मान चुके हैं जिंदगी में?
1: लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि हार तो मानो ही मत, आगे बढ़ो, और कोई आगे जो बढ़ता है उनको आगे बढ़ाने की सोचना चाहिए, ना कि उसकी टांग खींचने की सोचो। हर हर इंसान में आगे बढ़ने का हौसला होता है, कुछ अपनी परिस्थितियों से घबरा के बैठ जाते हैं, कुछ दुनिया के ताने सुन के बैठ जाते हैं, इन चीजों को भूल के आगे बढ़ो, कामयाबी एक ना एक दिन जरूर आपको लगेगी।
0: ये गोल्ड मेडल सिर्फ आपका है या उन सब का भी जिन्होंने आप पर भरोसा किया शर्मिला जी, जो गोल्ड मेडल आपने पहना है अभी?
1: मेडल तो सर ये हमारे देश का है, हमारा तो बाद में है, पहले हमारे देश का मेडल है और फिर अपनी माँ का है।
0: आखिरी सवाल शर्मिला जी, आज अगर वो पुरानी शर्मिला आपके सामने खड़ी हो तो आप उसे क्या कहेंगी?
1: मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मेहनत करो, आगे बढ़ो, हमें तो पता भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि हम कभी फ्लाइट में बैठेंगे, आज देखो हम कॉमनवेल्थ के मेडल लेके बैठेंगे।
0: शर्मिला जी, मैं आपको फिर से दिल से बधाई देता हूँ। पूरा भारत आपकी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपका इंतज़ार है भारत लौटने में, और हम आपसे फिर से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू शर्मिला जी।
1: थैंक यू।

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा आकर मसाला।

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमार्क, द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
5: सरसों।
6: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा,
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस। एलीट,
11: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम ही हो भारत का स्वाभिमान।
12: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े। vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
13: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
14: वी आर ओवर जिमी।
15: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
16: व्हेन अदर्स आर वार्मिंग अप, आई एम रेयरिंग टू गो। द स्टोरीज दैट मैटर, the stories that shape your life.
17: Hello and welcome to Watch Prime 5 with Rishi Sehgal on Saturday.
16: The show that sets the prime time agenda.
17: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
16: Join me, Rishi Sehgal, on

0: Water Management Authority directs Karnataka to release 3,500 cusecs of water per day to Tamil Nadu for 15 days. Chief Ministers Vijay of Tamil Nadu and Karnataka's Chief Minister DK has to meet on Sunday. Karnataka Chief Minister meet. India hockey team's blue jersey changed to saffron. Former captain slams saffron jersey. Opposition mounts attack. Asks if BJP will now plant saffron trees or not. National team defends the move. Prime Minister Modi chairs high-level meeting to review the West Asia crisis impact on India's energy security. Prime Minister says efforts must be made to safeguard citizens and diaspora. Well, there's been a massive uproar which has erupted over the profane, vulgar and Gen Z language used by student protesters at Jantar Mantar, as of course during the CJP protest. The core of the outrage stems from viral social media reels showing young demonstrators using slogans, memes and expletives against Prime Minister Modi and also uniformed security personnel. The Gen Z demonstrators utilized raw, unhinged social media memes and placards and slogans carrying profane elements to mock the leaders.
1: Of course, if there's any language that was used which is derogatory in nature, then the person concerned is free to pursue civil defamation and criminal defamation against the person. However, the use of criminal machinery to go against protesters, it is highly condemnable, and no one should be punished in for any objectionable language per se. I'm not saying that the language is right. The language may be wrong. It may be objectionable to someone, but it is no reason to invoke the criminal machinery against such people. It sends a chilling effect. I don't think this is acceptable to anybody, especially to the younger generation.
0: Well, a social media influencer has now landed herself in the middle of a social media storm after video mocking RAF personnel spread rapidly online. The clip, which many users criticized as disrespectful towards the uniformed officers, triggered widespread outrage. And now, the influencer has uploaded an apology in the clip, which was shot during the CJP protests. She used derogatory words against the police personnel, and according to her, a few days ago, she uploaded an apology as well, attempting to explain her side of the story. In one of the clips, she claimed that meme pages are now sharing her videos because they are paid. She also says that she took out the video an hour after she uploaded, and she has now appealed to people to stop abusing and threatening her. And joining me live, before I speak to Shraddha, whom we are talking about, take a listen to her apology which she uploaded.
2: मैंने आर्मी वालों के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि नीला टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए, जो कि आई नो बहुत गलत है. बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर ये करने आई हूँ कि मैंने उसको एक घंटे बाद डिलीट कर दिया था. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आर्मी वालों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और मैं ये किसी के दबाव में आके या किसी का कमेंट पढ़ के या मुझे किसी ने बोला है इसलिए मैं आई हूँ, नहीं. मुझे खुद से एहसास हुआ है इसलिए मैंने ये सोचा भी नहीं था ये जितना ज़्यादा सर्कुलेट होगा. बट आफ्टर एक घंटे बाद जब मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया था, ये 4-5 दिन पहले की बात है, तो मीम पेज वालों ने उस वीडियो को डाउनलोड करके उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया.
0: And joining me live now is Shraddha. You just heard her apology. Shraddha, thank you हमारे साथ जुड़ने के लिए. पहले आप वो रील अभी चल रहा है टीवी स्क्रीन्स में व्यूअर्स के लिए, आप क्या सोच रहे थे जब आपने वो रील बनाया? क्या आपको जेन ज़ी लैंग्वेज में फोमो हो रहा था कि आपके सारे बाकी दोस्त रील बना रहे थे तभी?
3: No.
0: बनाया आप?
3: No,
0: क्या
3: no,
0: सोच
3: no.
0: रहे थे
3: एक्चुअली मैम? हुआ ये था कि मैंने जस्ट ऐसे देखा कि वो नीला कलर का ड्रेस पहने हुए हैं और मैंने रेड पहना हुआ है, तो बस एक हार्पिक का मेरे दिमाग में एडवर्टाइजमेंट आया और मैंने रील बना लिया था. मैंने ऐसे कुछ उनको मॉक करने के लिए, उनको मतलब कुछ ऐसे मैंने उनके गलत के लिए नहीं बनाया था, मैंने जस्ट बनाया. और उसके बाद जब मैं घर आई, उसको अपलोड की, तो मुझे लगा कि मैंने गलत किया है, मुझे डिलीट कर देना चाहिए, तो मैम मैंने वो डिलीट कर दिया था. बट लोगों ने मीम पेज वालों ने उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट किया और उन्होंने उस पे लिखा कि इन्होंने आर्मी को गाली दी है, इन्होंने बहुत गंदे गंदे वर्ड्स बोले हैं, ये वो. जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मैंने कोई गाली नहीं दी है. और फर्स्ट ऑफ ऑल ये आर्मी नहीं थे, ये आरपीएफ
0: आरएएफ पर्सनल
3: आरएएफ वाले थे.
0: एक ही ग्रुप होता है सबका.
3: मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, बट लोगों ने मुझे एकदम टारगेट कर लिया. और उसके बाद मैंने देखा कि सेम

सेम लैंग्वेज में वो मेरे हर एक कमेंट पे सेम सेम टाइप के कमेंट्स कर रहे हैं, और लोग मेरे को अभी रेप थ्रेट्स और मारने की धमकी सब कुछ दे रहे हैं, और लोग यहाँ पे मुझे ढूंढ भी रहे हैं कि उसका

0: जी वीडियो कोई प्रेशर में आके डाला कि आपको थ्रेट्स मिल रहे थे तब आपने डाला, आपने अपॉलॉजी वीडियो क्यों डाला?
1: मैम वो मैंने इसलिए डाला क्योंकि लोगों को लगा कि मैंने ये मजे में बना के और मैं खुश हूँ, मैं ऐसे लोगों को उनको लोगों को प्रेटेंड हो रहा था, तो मैं लोगों को ये बताने के लिए कि मैंने डाला कि हाँ मैंने गलती की थी, वो मैंने मान लिया और मैंने वीडियो अपलोड की। बट उसको भी लोगों ने टारगेट कर लिया कि भाई ये विक्टिम कार्ड खेल रही है और मतलब बहुत से वोमेन कार्ड खेल रही है, उन्होंने मतलब मेरे को अलग अलग तरीके की टिप्पणी की कि तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने किसी के प्रेशर में नहीं आया था, बस मुझे मुझे बुरा लगा पर्सनली, तो मैं उनसे माफी मांगने के लिए वीडियो अपलोड की थी।
0: अच्छा, आपसे ये भी पूछना है कि आपके जैसे बहुत सारे जेंजी लोग सीजीपी प्रोटेस्ट का हिस्सा थे, तो वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज हो रही थी, मीम्स, ये जो रील्स चल रहे थे, वो क्या सही थे कि गलत? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर मीम्स बने हैं, पुलिस पर्सनल, आरएएफ, सीआरपीएफ पर्सनल के ऊपर भी बहुत सारे जोक्स और रील्स बने हैं, क्या वो सही था?
1: मैम वो सही नहीं था, मैं ये चीज बोलती हूँ, ये सही नहीं था, जो जो मैंने भी किया वो भी सही नहीं था। बट मुझे लगता है कि लोगों ने थोड़ा जब पुलिस के थ्रू और आरएएफ के थ्रू अटैक किया गया स्टूडेंट पे, तो उनके ऊपर गुस्सा हो गया, क्योंकि मैंने वहाँ पे खुद रहे, मैं 19 से वहाँ मैं डेली जाती थी प्रोटेस्ट में, और मैंने देखा कि लोगों के अंदर वो गुस्सा भराया था, तो लोगों ने उसको फिर गलत तरीके से थोड़ा बहुत कर दिया था, जो कि बहुत गलत है मुझे ये लगता है।
0: जी, तो आपको लगता है कि जो सारे जेंजी थे, ठीक है, उनमें गुस्सा था, एजुकेशन रिफॉर्म्स क्या नए चाहिए थे उन्हें, बट जिस तरीके से उनने स्लोगन्स, जिस तरीके के रील्स अब बाहर आ रहे हैं, क्या वो सही था? क्या लगता है कि जेंजी ने अब हद पार कर दी, दे क्रॉस द रेड लाइन?
1: आई थिंक यस मैम, थोड़े बहुत जो लोग थे वो ज्यादा ही मतलब कि ओवर बोल गए, इतना भी नहीं बोलना चाहिए था, जो कि गलत है, क्योंकि पहले तो थोड़ी सी स्टार्टिंग हुई थी बट लोगों ने एक दूसरे को देख देख के वो और ज्यादा अच्छे करने की कि हम ये इन्होंने ये बनाया है तो हम उसको और अच्छा बनाएंगे और हम लोगों के आंखों के सामने आएंगे, तो थोड़ा सा उन्होंने ज्यादा कर दिया।
0: मतलब बहुत सारे जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स थे वो रील्स मीम्स इसलिए भी बना रहे थे क्योंकि उनको वायरल होना था इंस्टाग्राम में, या क्योंकि वो कॉज के लिए बहुत स्ट्रांगली फील करते थे? आपको क्या लगता है, क्योंकि आप प्रोटेस्ट में थे, आपके दोस्त भी होंगे, आपके एज के लोग भी प्रोटेस्ट में थे, आपको क्या लगता है?
1: मैम इसका दो साइड था, एक साइड तो ऐसा था कि न्यूज वाले उतना कवर नहीं कर पा रहे थे जो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर लोग कवर कर रहे थे, इंस्टाग्राम के थ्रू लोगों को पता चल रहा था, वो
0: लोगों कवर तक कर जो रहे थे, बस बताइए,
1: जो मेन बात थी वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही थी, जो कि इन्फ्लुएंसर लोगों ने पहुंचाया, और कई लोग ऐसे थे जो कि हाँ जब उन्होंने देखा व्यूज आ रहे हैं तो चलो वीडियो बनाते हैं और चलते हैं, तो आधे फिर धीरे धीरे वो ऐसा हो गया कि जो हमें मेन मुद्दा दिखाना था उससे थोड़ा लोगों डिस्ट्रैक्ट हो गया।
0: ठीक है श्रद्धा, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस हियर ऑन एनडीटीवी। All right, moving on. Zero FIR has now been registered against Ruchika Singh in connection with her alleged remarks against Prime Minister Modi during a protest at Delhi's Jantar Mantar on July 23rd. The complaint filed by Supreme Court advocate Smriti Singh has been transferred to Noida, where police have now launched an investigation. Officers are now examining video footage, recording witness statements and scrutinizing social media activity. No arrest has been made so far. According to the complaint, Ruchika is accused of making objectionable remarks against Prime Minister Modi. The complainant alleges that the comments lowered the dignity of a constitutional office and were intended to promote enmity and disturb public peace. These are allegations made in the complaint and the matter is currently under police investigation. No court has determined guilt at this stage. Meanwhile, one video and life changed overnight. So we, of course, spoke about the various Gen Z at the protest site, but right now we are talking about this person. His name is Abhinav Bisht. If you're on Instagram, you must have seen him on your feeds. Delhi content creator Abhinav Bisht went from shooting the NEET UG protest at Jantar Mantar to becoming one of social media's biggest viral sensations. Millions of views, a brief account suspension, and an unexpected reward later. Here's the story behind the creator everyone is talking about.
2: One phone,

0: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
4: We are over, Jimmy.
5: Hey, life में scratches तो आएंगे. गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
8: अरे मेरे राजा,
9: सबका राजा आकर मसाला।
10: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
11: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। अभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
12: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
13: Hello and welcome to watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, and Sandy Howard.
12: The show that sets the prime time agenda.
13: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
12: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
14: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
15: Just few inches away is POK.
14: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
16: Launch control 0 to 100.

0: And we have some breaking news on top of the show. Prime Minister Modi has dropped another Instagram video congratulating over paper leak bill, which has now been passed in Rajya Sabha today. It was passed in Lok Sabha yesterday by a voice vote. Prime Minister says bill makes exam system more robust and more strong. And this is yet Prime Minister Narendra Modi's another Instagram style video congratulating everyone on the anti-paper leak bill, which has now become a law. Take a listen.
1: साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोगी आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम मान्य सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: And well, my colleague Vasudha Venugopal is now joining me on the show. Vasudha, this is yet another late night selfie style video by Prime Minister Modi. Another attempt to connect with the youth, of course, on one hand. On the other, a huge win with the anti-paper leak bill being passed.

0: वी आर ओवर जिमी।
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: right from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
2: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद, तभी तो वंदे भारतम

एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK।
0: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। फायर

140 करोड़ की आबादी उसको गाती भी है, उसका सम्मान भी करती है राष्ट्रगान में, तो आप वो हमारे लिए काफी है। उसका अगर कोई गलत करे तो उसको आप सजा दो, हम मानते हैं इसके हित में है, लेकिन ऐसे

0: बनकर सचमुच इशू पर बात करेंगे या वही करेंगे जो यहाँ किया।
1: वन वेरी फेमस एक्टर हैज सेड प्लीज डोंट रिस्पेक्ट बुड्ढे जस्ट बिकॉज दे आर सीनियर सिटीजन, सम लुक लाइक दे हैव डेवलप्ड भक्ति डिमेंशिया, इट मेक्स देम डिल्यूजनल दैट दे कैन टेक ऑन द यंग व्हेन दे कांट इवन काटो अ नाइट विदाउट फाइव ट्रिप्स टू द बाथरूम। डोंट ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट देम बिकॉज ऑफ देयर एज, दे वर जस्ट बॉर्न बिफोर यू, लेट देम अर्न इट। Leave some food on a newspaper at the corner of the road at a safe distance. Don't engage. So we are already at a point where we are saying that buddhe don't deserve respect. And who will decide who is this buddhe who doesn't deserve respect? And is it a free-for-all now? It's all accepted.
2: Ma'am, I think as being a constitutional state, hum sabhi like beyond the politics of BJP and Congress, sir, as a Gen Z and as a student, I would say ki जो भी राइट्स हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन दिए हैं एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर सुप्रीम कोर्ट, एवरीथिंग हैज लिमिटेशंस एंड वो लिमिटेशन होनी चाहिए। लेकिन लिमिटेशन कौन सी होनी चाहिए? लिमिटेशन होनी चाहिए हमारे खुद के मॉरल ग्राउंड्स पे, यानी जो हम किसी को बोल रहे हैं क्या वो खुद हम सुन पाएंगे अपने ऊपर। दूसरी ओर मैं इस प्रोटेस्ट का पार्ट रहा 23 जुलाई को, परंतु इस प्रोटेस्ट का पार्ट रहते हुए कुछ ऐसे स्लोगन्स मिले हैं घोड़े पर ना जाने कौन कौन से ऐसे ऐसे स्लैंग और ऐसे ऐसी गालियां दी गई है जिसको कि हम सुनना नहीं चाहेंगे, जो कि अगर किसी इंस्टीट्यूट में दी जाए तो हम उसको सीधा बोलेंगे कि ये इंस्टीट्यूट बिल्कुल अभद्र है, लेकिन वहां पर छात्र है। लेकिन इसके कारण क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं डिफाइन है कि छात्र क्या होते हैं, छात्र का कोई डेफिनेशन नहीं है। तो कोई भी छात्र बनकर छात्र के प्रोटेस्ट में शामिल होता है, कुछ भी अभद्रता का व्यवहार करता है, अंततः उसको बोला जाता है कि हम छात्रों को सपोर्ट कर रहे हैं।
3: There's a very famous statement जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने कही है, और वो ये है कि एक कंट्री जो है वो स्ट्रिक्ट लॉज पे नहीं चल सकता, उसको एक मॉरल बैकिंग, मोरालिटी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। बट एट द सेम टाइम वॉट इज मोरालिटी नाउ, एंड इट इज फ्रॉम बोथ द साइड, बी फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोटेस्टर्स और बी फ्रॉम द साइड ऑफ द पुलिस। द क्वेश्चन इज कि लैंग्वेज, जब लैंग्वेज की हम बात करें तो लैंग्वेज इज नॉट जस्ट टर्मिनोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो अबाउट द ब्रुटैलिटी जो हम यूज कर रहे हैं। सो बोथ द थिंग्स कम इन टू प्ले and there will be a chain of reactions। अगर आज मैं किसी के बारे में, for example, I support a government और मैं उसको कुछ कहती हूँ, हाँ चार लोग मुझे आकर के और कहेंगे आप कैसे अपने anger को channelize करो, ये बहुत ज़्यादा important है।
1: Also, very quickly, this gentleman here, then I will go back to Dr. Ranganathan and Anish
4: over. Yes. Hi, I'm Anurag Dwivedi. I'm a MBA finance student. So respect is like a communication. It's a two-way thing. आप दोगे आप पाओगे। और ये जो अभी कमेंट आया था कि बुड्ढों ने कुछ ऐसा मतलब बोल दिया, तो इस देश के बुड्ढे वैसे भी जेन जी इसको कॉकरोच बोल रहे हैं और वो पछता रहे हैं। सो लेट्स बी प्रूडेंट अबाउट दैट, दैट रेस्पेक्ट शैल बी अ टू वे थिंग, नॉट अ वन।
3: I mean, who said it? The Chief Justice.
5: कॉकरोच नहीं बोला है।
3: So the Chief Justice of India used that word. But if why should people walking on the road be called buddhe who don't deserve respect? What did those old men do to be called buddhe who don't deserve respect?
4: No, I said that respect is a two-way thing. If a genry is respecting you, it's the duty of the elders to respect us back. But the elders are not respecting us, then how that you expect that we should?
1: Okay, that young lady there.
6: Ma'am, additionally, I would like to, I think yahan pe jitne log baithe, everybody would agree with the fact, as sir also, you know, lashed out about that, ki we don't take accountability for every person's individual opinions. Exactly that, if I talk about it, ki agar protest mein, if I went to the protest and I did not say anything that was offensive or heinous, so there are there might be, you know, antisocial elements in the protest, but not everybody in the protest is doing the same thing. So why is the entire generation responsible for what is happening over there? Gali di gayi hai to har insaan ne to nahi di hai. Additionally, agar yes sir,
7: I no sorry go ahead.
1: Yeah, go on.
7: I want to say one very simple thing because I agree with you. Please see इसमें से कितने स्लोगन्स अब्यूसिव्स थे और कितने स्लोगन वास्तविक हुई हैं थे।
3: Also,
7: like, also, let's be honest, yeah, the abusive slogans were a small fraction of the slogans raised. There was no abusive slogan raised from the stage. What Gen Z was doing was having fun. They're doing like Subway Surfer reels and making those reels and mocking the government, and those go more viral. Any smart person with a camera knows कि अगर आप गाली दोगे तो आपकी रील की रीच लिमिट हो जाएगी। तो वो गाली देते नहीं है, आप ढूंढ ढूंढ के उनको ढूंढ रहे हो कि अच्छा चलो गाली दे दी हम खुश हो गए।
8: I have a contradiction to the point I have made. जैसे सर मैंने आपको बोला कि हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है, बट बींग एल्डर पीपल, ना आई एम नॉट ड्रॉइंग द एज ब्रैकेट है, बट बींग एल्डर पीपल, डोंट यू थिंक अगर किसी ने वहां पे गाली दी तो आपको उसका रिस्पॉन्स एक अच्छी तरह से करना चाहिए था। इफ सम पर्सन इन एनी एक्शन गेव अब्यूज देयर, तो आपको नहीं लगता आपको उनको समझाना चाहिए था इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मॉब टू देयर प्लेसेस और सेंडिंग देम थ्रेट्स? दैट इज माई कॉन्ट्रडिक्शन। आई इन स्टार्टिंग सेड दैट आई एम making a generalized statement that abuse is wrong from both the sides.
1: Just a question, वही तो कह रहे हैं ना, नाउ इट इज बीइंग सेड दैट डोंट चेक अस, दिस इज द वे वी विल स्पीक फ्रॉम हियर ऑन.
8: इट्स नॉट अबाउट डोंट चेक अस, आई एम आस्किंग द क्वेश्चन टू सर दैट इफ वी आर मेकिंग द बाउंड्री देन डोंट यू थिंक दैट इफ जेन जी डिड समथिंग रॉन्ग तो आपको उनको अच्छे समझाना चाहिए था. इफ यू आर कमिंग ऑन द सेम ग्राउंड एज अस, पहला आप हमको बोल रहे हैं कि आपने गाली दी, दैट इज रॉन्ग, आई एम ऑल्सो एक्सेप्टिंग इट, बट आपको नहीं लगता आपको
1: डोंट फाइल एफआईआरस. एग्जैक्टली, दे आर अब्यूजिंग, डोंट कम आफ्टर देम विद
8: टेल अस एंड व्हाट वी डिड रॉन्ग.
7: अकाउंटेबिलिटी, नो नो, वन सेकंड, आई जस्ट हैव टू से वन थिंग, अकाउंटेबिलिटी हैज टू बिगिन.
0: लैंग्वेज पर नहीं गई है.
7: नो, शुड अकाउंटेबिलिटी,
1: नहीं नहीं, अब एफआईआर हुई है
7: सर. नो नो,
1: नाउ वी अब्यूज आर लिटरल
0: थ्रेट हैज टू बी टेकन. समझाने की बात, थोड़ा समझना होगा कि जो भी ये बात कर रहा है, हम सबके घर में जेन जी बच्चे हैं भाई, उनकी बात हम सुनते भी हैं, उनको सुनाते भी हैं, उनसे समझते भी हैं, लेकिन गालियां सुनना सुनाना ये तो लैंग्वेज नहीं
7: सर. लेकिन लाठी चार्ज
1: हो जाती है. नो, पीपल गेट देयर बैक अप व्हेन देयर आर पीपल लाइक कंगना रनौत. यू नो, आई कोटेड द एग्जांपल ऑफ ऋचा चड्ढा, बट देन ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम यू हैव कंगना रनौत हु इज सेइंग दिस इज जनरेशन गटर, हाउ डज दिस हेल्प. जो दो तीन बच्चे हैं वो आप और भी
0: किसी को भी आप पूरी जनरेशन को एक जिसको कहते हैं ना कि ब्लैंकेट आपने बोल दिया कि ये गटर हो गई, ये बिल्कुल ठीक नहीं है. लेकिन इसका दूसरा पहलू है, अगर कंगना ने मतलब मैं उसको नहीं कह सकता क्योंकि टीवी चैनल एंकर से बातचीत हुई, लेकिन अगर वही बात कही कि आप जो सुनना नहीं चाहते हो, आप कपड़े उतारने की आजादी, गाली देने की आजादी, तो उसकी रेड लाइन कहां ड्रॉ होगी? फिर तो दोनों तरफ होगा, एक तरफ नहीं हो सकता है ना.
7: नो नो, वन सेकेंड, I'm again coming to who has disproportionate power. Where does accountability set in? All of this today is being put in as if the students are on an equal footing with the government. Let me ask you, Padmaja, when those 20 students committed suicide in 2024, I'm not asking Dharmendra Pradhan, the then NTA chief is today principal secretary Chhattisgarh, where was accountability set? Is 2 years not enough to set accountability? This guy's 5,000 rupees apartment, he must be staying with 5 other people. His life is a struggle. His life is a struggle because your kids go abroad to study. You can tell them that your life is a struggle. Which Neta's kids are struggling like this? This is not right. They are the future of our country. They are struggling. They have suffered. And it is the duty of the government to be empathetic. You can't come and use disproportionate force and say, oh, but bro, we are equal. No, we are not equal. The power rests with you.
1: Okay, Dr.
7: I have to just say one more thing here, right? Let's take accountability from those abusing PM Modi. But when will we take accountability from Sachin Sharma who ordered the lathi charge and the tear gas? When will we take accountability from the police officer who ordered pellet guns to be used in the national capital?
1: It should be done now. No. Which is why the Supreme Court
7: has it not been done now?
1: Because
7: the government should resign then.
0: Is the Supreme Court running
7: the point of the government?
0: The government
7: running the
0: government.
7: How can you not take action?
1: Okay, just to be factually, correct, accountability should be sought, and which is why there are multiple pleas before the Supreme Court, which is now asking.
7: Police officers
1: have been suspended. It doesn't help to shout me down. Which is why the Supreme Court is saying there should be an independent investigation, which should see whether there was violence on the part of the police and whether there was violence on part of the protesters.
7: Until then,
1: both are going to be investigated.
7: Until then, the government should have the grace to suspend the officers who took this action.
1: Okay. How can people have trust, Dr. Ranganathan, when there is no accountability? And now we've moved beyond the language question also, right? Now we have come to that we had no option to pick up the bricks because nobody was listening to us. And now you are coming after us and turning us into criminals, Dr. Ranganathan.
5: Look, by all means, the people who gathered there, Padmaja, alongside you are brilliant, as you started by saying. But can I say, I'm so disappointed by some of the statements coming out. एक कह रहा है जब तक आप एक कमरे में ना रहो 10 लोगों के साथ आपको सफरिंग नहीं पता चलेगी. ये लॉजिक ये वही है कि जब तक मैं खेत में जाता रहूं जब तक मेरे पास घर पे टॉयलेट ना हो मुझे टॉयलेट की इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगी. जब तक मेरे सर पे एप्पल ना गिरे मुझे पता नहीं चलेगा कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज है. यही चीज पॉलिटिशियंस यूज करते हैं. एंड एज फार एज अनीश गवांडे सेइंग ही इज नॉर्मलाइजिंग इलीगैलिटी, the jantar mantar protest, there was no lathi charge there because that was a legally sanctioned protest. Anish, do not be a riot monger, please. You are going to be a politician. When the march happened, the march was illegal and there were 3 stages of police action. The first action was section 144 was imposed. The second was tear gas was happening. The third was lathi charge. And the fourth was when less lethal force. Aap wahan pe the kya? Were you the police officer sanctioning it? Were you in charge of sanctioning
1: Anish.
5: It? You were one in the mob. You were not the
7: police. No, I was in the mob.
5: Problem it was to take care of the situation. Don't talk like somebody who doesn't believe in rule of law or logic or science. I don't know which subjects you study.
7: I have been to multiple protests in my life. This was the first time when I was in the mob And I had a lathi charge being directed towards me and tear gas being lobbed towards me. Sir, you have to listen now. Without any advance warning. The police is supposed to issue 3 warnings before tear gas is fired. The police did not do so.
9: Who said lathi charges, sir?
7: In lathi charges, the lathi is not supposed to go above the knee. The lathi is supposed to immobilize you. It is not supposed to go all the way up to people's necks. So clearly, this is a failure of the Delhi police's training. This is the failure of any kind of de-escalationary procedure on the Delhi police's part.
9: Says an IPS officer, Anish Gawande.
7: Sir, please see Meera Borwankar. Meera Borwankar, one of the most senior IPS officers in this country, has come out and said that what the Delhi police did was unacceptable.
9: You marched illegally, yes or no?
7: No, this was a failure of policing, sir.
1: Okay, young man.
9: Come up with facts or get a fact checker out, because I can't counter each one of these lies.
10: With due respect, sir, पहली बात तो ये है कि चिल्लाने से सत्य बदलने वाला नहीं है, पहली चीज. दूसरी बात जो अनिश सर ने कही कि वहां पर आप कैसे जो प्रोटेस्ट में देखे थे कैसी लैंग्वेजेस थी, अब्यूसिव लैंग्वेज, उसको आप साइड कर लीजिए. बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट भी थे, वहां पर स्लोगन भी थे कि कुछ पुछ प्लीज रिजाइन कर दो ना, इसको कोई नहीं बोल रहा है, कितने प्यार से हम बोल रहे थे, ठीक है. दूसरी बात रही बात अकाउंटेबिलिटी की, सर, तो अकाउंटेबिलिटी इस देश में,
1: सो लेट्स जस्ट कम बैक टू द मेन इशू. वी आर टॉकिंग अबाउट द वायलेंस.
10: इट इज द मेन इशू. अकाउंटेबिलिटी इज द मेन इशू.
1: मेन इशू इज द वायलेंस. इन द वायलेंस, yes, there were many people saying kuchu puchu,
10: yes,
1: but there were also many people who were, one, with a criminal background, two, on camera they are engaging in violence,
10: and there are few people jo non uniform hokar ke bachcho ko maar rahe the, wo log kaun the.
1: Three, remember that the very act of marching towards parliament was an act of breaking the law, so who is accountable for that?
10: Accountable,
1: the law was broken.
10: उस वहां पर पुलिस थी, पुलिस जो है सीधे लाठी चार्ज कर रही है, उसके लिए वो अकाउंटेबल नहीं हो रही है, और कोई भी कार्य हो रहा है उसके लिए कोई अकाउंटेबल नहीं हो रहा है. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी हमारी ओर से जारी
9: है. वाज द लॉ ब्रोकन और नॉट?
10: सर, पहले जो हमारी जो लॉ की बात आप
9: कर रहे हैं, वाज द लॉ ब्रोकन?
10: सर, लॉ किसके लिए बना हुआ है? लॉ हमारे लिए बना हुआ है ना.
9: आस्क दिस गाय,
10: सर,
9: वाज द लॉ ब्रोकन, यस और नो?
10: लॉ को मतलब फॉलो करना केवल हमारा ही दायित्व है, या फिर वो स्टेट की थोड़ा उसके बारे में कोई जवाबदेहिता नहीं मांगेंगे? सर, दूसरी बात तो ये है कि जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपद धर्म की, हम, सर, ये आपद धर्म आ गया था हमारे ऊपर, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे सामने दोस्तों को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, सर फट गया है. सर, क्या जो इस्तीफा दिया गया उससे उसका मरहम पट्टी हो जाएगा? उससे मरहम पट्टी नहीं होने वाला. एक और बात है, छोटी सी बात यहाँ पे,
1: अकाउंटेबिलिटी
10: इसका मतलब कि पुलिस ही फेल की है, स्टेट ही फेल की है वहाँ पर.
1: दोस्त, लॉ मेंटेन करने के लिए ही तो पहले बैरिकेड तोड़ दी,
10: बिना किसी,
1: फिर आप और आगे बढ़े,
10: पेलेट गन से
1: टियर गैस चली,
10: वार्निंग,
1: फिर आप और आगे बढ़े, यू केम क्लोज टू पार्लियामेंट,
10: जो है पेलेट गन चला रहे हो बिना किसी वार्निंग के. एक चीज मैम, यहाँ अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही थी, छोटी सी बात है, डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की. यहाँ पर हमारे पूर्व मंत्री जी ने इस्तीफा दिया और क्या कहा कि हम अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं, हम जो है इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे देश के यूथ का जो टाइम बर्बाद हो रहा है, हमारे देश के यूथ जो एंटी नेशनल, हमारे देश के यूथ का, सर एक मिनट, छोटी पूरी बात है,
11: कंफ्यूजन हो गया
10: हमें यहाँ पर, जो
11: ये जो मार्च था उससे पहले 20 दिनों तक जंतर मंतर पर पीसफुली वही पुलिस, उनको एक तरह से कहें कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, किसी ने कोई गड़बड़ नहीं की. जिस दिन ये पार्लियामेंट मार्च था, हम सब लोग टीवी पर थे और हमें लग रहा था कि 3 घंटे तक जिस तरह से मॉब पार्लियामेंट के इर्द गिर्द था और जिस तरह से वो सिक्योरिटी लैप्सेस से बिल्कुल वहां पर दिल्ली पुलिस फेल हुई, और हम तो कहते हैं कि उसको पहले मैनेज करना चाहिए था, लेकिन जब आप पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ गए, और मैं फिर कह रहा हूं 3 घंटे 4 घंटे तक कोई लीडरशिप नहीं थी सीजेपी की, कोई बताने वाला नहीं था बच्चे कहां जाएंगे, और उसके बाद जब ये सब हुआ, उसके बाद ये घटना, फिर आप नहीं बता सकते कि पहले मुर्गी या पहले अंडा, पहले किसने क्या किया, पहले पत्थर चले या पहले लाठी चली. और मुझे लगता है कि जब हम ये कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पुलिस बना बच्चे, ये ऐसा नहीं है, इसको समझना पड़ेगा.
1: फर्स्ट गिव योर नेम एंड व्हाट डू यू डू?
12: ओके, सो आई एम अनंजय, आई एम गोइंग टू परस्यूइंग माय बैचलर्स एट आईआईटी मद्रास, एंड आई वांट टू पॉइंट आउट दैट कि लोग बोल रहे हैं कि पुलिस की रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए, आई एक्सेप्ट दैट, बट द पॉइंट इज कि पुलिस जो एरिया जंतर मंतर से लेकर संसद तक का, दैट इज वेरी हाईली प्रोटोकॉल्ड एरिया, वहां पे आप ऐसे रेंडमली टहलने नहीं जा सकते. दैट इज वेरी, मैं मानता हूँ जंतर मंतर की उनके पास परमिशन थी, बट जंतर मंतर से आगे का उन्होंने क्या रिटर्न में गवर्नमेंट से लेटर लिया था या नहीं लिया? एट द सेम टाइम, अगर गवर्नमेंट से लेटर लिया भी था तो पुलिस वालों के ऊपर, मानता हूँ उन्होंने गलत किया, बट एट द सेम टाइम पुलिस वालों के पास ऑर्डर्स थे, मतलब जिन्होंने ऑर्डर के अगेंस्ट किया उनको मैं मान लो उन्हें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. बट अगर उनकी नौकरी है यार, सरकारी नौकरी के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, उनके पास अगर कुछ ऑर्डर्स आए हैं तो दे आर फॉलोइंग देयर ऑर्डर्स, तो जिन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं दे आर सपोज्ड टू अकाउंटेबल.
7: लेट मी टेक हिज पॉइंट फॉरवर्ड. Only narrative we've heard in the news channels, except NDTV, other news channels, is that there were all these goons here. Somebody's a POSCO accused, somebody's a rape accused, somebody's so-and-so criminal, etc. That's the narrative we've heard. It's clearly put out by the government. Now, question one. I agree with what he said, that this is the most sensitive geography in the history of this country. What were the police doing? Were they snoozing?
13: What was the home ministry doing? I'm not asking the honorable home minister. Why did you switch off internet? Because the entire protest was running on an internet. Do you not have common sense? It's basic common sense. Point number two. This is the Delhi that's seen two riots. One bomb blast under the same home ministry. Who will take a

0: accountability. And last thing, when the Honorable Ex-Education Minister resigned and he came to Parliament, I want each one of you to see the garlanding and the hero's welcome he yes. got. Hmm. 20 kids died. 20 kids died. His daughter studies abroad. I'm not comparing it. He got a hero's welcome. If this is accountability, sorry, accountability, wo hona chahiye tha Dharmendra Pradhan ji ka waisa swagat. Aap kya inko murkh samajhte hain, sarkar?
1: लेकिन मुश्किल ये है कि आपने हमें सुना ही नहीं. मैं तो पहले से ही पहले दिन से मैं रिजिग्नेशन मांगने वालों में हूँ. पहले दिन से मैंने कहा कि वो नहीं होना चाहिए. लेकिन एक बात बार बार तहसीन कह रहे हैं कि उनके बच्चे अब्रॉड जाते हैं, उनके बच्चे अब्रॉड जाते हैं. अरे इस मूवमेंट का सबसे बड़ा नेता अभिजीत दीपके अब्रॉड से पढ़ के आ रहा है. थोड़ा तो यार तहसीन सोचा करो. कुछ भी बोल
2: Let me ask a larger question. Is this now a model that we are going to see replicated? And are we now all resigned to the fact that now the pressure group will come from the streets and not from the parliament or the legislative assemblies of India?
3: Good morning, sir. My name is Arpan Kumar Giri and I am from Delhi Vishwavidyalaya. My question is, sir, as you are saying that अचानक से पुलिस आई और लाठी चार्ज कर दी, ऐसा कुछ नहीं ऐसा हुआ है. मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप पूरी क्रोनोलॉजी को समझते हैं तो अभिजीत दीपके एयरपोर्ट पर आते हैं, बुक दिखाते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती है, पुलिस उन्हें पूरा अलाउ करती है. अभिजीत दीपके को लगता है कि उन्हें गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं देगी, 6 जून को उनको परमिशन मिल जाता है. अभिजीत दीपके को लगता है कि ये लॉन्ग टाइम परमिशन के लिए नहीं जाएगी, सॉरी हंगर, तो वो भी मिल जाता है परमिशन. फिर सोनम वांगचुक जी आते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं, उन्हें लगता है कि वो भी एक दो दिन में हटा लिए जाएंगे, उन्हें भी नहीं होता है. जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है कि हमें इनका
0: ऑर्डर नहीं,
3: आई हैव रेड हाईकोर्ट का
0: ऑर्डर,
2: व्हाट्स योर पॉइंट? यस, गो.
3: हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है कि मुझे इनका डेली मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, ये देखने
0: के. नहीं, वो नहीं था, सॉरी, नो, ही इज रॉन्ग.
3: सर, लेट मी कंप्लीट.
0: बोलिए आप. बोलिए
3: कि तो उसके लिए अगर
0: ऑर्डर बोलिए, ऑर्डर बोलिए ना, क्या था?
3: उन्हें मेडिकल रिपोर्ट चाहिए थी.
0: हाँ,
3: ठीक है,
0: हॉस्पिटल ले जाना.
3: चूंकि चूंकि एक मिनट, जो कि पीआईएल फाइल हुई थी, पीआईएल फाइल हुई कि
0: ऑर्डर क्या था?
3: ऑर्डर ये था कि मुझे मेडिकल रिपोर्ट चाहिए.
1: वही था, स्टेट से भी हो सकती थी.
0: वो तो स्टेट से हो सकती थी.
3: मेरा सवाल ये है कि अगर आप अकाउंटेबिलिटी सरकार की मांगते हो, ठीक है, तो आप अकाउंटेबिलिटी उन बच्चों के लिए क्यों नहीं मांग रहे हो? अभिजीत दीपके
0: ने बच्चे नहीं आए मेरे पास, बोलो
3: जो मार खाए, जिन्होंने अनडाउटेडली विकसित भकाने में आगे मोबिलाइज करने के लिए प्रोटेस्ट में. दूसरी बात, पार्लियामेंट कोई पिकनिक प्लेस नहीं है कि आप बिना एनओसी के आ जाते हो घूमने के लिए यहाँ पे, ठीक है. अगर आप स्टूडेंट हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन मानते हो, एक मिनट, आप कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हो, तो आपको ये भी मानना होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज हैं उनके ऑर्डर्स को कम से कम फॉलो कीजिए. कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज ने आपको प्रोटेस्ट करने का पूरा राइट दिया. आपने 25-26 दिन पूरा प्रोटेस्ट किया. आपको जब मार्च करना था पार्लियामेंट, बस उसके लिए आपको एनओसी नहीं मिला और आप उसके लिए आकर वायलेशन कर लेते
2: हैं. इट इज ऑल्सो इनकम्बेंट ऑन द प्रोटेस्टर्स एंड द ऑर्गेनाइजर्स टू फॉलो द लॉ एंड द बेसिक point that Dr. Ranganathan was making, that in marching to parliament beyond Jantar Mantar, the law was broken, Anish.
4: Ma'am, Padmaja, was the march to parliament announced on the 6th of June? Was it announced in the weeks after? Why was the march to parliament necessary? Kyunki ye sarkar sunna bhul gayi hai na. 31 दिन वहां पे दिन रात किसी को बैठना पड़ता है. आप संसद 200-300 मीटर दूर रखते हो, आपको तब तक आवाज सुनाई नहीं देती है, तो आवाज सुनाई देने के लिए किसी को आपके दरवाजे तक पहुंचना पड़ता है.
2: But no, then why march to parliament? No, but I'll tell tomorrow you why. Barge inside this Prime Minister's residence.
4: Tomorrow somebody will barge into your house,
2: Anish.
4: Bigger security threat is marching to the Prime Minister's residence.
2: Dr. Ranganathan.
4: Parliament is the temple of democracy, and that was the march. And Padmaja, let me tell you this. Let me also say this. For many of you, I was part of the Nirbhaya protests. And a lot of us raised our voice against how the Congress government shut down the Nirbhaya protests.
3: Even then,
4: main ek hi second bolunga aapko, tabhi bhi. जब इंडिया गेट पर लाखों लोग आ गए थे, उनको वाटर कैनन से हटाया गया था, पेलेट गन इस्तेमाल करने की बदतमीजी.
3: एक शॉर्ट टाइम, देश
4: में इंडिपेंडेंट इंडिया में किसी देश,
3: सर,
4: इस देश में
3: नहीं. सर, मैं सिर्फ 2 लाइन बोलूंगा, ज्यादा नहीं. आपने कहा कि सरकार सुनना भूल गई थी, तो मैं बता दूं कि ये वही सरकार है जिसने फार्मर्स के लिए 11 बार कॉन्वर्सेशन भी करी थी और उसके बाद हमने फार्मर्स बिल को रिपील करने के लिए, ठीक है.
1: मैं ये कहना चाहता हूँ,
2: डॉक्टर रंगनाथन, यस.
5: Yeah, so, you know, I need to focus on not just the voters, the Gen Z voters, but whom they're going to be voting for in the future. And I hope my good friend Anish doesn't mind, they're going to possibly be voting for him. What he's saying is, ki hamari baat nahi suni, isliye humne law ko toda. ये वही लोग हैं जो दिस इज टेक्स्ट बुक एनआरकी. आर वी लिविंग इन अ डेमोक्रेसी और आर वी लिविंग इन एन एनआरकी? What he is saying is, हमारी बात नहीं सुन रहे इसलिए पार्लियामेंट में बात सुने, इसलिए हमने इलीगली मार्च कर लिया दैट एंटायर एरिया. एंड आई वॉन्ट टू आस्क, देर वॉज अ स्टूडेंट आउट हियर हु मेड द पॉइंट दैट द एंटायर एरिया इज अ सिक्योर जोन. आई एम हैजर्डिंग अ गेस आउट हियर. आई डोंट नो हु दैट स्टूडेंट इज, बट यू टेक द माइक टू हिम. आई एम श्योर ही इज आइदर स्टडिंग साइंस और इंजीनियरिंग. इसमें रैशनल थॉट की जरूरत है, प्लीज आस्क.
2: He's a law student. He's a law student. Why do you have such a low opinion of law students? Yes.
4: He can argue both.
2: So let me ask you this. Okay, just a second. I again want to come back to the question. Are the laws now going to be decided on the streets? Is the Jantar Mantar model now the acceptable model moving forward?
6: First of all, when the previous exam papers leaked, no accountability was held. So, and it is the right of the people to protest. Why are we saying that we should have choices? We can have both. We can go to the courts and we can protest as well. And another, we are not talking.
2: Let me ask you this. Tomorrow you give a competitive exam. Somebody is not happy with you qualifying. If I manage to get 5,000 people, aapka naam kya hai?
7: Yash.
2: Kal ko main kahun, Yash ka admission cancel kar do. Main zyada deserving thi. Main nahi agree karti ki Yash ko admission milna chahiye. Aapka admission rad ho jana chahiye.
4: That's trivializing. No,
2: it's about the pressure group. It's about the pressure group. Look, it's about the pressure group, Tehsin.
4: No, today,
2: the fact is, the fact is,
4: because he got admission. There were people who died.
2: There are many people who have legitimate arguments and causes, but they do not manage to mobilize people. So they are unheard. And unfortunately, that is the precedent that has been set.
8: सवाल करना चाहूंगा. 2014 में बीजेपी की सरकार आती है, 2015 में प्री नीट का पेपर लीक होता है, एंड नाउ वी आर लिविंग इन 2026. 15 से लेके 26 तक कौन सी अकाउंटेबिलिटी की बात की? जब तक हम संसद तक नहीं पहुंचे, कौन सा ऐसा नेता था, प्रधानमंत्री या शिक्षा मंत्री, जिसका कोई भी बयान आया, ट्वीट आया, या किसी ने कुछ भी रिजाइन की बात की? तो जब तक अगर हम संसद पर नहीं जाते हैं, अगर भगत सिंह ने लंदन में जाके उस बम को नहीं फेंका होता, तो किसे पता लगता कि भगत सिंह क्या कर सकता है? तो दिस इज वेयर द रेवोल्यूशन स्टार्ट.
2: विल द सीजेपी प्रोटेस्ट हैपन नेक्स्ट एट कर्नाटका एंड पंजाब? व्हेन इज इट हैपनिंग? बिकॉज़ Congress is protesting. I have to say, the Congress is protesting in Parliament, and yesterday Charanjit Singh Channi protested in Punjab also. Yeah. When is the CJP planning to protest in Punjab?
9: I certainly hope that they'll protest in Punjab soon. But what I will say is that what has unfolded over the last few weeks should worry the government. If I were the Home Minister and the Prime Minister, I would call for an all-party meeting, because there is a fundamental disconnect between this government and young people. If you feel like you are not being listened to, if you feel like actions are being taken without you being consulted, then there is going to be a democratic trust deficit that is very difficult for any government, for any political party to overcome.
2: Okay, tell me your name. What's your point?
10: So I'm Ronak Chaudhary, and currently I'm a class 10th student and the youngest among all of here people here.
9: So are you Gen Alpha now?
10: Yeah. So yes, so my question is to the Congress. See, accountability cannot be selective, right? So main aapke samne kuch facts and figures rakhna chahti hu. 2005 Railway Recruitment Board ka exam leak hota hai, no minister resigned, no accountability taken. 2011 mein AIEEE ka paper leak hota hai, no union minister resigned, no accountability taken. Rajasthan pre-medical test 2008 में लीक होता है, अगेन नो अकाउंटेबिलिटी टेकन, नो यूनियन मिनिस्टर रिजाइंड.
4: नो लिसन, आई एब्सोल्युटली थिंक ऑल गवर्नमेंट्स इन इंडिया हैव लेट डाउन यू पीपल. व्हाई शुड आई डू व्हाट अबाउटरी? देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन. इट इज योर लाइफ, योर फ्यूचर. यू थिंक द कर्नाटक एजुकेशन मिनिस्टर इज गुड? ही इज टेरिबल. द पॉइंट इज, आई होप कॉकरोच प्रोटेस्ट. इफ दे डोंट, it is not the responsibility of cockroach to protest.
9: They
4: are students. It is the responsibility of the opposition there to bring down the Congress government. And please do it. I will support you. I think where it is wrong. Let's learn to stop this whataboutery. If people are dying, if people are losing out, we must.
1: Panmaja.
2: Everyone is not what about Rhea? I think she is only saying I demand equal accountability of everyone.
0: I think they
2: not
0: should.
2: What about
0: I think you should. And I think, sir, one second, one line, sir. I think you should. I think you're absolutely right. I don't even demand of cockroach. I think the opposition in Karnataka must do it. And if they don't do it, they are failing you. I think the Congress should back up. I totally agree with
1: you. Padmaja, ये कमाल हो गया. पहली बच्ची है जिसने ना तो एब्यूजिव लैंग्वेज की बात की, सिर्फ इश्यूज की बात की और तुरंत ये वॉट अबाउटरी करने लगे. वॉट अबाउटरी नहीं है भाई, फैक्ट्स को रखना. ये वॉट अबाउटरी कैसे? और मैं कह रहा हूं बहुत सीरियस है ये. किसी ने अभी कहा कि अगर शायद अनीश ने कहा, बिल्कुल मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं कि अगर डेमोक्रेसी में किसी को भी लगे, कोई भी एक जनरेशन को लगे कि अगर गवर्नमेंट उनकी नहीं सुन रही है तो ये सरकार के लिए चिंता की बात है. झारखंड में हजारों बच्चे प्रदर्शन कर रहे. झारखंड में देश के दूसरे राज्यों. सवाल यहां ये, क्या हम ओवरऑल एजुकेशन रिफॉर्म की तरफ जा रहे हैं? और जो सबसे बड़ी बात है, फर्स्ट टाइम है किसी एजुकेशन मिनिस्टर ने पेपर लीक पर रेजिग्नेशन दिया है. हम उम्मीद करते हैं कि आगे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, रिफॉर्म होंगे.
10: नहीं, ऑफ कोर्स दैट इज अ पॉइंट. बट जब अब गवर्नमेंट ट्राई कर रही है अकाउंटेबिलिटी नहीं की, आई नो दे हैव नॉट इंट्रोड्यूस अ न्यू बिल, दे हैव जस्ट अमेंडेड द बिल एंड दे आर प्रपोजिंग इट इन द पार्लियामेंट. बट आई बिलीव दैट द ओपोजिशन जो अपोज कर रही थी, अब तो पास हो गया खैर, बट जो अपोज कर रही थी एंड वन ऑफ द मिनिस्टर सेड ओपोजिशन का काम है अपोज करना. तो यू गाइज आर रियली ओल्डर देन मी, ठीक है. तो बट हमने क्लास 8 की सिविक्स बुक में पढ़ा था, डेमोक्रेसी थ्राइव्स व्हेन द ऑपोजिशन एक्ट्स एज अ वॉच डॉग ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट एज अ ऑब्स्टिकल टू आवर प्रोग्रेस.
0: राइट. सो कैन आई
10: very interesting point. I think more people want to come in. Just a second, then I'll go to Dr. Ranganathan.
7: One point. Ma'am, two things. First, जब आप बात करते हो ब्लेम की, सुनो, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज मैम वी प्ले ब्लेम गेम. हमें हिस्ट्री बहुत पसंद है, फिर तो हम बात करते रह जाएंगे कर्नाटका में से, पंजाब. अरे जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको तो सुधार लो, हम नेक्स्ट पे भी आ जाएंगे. इट इज द ड्यूटी ऑफ मीडिया टू आस्क क्वेश्चन, नॉट गवर्नमेंट. हम सुधार लेंगे उस चीज को पहले, आज जिसकी बात कर रहे हैं उसको तो सुधार लेते हैं. मैम वो बहुत
2: You asked a very good point. What's your name?
11: Anurag.
2: Anurag, you're absolutely right. It's the job of the media to ask questions of the government. Yes. And what this young lady also said, she's asking questions of the government only.
11: No.
2: But the government of Karnataka
11: choti si baat
2: and
11: hai.
2: The government of Punjab equally accountable Padmaja. Like every other.
0: Padmaja.
2: Just a second. Dr. Ranganathan.
0: Yeah, but
2: it's
0: after.
2: Not a blame game. Pehli baat. Asking for equal accountability. Dr. Ranganathan, yes.
5: Thank you. Look, this is textbook hypocrisy. When the demand, we're not going into history. When Dharmendra Pradhan was the education minister, there were two other sitting education ministers under whom the same malafide happened. Bangarappa of Congress Karnataka and Harjot Singh of AAP Punjab. They continue to be education minister. So, ye kehna pehle isko karo wo nahi. Khud hypocrite ho, double standards hai. Maan lo, aage badho. Number two, for once I agree with the Gen Z Padmaja, give me 30 seconds. Why? Because yes. This is a cowardly government. It does not listen to reason and logic and genuine protesters. It listens to mob violence and street blockage. It listened to them during farm laws when it repealed them, and it's hurt them now. So it depends on the cowardliness of the government, which it is cowardly. I agree with the Gen Z.
2: And that is the model now, whether you like it or not. People want to be heard and they are going to do it in any avenue that is available to them. But I want to ask all of you just a second. If the CJP today was to become a political party, is that a good thing or a bad thing?
11: Ma'am,
2: do you think they should become political? Should they be an organized party? You go first.
12: Ma'am, firstly, I have to just tell one thing to each and every one of you, that Gen Z is not fool, right? We are getting what everyone is doing. We are also understanding the hypocrisy. We are also understanding the double standards. Okay. And now as we are asking questions about what is happening in Karnataka and what is happening here, ma'am, I have one question. Education minister resigned here. Ruling power, do they want same thing to happen in Karnataka? Itne bade level pe koi protest hona chahiye? Uske baad do we think ke uske baad koi minister resign karega? Only question I have is, ke government choti cheez pe kyun nahi accountability leti hai? Why do they want कि कोई बहुत बड़ा protest हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जाए, उसके बाद हम accountability लें? Ma'am, why 31 days? अगर government चाहती, तो it could have happened in 1 week. और just one question, 40 days लगे. उस time पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे नहीं होनी चाहिए थी. तो क्या government wait कर रही थी कि पहले हम अपनी कुछ चीज़ें निकाल लें, जिनको हम resign कराने के बाद उन पे बात कर लें? Why not in 1 week? Why 31 days is my question? Okay.
2: But you didn't answer my question. If the CJP was to become a party, would you vote for?
5: Why not in one day?
12: Ma'am, CJP firstly is not a party now. It is a student movement. And I guess every party started as a student. Ma'am, if they become a party, they have to do a lot. Right now, they have given us a hope. But if they are doing the same sort of things, I don't think so they're going to work. Anyone who is doing the right work should get the chance. And chance is important for everyone.
11: Ma'am, here we are seeing
13: this. Absolutely. Look, I'm an Anurag and I'm an MBA student. So always we know that the alternatives are better. You know, alternatives are better. Yes. Democracy is what? Democracy is about more things. BJP came by protest. Congress came by protest by freeing India. BJP came for the Ram Mandir. CJP can also come. Why cannot?
2: Because, you know, a lot of people are arguing that

0: ये रेस खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज सर ने अनिश सर ने कहा कि सीजेपी अगर ये इलेक्शंस में आती है तो मैं उनको सपोर्ट करूंगा, तो ये आज एज ए स्पोक्स पर्सन इनका पहले से ही मतलब वो जो था वो इमेज क्लियर हो रहा है अब धीरे धीरे, क्योंकि इनको जब शेयर करना था स्टेज तो अरविंद केजरीवाल और जो पार्टी पॉलिटिकल मेंबर्स थे वो आते थे स्क्रीन
1: शेयर कर। आप क्या कह रहे हैं कि ये सस्पेक्ट है क्योंकि इनके पॉलिटिकल एंबिशंस है, ये तो किसी का भी हो सकता है ना, दे हैव अ प्रेशर ग्रुप। जस्ट अ सेकंड हर्षवर्धन जी, देन आई एम कमिंग टू यू।
2: एक सवाल मेरे मन में है, आप में से कितने लोगों को राधा कृष्ण कमेटी के बारे में पता है?
3: Yes, sir, we know.
2: एक मिनट बीच में नहीं तहसील, नहीं बीच में नहीं। कितने लोगों को राधा कृष्ण कमेटी के बारे में पता है? आपको पता है? आप उनको माइक दीजिए जरा। आप तो पॉलिटिशियन भी बनना चाहते हैं, इतनी देर से सब कुछ कह रहे हैं,
4: ठीक है,
2: नहीं पता आपको? आपको पता है तो
4: मेरे ख्याल से सर, डू यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस कंट्री?
2: एक मिनट
4: डू यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस कंट्री? सर यू आर मिसलीडिंग द स्टूडेंट्स बाय टेलिंग कि अभिजीत दीप के यूएस से
2: पता है उनको, जिनको पता है उनको दीजिए आप उनको।
4: आई एम हियरिंग,
2: उनको माइक दीजिए ना।
1: ओके अनुराग, गिव इट टू,
4: आपको सब कुछ
2: पता है, आपको माइक दीजिए, आप उनको माइक दीजिए,
4: दो क्वेश्चन पूछ लूं।
2: अरे माइक तो दे दो भाई, माइक दे दो, मैं समझ गया तुम्हारा, समझ में आ गया। इस तरह से लड़ने के लिए नहीं आते डिबेट में ना।
1: ओके गो ऑन खुशी, गो ऑन गो ऑन।
3: सो फर्स्टली टू यू, as you said, उनको आपने question पूछा?
2: नहीं,
3: no, no, sir, let me say now.
2: किसी को राधा कृष्ण कमेटी के बारे में पता है? आप बताइए ना, बताइए।
3: Yes, ma'am, as you said, firstly, we are here to ask question, not to be asked. Second, sir, about the committee. Sir, this was a 7-member committee. And as I have read about that, sir, now let me tell. As I have read about that, the document says that 76% of the things that the committee deciphered, 101 demands, they have been implemented. Implemented is the word, sir. आपको नहीं लगता 76% ऑफ जो उस कमिटी ने बनाया अगर वो इम्प्लीमेंट हो गया था, उसमें एक भी ऐसा रूल हो जिससे एग्जाम लीक ना हुए हो? आई एम टॉकिंग अबाउट द कमिटी, यू आर टॉकिंग अबाउट सर, इफ 76% इज इम्प्लीमेंटेड।
2: कह रहा हूं ये बहुत अच्छा, मैंने शुरू में कहा था कि खुशी ने पॉइंटेड बात की है।
3: मैम आई हैव वन क्वेश्चन।
2: राधा कृष्णन कमेटी ने 101 रिकमेंडेशंस दी जिसमें से 57 इम्प्लीमेंटेड है, बाकी पार्शियली इम्प्लीमेंटेड है, बाकी लॉन्ग टर्म है। उसके बावजूद ये पेपर लीक नहीं। हम क्या है ना, इस वक्त जो डिबेट हो रही है कि हमने मूवमेंट किया 24 में कुछ हुआ नहीं था, तब भी कुछ नहीं हुआ। हमें कम से कम फैक्ट पे बात करना चाहिए, स्पेशली जब हम जेंजी की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए जो एनटीए आया क्यों आया था, क्योंकि ऑल इंडिया पीएमटी एग्जाम में ढेर सारी गड़बड़ियां थी, पेपर लीक थे, सीट बिक जाती थी। एनटीए भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, हमें उसमें भी रिफॉर्म चाहिए। रिफॉर्म ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन वायलेंस कंटीन्यूअस प्रोसेस नहीं हो सकता है।
1: This is an ongoing debate. I'm very glad we managed to get all of these voices on board. I am running a little short of time, so I want to end with a show of hands. The resignation of Dharmendra Pradhan, and this was one thing that everyone was very directly sure of. This is our one takeaway. Who gets credit for it? Raise your hands if you think it is the CJP.
5: It's the people here. We.
6: Students.
1: Raise your hands if you think it is the students.
6: Students of the country. Yes.
1: Raise your hands if you think it is the opposition parties.
6: No.
1: All right, that's an interesting takeaway. Today, as of today, who is the most popular youth leader according to you? The CJP.
7: No.
1: Rahul Gandhi.
7: Of course not.
1: Narendra Modi.
7: No.
1: But that seems strange. All of you thought there is no accountability from him.
5: Oh, ma'am. Ma'am, famous. Oh, ma'am. Accountable
4: hona nahi hota hai na. Mr. Modi came and said,
5: just a minute.
4: Hello, friends.
5: Ma'am, last point.
1: Okay. So I think this, if there is one thing it shows over here, there is a little bit of confusion. It is a generation in flux that is still trying to make up its mind. But has this system been shaken up? Without a doubt, yes. Are we now going to see a huge change in the way in which politics is practiced? Perhaps yes. The direction in which it is going to be decided not by the people here alone, but most importantly the people sitting here. And for that, give yourself a huge round of applause. Thank you very much for joining us on this show, because when it is the people's sansad, the buck stops here. Thanks for watching.
8: Front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
9: So many attacks.
8: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
9: It's incredible.
8: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
10: Welcome to Left, Right and Center.
8: Hard facts.
10: War struck country.
8: Hard questions.
10: In the Ukraine.
8: 30 years of trust.
11: In the Kargil area.
10: North Ukraine.
12: In France. In Italy.
10: At Srinagar.
12: I am Iskandar.
10: Vishnu Shom for NDTV.
8: Vishnu Shom. Only on NDTV.
13: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
14: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
15: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
16: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
17: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal.
16: The show that sets the prime time agenda.
17: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
16: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
18: POK ke firing range mein khade hain.
19: Just few inches away is POK.
18: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
20: Launch control 0 to 100.
21: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
13: Welcome, you're watching NDTV 24/7 with me, Raisha Sehgal. There's lots of fun for you on the show, but first, the headlines. Vande Mataram bill passed in both houses, cleared in Lok Sabha by voice vote. New law awards imprisonment of up to 3 years, a fine or both for intentionally preventing the singing of Vande Mataram. Kaveri Water Management Authority directs Karnataka to release 3,500 cusecs of water per day to Tamil Nadu for 15 days. Chief Ministers Vijaya and DKS to meet on Sunday. Karnataka CM meets Congress top brass in Delhi amid expansion bus swearing in likely on August 3rd in Bengaluru. India hockey team's blue jersey changed to saffron. Former captain slammed saffron jersey. Opposition mounts attack. Asks if BJP will now plant saffron trees. National team defense move. Prime Minister Modi chairs high-level meeting to review West Asia crisis impact on India's energy security. Prime Minister says efforts must be made to safeguard citizens and diaspora.

0: And we have some breaking news on top of the show. Prime Minister Modi has dropped another Instagram video congratulating over paper leak bill, which has now been passed in Rajya Sabha today. It was passed in Lok Sabha yesterday by a voice vote. Prime Minister says bill makes exam system more robust and more strong. And this is yet Prime Minister Narendra Modi's another Instagram style video congratulating everyone on the anti-paper leak bill, which has now become a law. Take a listen.
1: साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर

0: viral social media reels showing young demonstrators using slogans, memes and expletives against Prime Minister Modi and also uniformed security personnel. The Gen Z demonstrators utilized raw, unhinged social media memes and placards and slogans carrying profane elements to mock the leaders.
1: Of course, if there's any language that was used which is derogatory in nature, then the person concerned is free to pursue civil defamation and criminal defamation against the person. However, the use of criminal machinery to go against protesters, it is highly condemnable, and no one should be punished in for any objectionable language per se. I'm not saying that the language is right. The language may be wrong. It may be objectionable to someone, but it is no reason to invoke the criminal machinery against such people. It sends a chilling effect. I don't think this is acceptable to anybody, especially to the younger generation.
0: Well, a social media influencer has now landed herself in the middle of a social media storm after video mocking RAF personnel spread rapidly online. The clip, which many users criticized as disrespectful towards the uniformed officers, triggered widespread outrage. And now, the influencer has uploaded an apology in the clip, which was shot during the CJP protests. She used derogatory words against the police personnel, and according to her, a few days ago, she uploaded an apology as well, attempting to explain her side of the story. In one of the clips, she claimed that meme pages are now sharing her videos because they are paid. She also says that she took out the video an hour after she uploaded, and she has now appealed to people to stop abusing and threatening her. And joining me live, before I speak to Shraddha, whom we are talking about, take a listen to her apology which she uploaded.
2: मैंने आर्मी वालों के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि नीला टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए, जो कि आई नो बहुत गलत है, बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर ये करने आई हूँ कि मैंने उसको एक घंटे बाद डिलीट कर दिया था. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आर्मी वालों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और मैं ये किसी के दबाव में आके या किसी का कमेंट पढ़ के या मुझे किसी ने बोला है इसलिए मैं आई हूँ, नहीं, मुझे खुद से एहसास हुआ है इसलिए मैंने ये सोचा भी नहीं था ये इतना ज़्यादा सर्कुलेट होगा. बट आफ्टर एक घंटे बाद जब मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया था, ये 4-5 दिन पहले की बात है, तो मीम पेज वालों ने उस वीडियो को डाउनलोड करके उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया.
0: एंड जॉइनिंग मी लाइव नाउ इज श्रद्धा. यू जस्ट हर्ड हर अपॉलॉजी. श्रद्धा, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए. पहले आप वो रील अभी चल रहा है टीवी स्क्रीन्स में व्यूअर्स के लिए, आप क्या सोच रहे थे जब वो आपने वो रील बनाया? क्या आपको जेन ज़ी लैंग्वेज में फोमो हो रहा था कि आपके सारे बाकी दोस्त रील बना रहे थे तभी बनाया? आप क्या सोच रहे थे?
3: एक्चुअली मैम, हुआ ये था कि मैंने जस्ट ऐसे देखा कि वो नीला कलर का ड्रेस पहने हुए हैं और मैंने रेड पहना हुआ है, तो बस एक हार्पिक का मेरे दिमाग में एडवर्टाइजमेंट आया और मैंने रील बना लिया था. मैंने ऐसे कुछ उनको मॉक करने के लिए, उनको मतलब कुछ ऐसे मैंने उनके गलत के लिए नहीं बनाया था, मैंने जस्ट बनाया. और उसके बाद जब मैं घर आई, उसको अपलोड की, तो मुझे लगा कि मैंने गलत किया है, मुझे डिलीट कर देना चाहिए, तो मैम मैंने वो डिलीट कर दिया था. बट लोगों ने, मीम पेज वालों ने उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट किया और उन्होंने उस पर लिखा कि इन्होंने आर्मी को गाली दी है, इन्होंने बहुत गंदे गंदे वर्ड्स बोले हैं, ये वो, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मैंने कोई गाली नहीं दी है. और फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आर्मी नहीं थे, ये आरपीएफ
0: पर्सनल
3: आरएएफ वाले थे.
0: एक ही ग्रुप होता है सबका.
3: मैंने किया नहीं था, बट लोगों ने मुझे एकदम टारगेट कर लिया. और उसके बाद मैंने देखा कि सेम लैंग्वेज में वो मेरे हर एक कमेंट पे सेम टाइप के कमेंट्स कर रहे हैं, और लोग मेरे को अभी रेप थ्रेट्स और मारने की धमकी सब कुछ दे रहे हैं, और लोग यहाँ पे मुझे ढूंढ भी रहे हैं कि उसका एड्रेस मिल जाए तो हम उसको मार देंगे, ये करते.
0: ठीक है, बट आपने एक अपॉलॉजी वीडियो भी डाली है जो हम सब ने अभी देखा. आपने वो अपॉलॉजी वीडियो कोई प्रेशर में आके डाला कि आपको थ्रेट्स मिल रहे थे तब आपने डाला? आपने अपॉलॉजी वीडियो क्यों डाला?
3: मैम, वो मैंने इसलिए डाला क्योंकि लोगों को लगा कि मैंने ये मजे में बना के और मैं खुश हूँ, मैं ऐसे लोगों को प्रेटेंड हो रहा था, तो मैं लोगों को ये बताने के लिए कि मैंने डाला कि हाँ मैंने गलती की थी, वो मैंने मान लिया और मैंने वीडियो अपलोड की. बट उसको भी लोगों ने टारगेट कर लिया कि भाई ये विक्टिम कार्ड खेल रही है, और मतलब बहुत से वोमेन कार्ड खेल रही है, उन्होंने मतलब मेरे को अलग अलग तरीके की टिप्पणी की कि तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने किसी के प्रेशर में नहीं आया था, बस मुझे मुझे बुरा लगा पर्सनली, तो मैं उनसे माफी मांगने के लिए वीडियो अपलोड की थी।
0: अच्छा, आपसे ये भी पूछना है कि आपके जैसे बहुत सारे जेन ज़ी लोग सीजीपी प्रोटेस्ट का हिस्सा थे, तो वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज हो रही थी, मीम्स, ये जो रील्स चल रहे थे, वो क्या सही थे कि गलत? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर मीम्स बने हैं, पुलिस पर्सनल, आरएएफ, सीआरपीएफ पर्सनल के ऊपर भी बहुत सारे जोक्स और रील्स बने हैं, क्या वो सही था?
3: मैम वो सही नहीं था, मैं ये चीज बोलती हूँ, ये सही नहीं था, जो जो मैंने भी किया वो भी सही नहीं था, बट मुझे लगता है कि लोगों ने थोड़ा जब पुलिस के थ्रू और आरएएफ के थ्रू अटैक किया गया स्टूडेंट पे, तो उनके ऊपर गुस्सा हो गया, क्योंकि मैंने वहां पे खुद रहे, मैं 19 से वहां मैं डेली जाती थी प्रोटेस्ट में, और मैंने देखा कि लोगों के अंदर वो गुस्सा भराया था, तो लोगों ने उसको फिर गलत तरीके से थोड़ा बहुत कर दिया था, जो कि बहुत गलत है, मुझे ये लगता है।
0: जी, तो आपको लगता है कि जो सारे जेन ज़ी थे, ठीक है, उनमें गुस्सा था, एजुकेशन रिफॉर्म्स क्या नए चाहिए थे उन्हें, बट जिस तरीके से उनने स्लोगन्स, जिस तरीके के रील्स अब बाहर आ रहे हैं, क्या वो सही था? क्या लगता है कि जेन ज़ी ने अब हद पार कर दी, दे क्रॉस द रेड लाइन?
3: आई थिंक यस मैम, थोड़े बहुत जो लोग थे वो ज्यादा ही मतलब कि ओवर बोल गए, इतना भी नहीं बोलना चाहिए था, जो कि गलत है, क्योंकि पहले तो थोड़ी सी स्टार्टिंग हुई थी, बट लोगों ने एक दूसरे को देख देख के वो और ज्यादा अच्छे करने की, कि हम ये इन्होंने ये बनाया है तो हम उसको और अच्छा बनाएंगे और हम लोगों के आंखों के सामने आएंगे, तो थोड़ा सा उन्होंने ज्यादा कर दिया।
0: मतलब बहुत सारे जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स थे वो रील्स मीम्स इसलिए भी बना रहे थे क्योंकि उनको वायरल होना था इंस्टाग्राम में, या क्योंकि वो कॉज के लिए बहुत स्ट्रांगली फील करते थे? आपको क्या लगता है, क्योंकि आप प्रोटेस्ट में थे, आपके दोस्त भी होंगे, आपके एज के लोग भी प्रोटेस्ट में थे, आपको क्या लगता है?
3: मैम इसका दो साइड था, एक साइड तो ऐसा था कि न्यूज वाले उतना कवर नहीं कर पा रहे थे, जो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर लोग कवर कर रहे थे, इंस्टाग्राम के थ्रू लोगों को पता चल रहा था, वो
0: लोगों कवर तक कर रहे थे, बस बताइए,
3: जो मेन बात थी वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही थी, जो कि इन्फ्लुएंसर लोगों ने पहुंचाया, और कई लोग ऐसे थे जो कि हाँ जब उन्होंने देखा व्यूज आ रहे हैं तो चलो वीडियो बनाते हैं और चलते हैं, तो आधे फिर धीरे धीरे वो ऐसा हो गया कि जो हमें मेन मुद्दा दिखाना था उससे थोड़ा लोगों डिस्ट्रैक्ट हो गया।
0: ठीक है श्रद्धा, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस हियर ऑन एनडीटीवी। All right, moving on. Zero FIR has now been registered against Ruchika Singh in connection with her alleged remarks against Prime Minister Modi during a protest at Delhi's Jantar Mantar on July 23rd. The complaint filed by Supreme Court advocate Smriti Singh has been transferred to Noida, where police have now launched an investigation. Officers are now examining video footage, recording witness statements and scrutinizing social media activity. No arrest has been made so far. According to the complaint, Ruchika is accused of making objectionable remarks against Prime Minister Modi. The complainant alleges that the comments lowered the dignity of a constitutional office and were intended to promote enmity and disturb public peace. These are allegations made in the complaint and the matter is currently under police investigation. No court has determined guilt at this stage. Meanwhile, one video and life changed overnight. So we of course spoke about the various Gen Z and the protest side, but right now we are talking about this person. His name is Abhinav Bisht. If you're on Instagram, you must have seen him on your feeds. Delhi content creator Abhinav Bisht went from shooting the NEET UG protest at Jantar Mantar to becoming one of social media's biggest viral sensations. Millions of views, a brief account suspension and an unexpected reward later. Here's the story behind the creator everyone is talking about.
4: One phone, one protest, and a following that exploded overnight.

0: cheating in India will eradicate paper leaks in India. Take a listen.
1: और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है. बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है. इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है. टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोगी आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग उनको बख्शा नहीं जाएगा. इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है. हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है. अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है.
0: All right, my colleague Akhilesh Sharma is now joining me on the phone line. Akhilesh, another late night Instagram video by Prime Minister Modi, and this time, of course, congratulating the people of India on the anti-paper leak bill, which has now been passed in both the houses, Lok Sabha yesterday by voice vote and today in Rajya Sabha. Tell us more about this bill, which will, of course, make exam reforms, education system more strong in India, and of course, also about Prime Minister Narendra Modi's yet another selfie-style Instagram video, Akhilesh.
2: That's correct. In fact, this is Prime Minister Narendra Modi's first message immediately after Rajya Sabha has cleared the anti-paper leak bill, and yesterday Lok Sabha had cleared it. Prime Minister Narendra Modi spoke in length about how the respected MPs spoke on the bill and they contributed towards a positive development, a positive discussion towards the bill, and now the bill has become a law, and this will actually strengthen the entire examination system. He says in this Instagram video that in the coming days, there's going to be a robust examination system which will be foolproof, leak-proof, and this will help the education system immensely. Prime Minister Narendra Modi also talked about how the copy mafia, the leak mafia, is actually working, and now this law will actually help to curb these mafia and gangs which are working against the interests of the students. He has this short Instagram message recorded, and this is the series of messages which he has started now telecasting on Instagram, and this now messages come after the bill has been cleared by both houses of parliament. After the president gives her assent, this will become a law.
0: Absolutely, Akhilesh, of course. Our Prime Minister's efforts in connecting with the youth with our Instagram style video, and of course a huge win also for India's education system with the anti-paper leak bill now becoming a law. Take a listen to what Prime Minister Modi said.
1: और पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस साथियों विश्वस्त परीक्षा पद्धति इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं. टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है. बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है. इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है. टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोगी आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग